तत्ती रोरो वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा। बी एस नारंग दे गाए गुलाम फरीद दे इस कलाम दे नाल ही नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा हुण इत्थे खत्म हुंदी है। एफ एम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स ते असीं आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तों बोल रहे हां। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंखा सवाय तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, तफसील कुछ न तरह थोड़ी देर में अवाम भगत कराम जन जो सदाबहार आवाज़ बुधंदा तंखा पोए एक नंडी तकरीर पेश कंदी तकरीरकार आहिनि जनाब तीर्थ सभाणी तंखा पोए कुछ हुब वतनी गीत है। इहा त असांजे प्रोग्राम जी तफसील है, हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर छो त भगत कराम जन जो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं।

0: अवां भगत कोराम जन जो सदाबहार आवाज बुधरिया ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हियर पेश है एक तकरीर तकरीरकार जनाब तीर्थ सबाणी उनवान है सिंध जी याद
1: खास करे लाड़काने में जिते 1996 में मुझो जन्म थियो ऐं कराची जिते कॉलेज जी तैलीम पिराए पोइ उते हिंदू अख़बार जो हाणे हिंदुस्तान आहे तंहिंमें असिस्टेंट एडिटर थी उनखे कर्म भूमि बणायमि। पाकिस्तान जी अहिड़ी त बदबख़्त हवा लॻी जो अभागे विरहाङे मुंहुं कढियो ऐं असांखे मजबूरनि दुख दर्द भरियल दिलनि सां पंहिंजे मिठड़ी मनठार साणे ऐं कुर्ब ऐं मुहबत भरियल वेड़ीचनि सां अलविदा करणी पई ऐं सिंध छॾे हिंद में आयासीं। पल पल में उन जी ऐं मिठड़नि मारूअरनि वेड़ीचनि जूं यादगिरियूं ईंदियूं रहनि थियूं। सिंध ऐं सिंध जे मलूक ऐं सबाजनि सिंधियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ऐं यादि करे रगूं रक़्स करणु लॻनि थियूं। कठिन आहे, ॾाढो ॾुखियो आहे वेड़ीचनि खे विसारणु। सालनि जा साल ख़ुशी खुशहाली मौज मज़े में साणनि गुज़ारियासीं। दुख सुख ग़मी शादीअ में भाङे भाई थियासीं। ॾिण वार गॾिजी मल्हायासीं। पाण में प्रीत ऐं मुहबत वंडीसीं। विंदुर विरोह शैल शुगुल कयासीं। तिन वेड़ीचनि जो थर थर अंदरि थांव आहे। तंहिं साणे ऐं सांगीअरनि खे कीअं विसारे सघंदासूं? सॼण ऐं साणे कंहिं अणासे विसरे हैफ़ तिनी होए वतन जिन विसारियो। असीं बि मारूअ मिसल आहियूं। मारूअ खे मल्हीर मां उमिरि ज़ोरीअ भॼाए उमरकोट में वठी वियो। असीं मजबूरनि पंहिंजे साणे सिंध सां अलविदा करे वेड़ीचनि खां विछड़ी हिंद में आयासीं। मारवी उमिरि जे महलात में रहियल हुई। पट पटीहर ऐश अशरत मौज मज़ा मुयसरु हुयसि। त बि हुन जे चित में पल पल वेड़ीचा सांगीअड़ा मारूअरा पिया वसनि। चुरनि चुणकनि चित में विसारां कीन वरनि। चुरनि चुणकनि चित में सदा मंझ शरीर। चुणनि चुणकनि चित में रहिया अंदरि रूह। सांगीअड़नि खे सारींदे सारींदे पई चवे सनीअ सुईअ सिबियो मूम मारूअ सी साह। वेठी सारियां सूमरा गोलारा ऐं गाह। वतन जी वार्ता सुणी सरही थींदी हुई। सुणी साणे ॻाल्हिड़ी वियोसे वेड़ी ची। मारूअ जे अखियुनि अॻियां थर जा नज़ारा पिया फिरंदा हुआ। पई सोचींदी हुई हाणे वलियूं ऐं वण फूला रहिया हूंदा। मलार जी मुंद आहे। पावर सभु पची पवंदा आहिनि। थर आबादु थींदो आहे। असीं सिंधी जे मजबूरनि सिंध मां लॾे आया आहियूं। जिन वेड़ीचनि सां साणेह में पंहिंजी ज़िंदगीअ जो चङो चोखो हिसो मिठ मुहबत साल सलूकत मेल मेलाप में गुज़ारियोसीं। तंहिं साणेह ऐं सांगीअरनि खे विसारणु सुथरो न आहे। मारवीअ चयो आहे जीअं ॻंढियूं मंझि ॻंढेर तीअं मूं मन मारूअरनि जूं। जीअं ॻंढेर गाह में ॻंढियूं थींदियूं आहिनि तीअं माण्हुनि जे यादगिरियुनि जूं ॻंढियूं मुंहिंजे दिलि में पकियूं पुख़्तियूं आहिनि। साॻीअ रीत असां जूं वेड़ीचनि सां जेके ॻंढियूं आहिनि से कीअं छुड़ी सघंदियूं? सदाई ॿधल ई रहंदियूं। साणे में जेके दरवेश त थी गुज़रिया आहिनि से बि कीअं विसरंदा? सिंध जो अज़ीम शाइर भिटाई घोट शाह अब्दुल लतीफ़, शाह अब्दुल करीम, काज़ी कादन, सामी, बेदल, बेकस, दलपत, रोहल, सांगी, असांजे ज़माने जा ऊच कोटीअ जा शाइर किशन चंद बेवस, शोभराज निर्मलदास, नवाज़ अली न्याज़, बाग़ी शाइर

हैदरबख्श जतोई ऐं महापुरुष जमशेद नसरवानजी मेहता, साधू हीरानंद, साधू नवलराय, राज ऋषि दयाराम गिदूमल ऐं भगत कंवर राम। शाह अब्दुल लतीफ़ जो अखुट खज़ानो असां लाइ अमुल वरसो आहे। जे तो बैत भाया से आयतूं आहिनि, नयो मन लाइन पिरियां संदे पार ॾे। साहड़ सा सुहिणी सायर पुण सोई, आहे निजोई गुझ गुझांदड़ ॻाल्हड़ी। अखर पढ़ अलफ़ जो वर्क सभु विसार, अंदर तूं उजार पना पढ़ंदे केतिरा। शाह अब्दुल करीम, तूं चओ अलाह हेकिड़ो वाई ॿी मसिख, सचो अखर मन में सोई लिखियो लिख। हीअं ॾिजे हबीब खे लिंग गॾजनि लोक, सोई हेॾां सोई होॾां सोई मन वसे। सामी, सतगुर जहिड़ो शाह कोन ॾिठोसीं काथई, परची ॾिनो जंहिं पूर बि आतम धन अथा। न की पुछाई जात पात, न की पुछाई राह, करे मन अचा सामी छॾाई छिन में। परमेश्वर पटतख सामी सूरज जां रहे, अंधा ॾिसन की न की पटे पंहिंजी अख, कोह करी जख जख थो दर दर देवाननि जा। सचल पाण पंहिंजो पाण ई सूरत मंझि सुञाण, अलाह अलाह छो चई पाण ई अलाह ॼाण। रोहल, रब मिड़ो ई हिकिड़ो जंहिंमें फंद न फेर। बेवस, सख़्तु विल बरसाति में कंहिं राति सवड़ियुनि मां उथी, ॾिस त ॿाहिरि बेअझन लाइ वैल छा छा थो वहे। दुनिया में ख़ल्क ख़िदमत खां नंभायां बंदगी बहितर, कर दुनिया में दिल वॾेरी तूं बि रह मां बि रहां। दलपत, वेड़ी चा वतनना शाल वागू वारींदा, वाइदा वसल जा पिरी शल पंहिंजा पाड़ींदा। दरवेशनि जूं दरगाहूं ऐं ॿिया पवित्र आस्थान बि अखियुनि अॻियां पिया फिरनि। भिट शरीफ़, साधू ॿेलो, दराज, झोक शरीफ़, कंडड़ी, सेवण में लाल शहबाज़, हालाणी दरबार, बुलड़ीअ वारनि जी दरगाह, नसीर ख़ान जो ॾेरो, उॾेरो लाल, ज़िंदह पीर, वसण घोट जी दरबार, बेदल बेकस जो आस्थान, कुतुब शाह, स्वामी टेमूराम आश्रम, राजा पीर, बुखारी शाह वग़ैरह वग़ैरह। तंहिं सवाइ मनोड़ो, मंगो पीर, मोहन जो दड़ो, मसूम शाह जो मुनारो, मकली टकरियूं, लकी तीरत ऐं गिदू बंदर। गिदू बंदर कंहिं ज़माने में वॾो बंदरगाह हूंदो हो। अंग्रेज़नि उते आलीशान पार्क ठहिरायो, जो विंदरगाह बणिजी पियो। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर उन पार्क जी हाक ॿुधी त उते सिज उभरण जो नज़ारो ॾाढो दिलकश हूंदो आहे। पाण हैदराबाद में आयो इहो नज़ारो ॾिसण लाइ। पोईं राति जो वञी पार्क में वेठो, सिज उभरण जो दर्शय ॾिसी अर्ज़ ख़ुदि निकिरी वियुसि, सारी दुनिया ॾिठी अथमि पर सिज उभरण जो अहिड़ो सुंदर नज़ारो किथे बि नज़र कोन आयो अथमि। वधीक चई जिते अहिड़ा नज़ारा हूंदा उते शाइर ऐं कुदरत जा तर्जमान छो न पैदा थींदा। अहिड़ा उतहासिक ज़ियारतगाह कीअं असांखां विसरंदा। अॼु बि हर कंहिंजे वात में आहे सखी शहबाज़ कलंदर, सिंधड़ीअ जा सेवण जा दमादम मस्त कलंदर। जिते बि इहो कलाम ॻायो वेंदो आहे उते हाज़रीन झूलींदा आहिनि, झूमंदा आहिनि, नचंदा आहिनि, टपंदा आहिनि। प्रभु वफ़ा जूं सिटूं यादि थियूं अचनि। जिन सांगियुनि सां जनम गुज़ारियुमि तिन खे अॼु ताईं न विसारियुमि। वेड़ी चंद सां मन लाॻियल आहे, सरल सुभाउ जा सिक वारा मारू मन ठार ॾिसी थो उहो वतन थी मुंहिंजो। जीअं मारवीअ खे राति ॾींहुं इहा ई आस ऐं इंतज़ारी हूंदी हुई, भरी पंहिंजे भाण पसां मुल्क मलीर जो, तीअं असां बि 37 सालनि खां आसावतू पे रहिया आहियूं त शल पंहिंजो साणे सिंधड़ी हिकु वार ई ॾिसूं। सिकंदे सिकंदे साल गुज़री विया आहिनि पर उकीर ऐं उकंड पूरी कान थी अथमि। शाह साहिब जी सिट दिलि ते तरी थी अचेमि, पहिरीं वञा लोह पोइ मर पुॼनमि ॾींहणा।
से सभा

0: आहिनि जिन सिंध जो वरी मुशाहिदो माणियो आहे। दादो मुंहिंजो परम मित्र टहल आज़ादु सिंध सगोरीअ जो दीदार ऐं ज़ियारत करे मोटियो आहे। सिंधियुनि जी सिक सनेह प्रीत प्यार मिठ मुहबत जी वाखाण जा ढुक भरे ढापे ई कोन थो। हुन जो जेको आदर सत्कार उते कयो वियो, स्वागत ऐं सन्मान कयो वियो, साणुस कुर्ब वंडियो वियो, तंहिंजो दिलचस्प वर्णन हुन पंहिंजे सिक जो सॾु सिंध जो सफ़रनामो में कयो आहे। सिंध विसरे थी कान थी, चवे थो अॼु बि सिंध जे कुएल आबिद परवीन जो गीत कननि में वॼे पियो। सिंधड़ी मुंहिंजी जीजल शल नातो तोड़ निभायां, नातो तोड़ निभायां, मां त झोले चंड झुलायां। सिंधड़ी मुंहिंजी साईं, असीं ख़ुशि नसीब न आहियूं सिंध जी ज़ियारत करे कोन सघिया आहियूं, पर जीअं मारवी अबाणनि जे ओठे लाइ पई निहारींदी हुई, इंतज़ारु कंदी हुई, आयो केरु ॾेहां जंहिं कर पुछां ख़बरूं, अलाह ओठी आणे जो खीअ जी ख़बर ॾिए। तीअं असां बि पंहिंजे अबाणनि लाइ उकीर ऐं उकन सां पिया वाजाईंदा ऐं वाज विझंदा आहियूं त शल वेड़ी चा हित वरनि। जॾहिं को साणीअ खां हिते पेर भरे ईंदो आहे त गदगद थींदा आहियूं, ख़ुशीअ में फूलिया न समाईंदा आहियूं, संदन ख़ासी खीकार ऐं ख़ुशि ख़ैराफ़त कंदा आहियूं ऐं अंदर में उकीर जी उञ लाहींदा आहियूं। खाउनि चोज ऐं चाह सां पंहिंजे जननी जीजल सिंधड़ी ऐं सिंधवासियुनि बाबति समाचार सुणंदा आहियूं। सुणी साणे ॻाल्हड़ी लही विया लोह, अंदर जा अंधो लथा ॾुख सुख थिया शाह।
1: अवां जनाब तीर्थ सभाणी खां हीअ तकरीर ॿुधी रहिया। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि देशभक्ति गीत।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। हीअंर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने

कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफ़ेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. And in badminton, the Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian pair of Leo Rolly Karnando and Daniel Martin in the men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में हम सुनेंगे सोमा मुखर्जी से रविंद्र संगीत और संगत कलाकार हैं सलीम अहमद तबला पर, विनय प्रसन्ना बांसुरी पर और दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुना सोमा मुखर्जी का गाया रविंद्र संगीत। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सलीम अहमद, बांसुरी पर साथ दे रहे थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गुड मॉर्निंग सुषमा।
3: गुड मॉर्निंग
2: भाई। आज मौसम कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ सबसे पहले।
3: मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, सुहाना सा है। और सुबह सुबह की बात कर रही हूँ, लेकिन दिन में ऐसे लग रहा है कि सूरज चाचू बहुत तपाने वाले हैं।
2: वही मैं हैरान हो गई जब आपने कहा मौसम बहुत सुहाना है। मैंने कहा अरे ये तो सूरज चाचू तो हमारे निकल आए और सबको अब यही कहेंगे कि मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि भाई इतनी चमक हो जाती है उनके अंदर दिन में कि उनकी तरफ देखना तो दूर, घर से निकलना मुश्किल है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इतनी तेज गर्मी हो रही है और जिसने अभी जरा से लापरवाही की तो बस उसी को सूरज चाचू जी ने ले लिया अपनी चपेट में।
2: हाँ बिल्कुल, तो हम यही कहेंगे। देखिए सुबह सुबह से हम आपको पानी के लिए कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाइड्रेट रहना ही सबसे बड़ी इस गर्मी को सहने और इससे दूर रहने का एक मात्र उपाय है।
3: जी हाँ, और इसके साथ साथ भी पता है एक चीज और देखिए, हम आसपास भी देख रहे हैं कि हम जैसे तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, जो आजकल के फल हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि पानी हमें कब पीना है, कितनी देर में पीना, और जिसकी वजह से लोगों को अपच हो जाती है। डिसेंट्रीज कहते हैं ना कि उनको पेट खराब हो गया, उनका डिसेंट्रीज शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो रही है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि खाने पीने की गड़बड़ी से ही बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं।
2: हाँ, लेकिन यही कहेंगे कि बेशक आप खाना कम खाएं लेकिन पानी पीना ना भूलें।
3: जी हाँ, क्योंकि कहते ना जल है तो जीवन है और इसे बचाना भी है।
2: जल है तो कल है।
3: बिल्कुल सही। और श्रोताओं, बचाना भी है ये, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, पानी की इतनी बर्बादी हमारे आसपास होती है और हम देखते हैं कि लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। तो एक एक बूंद को सहेजिए, उसे बचाइए और अपने पानी का जो आपको पीना है उसका ध्यान आप जरूर रखें।
2: मुझे लगता है सुषमा, आपका जो हाथ है माउस पर टिका हुआ है और स्क्रीन पर बार बार आप उसे लेकर जा रही है। मुझे लगता है पहले हम एक गीत सुन ले ताकि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, हम उन्हें गीतों भरी, तो गीत से अब शुरुआत कर दी जाए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गीत है ये लम्हे ये पल ये,
2: और ये हरी है हरिहरन के स्वर में।
3: जी हाँ, इनकी आवाज मतलब दिल तक छूती है, कानों में एक मधुर सा संगीत घोल देती है।
2: जी,
3: और सुबह को भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाएंगी हमारे साथ साथ हमारे सभी साथियों के भी। तो सुनते हैं इस गीत को, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग,
2: गीतों भरी।
3: जी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत। कुसुम आप बताएं आपको कैसा लगा ये गीत?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे जो लिसनर्स हैं उम्मीद करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई उठते उठते और इतना प्यारा संगीत जब कानों में पड़ जाए तो क्या कहने।
0: बिल्कुल सही। और वैसे मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है ना वो काफ़ी पहले उठ चुके होंगे, क्योंकि आजकल हर कोई, जैसे हमने बात की सूरज चाचू जी की तपिश से बचना चाहता है, तो हर कोई सुबह जो है अपनी 5, 5:30 या 6 बजे तक कर लेते हैं, उठ जाते हैं। जो मुझे लगता है
1: जो काम दिन में करने होते हैं कुछ लोग तो उनको सुबह ही कर देते हैं या फिर शाम को, क्योंकि दिन में नहीं कर सकते। लेकिन हम कहेंगे जो दिन में हमारे आसपास का वातावरण है और उसमें कुछ लोगों को निकलना पड़ता है, जीव जंतुओं को निकलना पड़ता है, उसमें हमारे जो पक्षी जगत के हैं, प्राणी जगत के और भी प्राणी हैं, तो उनको निकलना पड़ता है, तो उनका भी ध्यान रखें। पक्षियों के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करें, कहीं एक जो है छोटा सा सकोरा कहते हैं या कटोरा कहते हैं, वो सब पानी के लिए रखें, क्योंकि उनको भी हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, नहीं तो उनके जीवन के लिए भी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। उनके लिए दाना पानी ऐसे रखें जो छाया में हो और वो आराम से उसका सेवन कर पाएँ। ऐसे ही हमारे पशु हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं हमारे घरों में, उनका भी ध्यान रखें, हवा पानी का उनका अच्छे से प्रबंध करें, क्योंकि उनको भी गर्मी लग सकती है और उनको गर्मी और जो भी वातावरण है उसको साफ शुद्ध करके रखें, जिससे कि हमें उनसे जो प्राप्त होता है, जैसे दूध प्राप्त होता है, और क्या कहते हैं आप, पक्षी हैं जो हमारे वातावरण से एक बीज को लेकर कहीं दूसरे उसमें उड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी वातावरण को साफ शुद्ध रखें, जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन जी पाएं।
0: बिल्कुल सही। कुल मिलाकर बात कुसुम जी आप तक यही कहना चाहती हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं हमें सब उनका भी ध्यान रखना है, गर्मी है तो उनको भी बचाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हर एक जीव, हर एक पक्षी, हर एक जंतु का अपना एक महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी इस प्रकृति का एक जो संचालन होता है
1: भी
0: है। बिल्कुल सही। इस संचालन में सबका एक छोटा छोटा योगदान मिलता है जो कि एक बड़ा योगदान बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। तो हम अपनी अपनी भूमिका, हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपना अपना योगदान अपने तरीके से जरूर देंगे। और मुझे इस बात से याद आया कुसुम, आपको बता दूं कि पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते, दिल्ली की ही बात बता रही हूँ आपको, अभी एग्जैक्ट नाम मैं उनका नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन ये सच है कि जब कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले, एक महाशय है जिन्होंने देखा कि गुरैया पक्षी जो है वो बहुत कम हो गई है, गुरैया चिड़िया, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपना ही इनिशिएटिव लेकर,
1: हाँ बिल्कुल, वो मैंने भी पढ़ा है अखबार में और कई जगह पर उनका जिक्र हुआ है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी, एक बार मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, मतलब पर्सनल इंसिडेंट है ये, लेकिन मैं साझा करना चाहूंगी कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि हर एक जीवन हमारे लिए जरूरी है, इस प्रकृति के लिए, इसमें हर कोई समाहित है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही।
1: ऐसा हुआ सुषमा कि एक बार मैं अपने एक साथी मित्र के साथ थी और हम लोग बाइक पर थे, लेकिन हमने देखा हमारी बाइक के आगे एक छोटा सा पक्षी जो है वो इधर उधर हो रहा था, शायद हमें लगा कि उसे दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, हम रुके, आसपास का ट्रैफिक भी हमने रुकवाया और उस पक्षी को, कबूतर था वो, उसको पक्षी को लेकर हम यहीं पास में करोल बाग में एक जगह है जहाँ उनको दाना पानी दिया जाता है जब तक उनका जीवन है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहाँ पे कोई आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होती। हमने उस पक्षी को ले जाकर, हालांकि हम बहुत जरूरी काम से थे, लेकिन हमने कहा नहीं, सब कामों से जरूरी एक जीवन को बचाना है, तो हम उन्हें, उस पक्षी को, कबूतर को वहाँ लेकर गए और हमने उसे जब वहाँ दे दिया तो हमें इतनी अपने मन को शांति मिली, मैं बता नहीं सकती कि चलिए कि हमने उसे सही हाथों में सुपुर्द कर दिया।
0: क्योंकि जो संतुष्टि होती है ना इस तरह के काम करने से, उसके उसका कहते ना कोई सानी नहीं है, उसका कोई और उपाय, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो साथियों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम अपने साथी सुषमा और कुसुम के साथ।
1: जी बिल्कुल, और यही कहेंगे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में व्यस्त रहिए।
0: जी हाँ, और जाते और एक मेल, हाँ हम आप जरूर कहेंगे कि मैं आपको मेल आईडी बता रही हूँ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, ipradiodelhi@gmail.com, आप इस पर अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए, टू स्टेट्स फिल्म से है ये गीत,
1: और मस्त मगन हो जाइए सुनकर इसको, क्योंकि गीत भी है मस्त मगन।
0: जी हाँ, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में ये गीत।

0: सुषमा, आपने गाना तो बहुत अच्छा हमें सुनवाया और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी सुनवाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो इस मौसम में हम अपने पशु पक्षियों के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो हमें उनसे रिलेटेड कुछ गीत भी चलाने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और कुछ हमारी फरमाइश भी आ चुकी है इस बात को लेकर।
1: जी हाँ, फरमाइश भी आई है, साथी भी हमारे जुड़ चुके हैं और अपना जो मनपसंद गीत है जिसे सुबह सुबह हम कहते हैं ना, चाय की चुस्कियों के साथ, अब गर्मी हो या सर्दी, चाय तो हम सभी पीते हैं
0: हाँ,
1: ना।
0: और हमारा ये भी ध्येय रहता है कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी मौसम में हो और कैसे भी परिस्थिति में, हमें सोचना चाहिए और वैसा काम भी करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे।
1: बिल्कुल सही। और चाय का मैं बात इसलिए कर रही थी क्योंकि हमें पता है हमारे बहुत सारे श्रोता जो ना हमारा कार्यक्रम सुन रहे होते हैं चाय की चुस्कियों लेते हुए, और
0: लेकिन लेकिन लेकिन सुषमा, मैं आपको टोकना चाहूंगी, समय बदल चुका है। जो ये सूरज चाचू अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हैं ना, इसमें आजकल लोग चाय की जगह कुछ और भी पेय पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि छाछ,
1: जी
0: लस्सी, दलिया, मतलब सुबह के टाइम उसकी जगह और भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चाय तो हैबिट कह लीजिए या एक पेय पदार्थ
1: जी
0: तो है ही हमारा कॉमन, लेकिन उसके साथ साथ हमें, क्योंकि गर्म उसकी तपिश होती है और उसकी नेचर भी गर्म होता है,
1: जी जी
0: तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम कुछ ठंडे पदार्थ भी लेने लगे हैं, जैसे सुबह सुबह
1: जैसे
0: नींबू पानी,
1: जी
0: दलिया या फिर
1: ठंडाई,
0: हाँ ठंडाई।
1: गोंद कतीरा
0: जी बिल्कुल,
1: दूध
0: रूह
1: में
0: अफ़ज़ा।
1: घोल के, हम जानते हैं हमारे श्रोता भी, हमें लगता है कि इस तरह की कुछ कुछ श्रोता तो चाय के पर्टिकुलर लेते ही
0: हाँ
1: होंगे,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: बहुत सारे श्रोता अब जागरूक भी हुए हैं, कोई रूह अफ़ज़ा ले रहा होता है सुबह सुबह, कोई गुलाब का शरबत और ऐसी बहुत सारी चीज़ें।
0: हाँ और कुछ लोग ना अपना घर में ही कुछ पेय पदार्थ बना लेते हैं, जैसे छाछ में अच्छी तरह जीरा भून कर डाल लिया, हरा धनिया डाल लिया, थोड़ा सा प्याज
1: जी
0: डाले और उसके बाद वाह।
1: मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हम
0: मतलब
1: यही कहेंगे
0: ये सब चीजें किसके लिए है सुषमा, जानते हो, कि सब कुछ ठीक रहे,
1: जी,
0: है ना, यानी कि ऑल इज
1: सेहत ठीक
0: वेल।
1: रहे, फैमिली ठीक रहे और हमारा हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, काम धंधा सही चलता रहे, है ना।
0: हाँ, क्योंकि हम जब ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो इसलिए यही कहना चाहेंगे कि ऑल इज
1: ऑल
0: वेल।
1: इज वेल, जी हाँ। और देखिए मैंने आप सबके लिए गीत भी ढूंढा है, सोनू निगम,
0: और
1: सदानंद किरकिरे की आवाज में, और भी साथी हैं साथ में।
0: तो लीजिए सुनते हैं इस गीत को और हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए ऑल इज वेल।
1: जी, थ्री इडियट फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: बिल्कुल ऑल इज वेल
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद आप भी रखें, हम भी रखेंगे, और उसके साथ काम भी करते रहेंगे कि सब रहे ऑल इज वेल। हम चाहेंगे कि आप अपने आप को सुबह उठकर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक काम करें अपने लिए, एक गर्म पानी का ग्लास जरूर पिएं, क्योंकि सुबह का जो ये गुनगुना पानी होता है ना, पूरे दिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सेहत को दुरुस्त रखना है, तंदुरुस्त रखना है अपने आप को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही पानी ज़रूर
1: जी
0: पिए।
1: बिल्कुल
0: और दिन में जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे पेय पदार्थ आप अपने खाने में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से बच सकें।
1: जी हाँ, खुद तो पिए ही, लेकिन अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग है या फिर हमारे एनिमल्स हैं, हमारे पशु पक्षी जो जितने भी हैं, उनको भी हम हाइड्रेट रखें, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और कहीं भी किसी को भी प्यासा ना रहने दें, अपने साथ में एक छोटी सी बॉटल जरूर रखें, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने लिए तो रखें ही, लेकिन एक बॉटल और रखें, जिससे कि यदि रास्ते में किसी को प्यास लग जाए और आपसे पानी मांगे तो आप दे पाए। देखो सुषमा, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हमेशा अपने पास दो बॉटल रखती हूँ, क्योंकि
0: जी
1: कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपनी गाड़ी में होती हूँ और जा रही होती हूँ, तो रेड लाइट पर कई बार कुछ, आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं,
0: जी जी
1: उन्होंने मुझसे पानी की डिमांड की, जानते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ पानी पिला दीजिए। तो मैं हमेशा अपने साथ, मतलब गाड़ी में होती हूँ

0: तो दो चार बॉटल डाल लेती
1: तो
0: हूँ।
1: ये तो बहुत
0: और
1: अच्छी बात है, आप
0: हाँ,
1: इतना नेक कार्य करते हैं भाई, ये जरूरी भी है। और
0: सभी को ये
1: जी
0: करना चाहिए कि अपने तो ध्यान रखें, लेकिन साथ में एक कैरी कर ले छोटी सी बॉटल, ताकि कोई अगर प्यासा है तो वो प्यासा ना रहे, किसी को भी पानी की जरूरत है तो आप पिला पाए।
1: जी बिल्कुल सही। और साथ ही अगर आपके आसपास पौधे हैं, मुझे सबसे ज्यादा तरस आता है पौधों पर, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पार्क में पौधे तो लगा देते
0: हाँ,
1: हैं लेकिन उनमें पानी नहीं
0: ध्यान नहीं
1: देते हैं।
0: रखते।
1: अपने घर की छत पर भी जब भी आप पौधों में पानी दें तो कोशिश करें कि पानी को भी बचाएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग हाँ कहते हैं ना कि इतना सारा पानी बर्बाद करते हैं। तो पानी को बचाते हुए अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं उनमें भी आप थोड़ा थोड़ा, मतलब जो छोटे पौधे हैं जिन्हें लगता है कि
0: जी
1: पानी की जरूरत है, तो उन्हें भी पानी आप जरूर
0: देखिए,
1: डालें।
0: जैसे घर की बालकनी में आजकल सभी छोटे छोटे जो है गमले रखते हैं, और साथ ही एसी का पाइप होता है जिसका पानी वेस्ट होता रहता है। आप उस का पाइप जो है किसी गमले
1: जी
0: में कर सकते हैं, जिससे कि उसको पानी मिलता रहे। और एक बात और, जो हमारे सभी के घरों में, ऑलमोस्ट सभी के घरों में फिल्टर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए आरओ या जो भी है फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए पानी के,
1: उससे
0: तो
1: भी पानी बहुत
0: उसका
1: वेस्ट
0: हाँ
1: होता है।
0: बहुत वेस्ट होता है।
1: हाँ
0: उसको
1: जी
0: भी आप एक मतलब बास्केट वहाँ रख सकते हैं, जिससे वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई में, पौधों को पानी देने में, और अपने आसपास जैसे आपके व्हीकल्स होते हैं उनको साफ करने में। तो पानी बचाने की ये तरकीब भी मुझे लगता है अच्छी है।
1: बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं आज अपने इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे
0: जी
1: श्रोता इतने जागरूक हैं और हमारी बात को भी मानते हैं, तो जरूर इन टिप्स को फॉलो करेंगे। अपने पर्यावरण को, अपने आसपास को भी बचाने के लिए,
0: बिल्कुल,
1: उसे सहेजने में मदद करने में पूरी मदद करेंगे और अपना भी ध्यान
0: और
1: रखेंगे।
0: इसी के साथ हम कर देंगे सुषमा और मैं गुड मॉर्निंग भरे गीतों के इस कार्यक्रम को अब गुड बाय।
1: जी हाँ, क्योंकि अगला जो गीत है बहुत ही खूबसूरत, और मैं चाहती हूँ हमारे श्रोता सुने एआर रहमान का म्यूजिक और सिंगिंग, मतलब उनका गाया हुआ और शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत, हम हैं मुकाबला, हमसे है मुकाबला फिल्म से
0: जी
1: ये गीत
0: बिल्कुल,
1: है। तो दीजिए इजाजत,
0: कुसुम और सुषमा को नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों की

0: बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता

0: आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की, तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसारी कदीमा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसी तर मुज़ाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
1: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
0: नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वज़ीर-ए-आज़म के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस अंक में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर आप सुन सकेंगे परिचर्चा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है इस खास परिचर्चा में। आप इस परिचर्चा को आज सुन रहे हैं और आगे भी कई बार कई मौसमों में सुनेंगे, लेकिन जिस मौसम में ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है और जिनके लिए ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है, उसकी शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूंगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित इस कविता का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वक्त तपती गर्मी पड़ रही है, और अगर कहीं सुमित्रानंदन पंत ने इस गर्मी का एहसास लिया होता तो अवश्य वो अपने कौसानी को याद करके इस कविता को बार बार दोहरा रहे होते जो उन्होंने ही रची थी। मेरा नाम है दिनेश कांडपाल। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं श्री मदन कश्यप जी, आप वरिष्ठ कवि और समालोचक हैं।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रियदर्शन जी, आप वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं।
3: नमस्ते।
1: और हमारे साथ हैं श्री राम किशोर उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं।
4: नमस्कार।
1: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मदन जी, जिस कविता से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इस तपते मौसम से आप भी अभी बाहर से स्टूडियो के अंदर आ रहे हैं, तो पंत जी की कोई कविता झलक रही थी या कोई उनकी बात याद आ रही थी?
2: प्रकृति का जो चित्रण उनके, हालांकि यह कविता उस तरह से जिस तरह से सुकुमार की बात कर रहे हैं तो इसमें सुकुमार जी कहाँ है, ध्वनि तो ये तो निराला की ध्वनि है जो सुपरिचित ध्वनि है, तो असल में ये होता है, लेकिन है तो प्रकृति ही, प्रकृति का चित्रण है, तो ये उस दृष्टि से देखिए तो आ ही रही है। असल पे एक बात अब मुझे कहनी है, सबसे पहले अगर मुझसे आपने शुरू किया है तो थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि मैं ये कहूँ कि नहीं कहूँ। किसी भी कवि के बारे में या किसी भी रचनाकार के बारे में जब इस तरह का एक मुहावरा बना दिया जाता है, जैसे केदारनाथ सिंह बिम्बो के कवि हैं, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसका होता क्या है कि उसकी एक खास विशिष्टता की ओर तो हमारा ध्यान चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह है ये बात, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं तब दब जाती है और आदमी उसी पर अपने को केंद्रित करने लगता है कि वो इस तरह के कवि हैं। इसलिए ऐसे मुहावरे से कवि को अगर व्यापक रूप में समझना है तो ऐसे मुहावरे से बचाना चाहिए। और फिर ये भी देखिए कि क्या मूल योगदान क्या था, यही कि प्रकृति का चित्रण है उनके यहाँ, बहुत सुंदर चित्रण है, तो जितना उनके यहाँ है उतना प्रसाद के यहाँ भी है, निराला के यहाँ भी है। निराला के यहाँ वो ध्वनि और ज्यादा कुछ पौरुष, हालांकि ये गलत शब्द है, पौरुष कुछ अगर कुछ अलग से होता है विशिष्ट को बना दिया जाए और कुछ अलग से स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ध्वनि है, फिर भी प्रकृति है और माधुरी भी है। आप गीतिका के गीतों को देखें आप तो वहां पर वो माधुर्य भी है। फिर उसी तरह से पंत जी के यहाँ भी उस तरह की ध्वनि है, परिवर्तन जैसी कविता भी है जहां पर हमें वो ध्वनि दिखाई देती। तो असल में जब हम ऐसा करते हैं तो एक पक्ष है कि हम एक खास दिशा में केंद्रित करके उस रचनाकार की विशेषताओं को सीमित कर देते हैं, पहली बात तो ये है। बावजूद इसके ये सही है कि वो प्रकृति का चित्रण जितना सुंदर उनके यहाँ हुआ है बहुत कम, और शुरुआती दौर में देखिए आप, वो दुर्लभ है हिंदी की जो परंपरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि पंत वो कवि हैं, पहले कवि, अकेले पहले कवि, निराला बाद में, और प्रसाद तो और भी बाद में, क्योंकि प्रसाद अपने शुरुआती दौर में ब्रजभाषा में लिख रहे थे। प्रसाद जी ज्यादा ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल को तोड़ने वाला कवि, जिसने हर युग में और हर कवि, अच्छे कवि के आने के बाद कविता का नया शिल्प तो आता है, लेकिन शिल्प ही नहीं बदला, शिल्प तो सबका है, निराला के भी है, प्रसाद, कविता के स्थापत्य को बदल दिया, संरचना को। दो ही बार हिंदी 20वीं शताब्दी में कविता का स्थापत्य बदलता है, एक बार छायावाद में, उसके पहले पूरी तरह कविता परंपरागत है, भक्ति काल से लेके और आप मैथिली शरणगुप्त तक चले आइए तो वो स्थापत्य बदलता है, और फिर नई कविता के समय। तो अब हम व्यापक में नहीं जाएंगे, लेकिन उस स्थापत्य को बदलने का श्रेय अगर किसी को है सबसे पहला तो पंत का है। पंत ने वो काम किया, और उस महत्वपूर्ण काम को लोग भूल जाते हैं हम, कि हिंदी कविता में छायावाद ने जो स्थापत्य को बदला है उसमें ज्यादा नाम निराला का इसलिए आ जाता है कि उन्होंने छंद को तोड़ा।
1: महत्वपूर्ण बात कही है, और जब उनकी जयंती पर जब ये बात कर रहे हैं तो ये मदन कश्यप जी ने एक बहुत सही दिशा दी है पूरी बातचीत को।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप

0: उनकी कविता का सफर जो उन्होंने कहा कि शुरुआत उन्होंने की प्रकृति से होता हुआ आध्यात्मिक चिंतन की ओर कहीं कहीं बौद्धत्व की ओर भी जाता है। प्रकृति चित्रण में उनकी जो सबसे खास बात मुझे लगती है, प्रकृति उनके यहाँ जड़ बहुत कम मिलती है, यानी वो चित्रमयता पे नहीं जाते हैं, प्रकृति लगातार उससे संवाद करते हैं। लगता है कि हर चीज, जैसे मैं उनकी कविताओं को देख रहा था तो पा रहा था कि हमेशा कुछ तरंगित होता हुआ, कुछ हिलता डुलता
1: बहता हुआ।
0: और संवाद में कुछ कविताएं उनके लेके आया था
1: जी।
0: जैसे प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। अब मैं पूरी कविता नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप कहीं से भी उनको उठा लीजिए। एक कविता उनकी धेनुए हैं, ओ रंभाती नदियों बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रव तुम्हारे ही भीतर है, ओ पे फेन गुच्छ लहरों की पूछ उठाए, भाव दौड़ती नदियों इस पार उस पार भी देखो, जहां फूलों के कूल सुनहले धान के खेत हैं, कल कल छल छल अपनी ही विरह व्यथा, प्रीति कथा कहते मत चली जाओ, सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं, वह तो गतिमय स्रोत की तरह गतिहीन स्थिति भर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, राशि का ही अनंत अनंत नहीं, गुण का अनंत बूंद बूंद में है। तो अचानक आप पाते हैं कि संवाद तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके यहाँ चित्र भी है प्रकृति के, वो सुंदर चित्र हैं और वो भी कहीं मैं खोज निकालूंगा। लेकिन जहां भी आप उठाइए, काले रंग का दुकुल, माँ काले रंग का दुकुल नव मुझको बनवा दो सुंदर, जिसमें सब कुछ छिप जाता है रहती नहीं धूली की डर, तो संवाद के बिना प्रकृति से वो कम टकराते हैं, हमेशा वो संवाद की मार्फत प्रकृति के हलचल के बीच उसको देखते हैं। तो जो गतिमयता है जीवन की, निराला के पास वर्षा के जितने गीत हैं, लगता है कि वो वर्षा को लेकर या बसंत को लेकर कई लोगों ने लिखा है।
1: और नदियों की कल कल बहती ध्वनि तो हम सब सुनते हैं, बिल्कुल रंभाती नदियां, क्योंकि नदियों का जो पानी बहरा होता है तो उसके लिए जो बिंब गढ़ा गया, जो ध्वनि चयनित की गई, वो कल कल बहती
2: नदियां।
0: चांद उनकी एक छोटी सी कविता है, टूटी चूड़ी सा चांद न जाने निर्जन नभ में किसकी मृदुल कलाई से गिर पड़ा, हाय दूज की चांद कौन जग से अदृश्य गोरी होगी वह। अभी बड़ी छोटी सी कविता है लेकिन इसमें इतने बिंब हैं और एक तरह की, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सजीवता। वो शायद पंत को अपने समय के स्थिर बिंबों वाले दूसरे कवियों से थोड़ा अलग बनाती है। पंत को इसलिए पढ़ना भी मुश्किल होता है, शायद चारों कवियों में जिनकी बात हम बार बार कर रहे हैं पंत को सबसे कम श्रेय मिला। वाकई उनकी टक्कर बहुत बड़े कवियों से थी, प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं। महादेवी को हम लोग आंसू आंसू की मार्फत याद करते हैं, लेकिन महादेवी में प्रलय भी है, मोती भी है। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, तो मोती की हाट और चिंगारी का मेला लगाने वाली कवित्री के मुकाबले पंत लेकिन जिस तरह की उपमाएं चुनते हैं, जिस तरह से प्रकृति से संवादरत रहते हैं, जिस तरह उसको देखते निहारते हैं, वो अनूठा है।
1: रामकिशोर जी,
2: मैं मदन कश्यप जी की बात से अपना सूत्र ग्रहण करता हूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी को सिर्फ प्रकृति के सुकुमार कवि कहने तक सीमित रखना शायद उनके साथ अन्याय होगा। जैसे बायोलॉजी में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वैसे ही जो जो हम पंत जी को पढ़ते हुए जाते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए जाते हैं, तो हम उनका एक क्रमिक विकास देखते हैं। वो प्रकृति चित्रण से आते हैं, फिर वो धीरे धीरे समाजवाद की भी बात करते, जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ होने लगता है और जीवन के यथार्थ से वो सामना करने लगता है, वैसे ही उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है। हालांकि उन्होंने प्रकृति को बहुत सुंदर दृष्टि में देखा, उन्होंने प्रकृति को कभी कठोरता की दृष्टि से व्यक्त किया, लेकिन जीवन की कठोरता से वो मुक्त कहां हो पाए। तभी तो उन्होंने अंत में आते आते समाजवाद की भी बात करने लगे, मानववाद की भी बात करने लगे, राष्ट्रवाद की भी बात करने लगे, मार्क्सवाद की भी बात करने लगे। वो गांधी पर भी कविता लिख रहे हैं, अरविंद पर भी कविता लिख रहे हैं। वो एक ऐसे कवि हैं जिसको बहुत व्यापक रूप से हमें देखना चाहिए कि वो सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, कि वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, जैसे जैसे उनका विकास होता गया वैसे वैसे उनकी कविताओं का भी विकास होता गया। तो प्रकृति का तो जो उनका सुंदर चित्रण है, पल्लव जो उनकी बहुत ही प्रौढ़ कृति है और उसमें जो चित्रण है वो तो अद्भुत है। उसके पास जो शब्द है, जो उनके पास चित्रात्मकता है, लाक्षणिकता है, वो अद्भुत है, वो दूसरे में नहीं मिलती। और इसी जैसे निराला का और उनके साथ विवाद ही भी इसी बात पर हुआ कि प्रांजलता की जो बात करते थे वो पंत जी करते थे, वो प्रांजलता की एक विवाद भी हुआ उनका और उन्होंने उस पर लिखा भी, और उन्होंने अबेओ गुलाब जो है, निराला ने उस पर ही लिखा अबेओ गुलाब जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा।
1: लेकिन एक चीज जो मुझे कहनी भी चाहिए कि उनका परिचय भी बीच बीच में थोड़ा सा आता रहे, जब सुकुमार कवि की हमने बात की और आपने इसको इतना बड़े पैमाने पर इसको खींचा, उत्तराखंड की उस

0: जगह पे उनका जन्म, कौसानी के किसी भी हिस्से में आपका घर हो तो आप सुबह उठते हुए त्रिशूल की चोटी देखते हैं हिमालय की, और आपके सामने जो सूर्योदय होता है वो स्वर्णिम हिमालय दिखता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। 7 वर्ष की आयु तक वो उत्तराखंड के उस भूभाग में है, उसके बाद वो अल्मोड़ा आ गए, वहां पर भी उन्होंने हिमालय देखा। माताजी कमोवेश जन्म के वक्त ही चल बसी, तो ये एक ट्रॉमा भी रहा जीवन में, एक कमी तो कहीं ना कहीं खड़ी होगी। तो मदन जी, क्या किसी व्यक्ति के जीवन का एक ट्रॉमा उन्हें प्रकृति के इतने करीब ले गया कि उन्होंने जब अपने बिंब चुने तो उन्हें प्रकृति अपनी माँ के रूप में दिखाई दी, या वही अपनी जो पहली चेतना माँ से मिलती है वो उन्हें वहां से मिलती हुई दिखी?
1: बिल्कुल है। देखिए, होता क्या है कि इस हद तक प्रकृति जहां सुंदर हो कि जिसके आकर्षण से नहीं बचा जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं स्वाभाविक रूप से। एक संवेदनशील कवि तो लाता है, तो जहां के वो थे और वहां के जितने कवि अच्छे आए हैं पहाड़ से, वहां से लेके मंगलेश डबराल तक, सबने उस प्रकृति को अलग से देखा है। और कई चीजें हैं, जैसे मंगलेश जी की एक जो कविता है वसंत, जिसमें वो कहते हैं कि मुसाफिर की तरह गुजरता चला जाएगा अंधकार। यह अच्छा बिंब था, लेकिन इसको मैं ठीक से समझता नहीं था कि यह कैसे होता है। जब मैंने बारिश के मौसम में नैनीताल को देखा और बादल जब पहाड़ी से गुजरता है तो लगता है कि अंधकार जो है वो एक
0: आ रहा है, जा रहा है।
1: अंधकार जा रहा है, उसकी छाया, बादल की छाया। तो वह जो दृश्य है, अनूठा दृश्य वहां पर बनता है, उस अनूठे दृश्य को सबसे पहले शब्दबद्ध करने का काम पंत जी ने शुरू किया, उसके पहले कोई ऐसा कवि नहीं है। बाद में बहुत सारे कवि आए हैं वहां भी। तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात यह है कि गतिशीलता की बात बहुत अच्छी कही हमारे मित्र
0: प्रियदर्शन,
1: तो प्रियदर्शन जी ने। लेकिन उसमें एक और चीज देखिएगा कि छायावाद का जो एक सूत्र बना कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति का ऐसा रूप जो मनुष्य जैसा हो, तो यह फॉर्मुलेशन जो बना है ये भी पंत के कारण बना है। वो बाद में और कवियों में भी है, निराला में भी है। जूही की कली जो कविता है वो पूरी तरह से स्त्री पर लगता है लिखी हुई कविता है। लेकिन शुरुआत मैं इसे पे ही कर रहा था कि ये जो नया बन रहा था सब कुछ, भाषा नई बन रही थी, संवेदना की एक नई बनावट थी, प्रकृति को जीवन को देखने का एक नया नजरिया था, ये सब कुछ नया नया था। जो परंपरागत हिंदी कविता है सरापा से लेके मैथिली शरणगुप्त तक, जो पूरी परंपरा है हमारी कई भाषाओं और कई काल की, उससे बिल्कुल अलग। इसी को मैं कहता हूँ कि कविता का स्थापत्य बदल रहा था, सिर्फ शिल्प नहीं बदल रहा था। तो ये काम पंत ने वहां से शुरू किया था। तो प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में देखना, जीवन के रूप में देखना, हाँ ये बात जरूर थी कि मनुष्य के रूप में जब निराला देखते हैं तो ताकतवर मनुष्य दिखाई देता है, संघर्षशील मनुष्य दिखाई देता है। पंत जी के यहाँ थोड़ा कोमल, थोड़ा संकुचित, कुछ अलग तरह का है, ये भी है। लेकिन आप किसी भी दृष्टि से शुरुआती 3 संग्रहों तक जब देखेंगे, पल्लव वीणा वगैरह तक पंत को पढ़ेंगे, तो पंत किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं, किसी भी बड़े कवि यानी निराला से कहीं पीछे नहीं। उसके बाद जो एक विकास की यात्रा निराला की शुरू होती है वो बिल्कुल विकासमान है, बहुत दूसरी तरफ चली जाती है। और पंत जी ग्राम्या वगैरह में आते हुए गांव के जीवन का जब लिखने लगते हैं तो वहां उनकी कविताएं थोड़ा यांत्रिक, थोड़ा दबती है अलग। और वहां से लेके जब वो अरविंद दर्शन में जाते हैं तब, और फिर अंत में जब महाकाव्य जो लिखा उन्होंने, तो वहां तक आते आते चीजें अलग तरह की हुई है, उस पर बात होती रहती है। और वहां तक आते आते निराला बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, लेकिन शुरुआती दशक में निराला और प्रसाद दोनों से बड़े कवि, और सबसे पहले भाषा की संरचना को, नए शिल्प रचने की प्रवृत्ति को, सब चीज को विकसित करने का काम पंत ने किया। तो पंत की यह जो अग्रगामी भूमिका है, एक समय के परिवेश को बदल देने की भूमिका है, वो बहुत बड़ी है। इस रूप में उनका रेखांकन नहीं किया,
0: मुझे लगता है प्रियदर्शन जी को अच्छी कविता खोज के
2: नहीं, क्योंकि बात हो रही थी पंत जी के आगे के दौर की, जिसमें उन्होंने नेहरू पे कविता लिखी, तिलक पे लिखी, महात्मा गांधी पे लिखी। बल्कि मैंने पाया ये कि निराला की वो कविताएं तो बड़ी चर्चित हुई, जैसे वह तोड़ती पत्थर और ये सब, पंत जी ने जिन समुदायों का नाम लेना वर्जित है उन अनुसूचित जातियों पे कविताएं लिखी हैं। लेकिन इसमें एक प्रयत्न दिखता है, वो जो उनकी सहजता, जो नैसर्गिक गति उनकी है, वो पुरानी प्राकृतिक कविताओं में ही दिखती है। जैसे बहुत अच्छी कविता है बापू के प्रति, मुझे लगा कि हम लोग बापू स्टूडियो में बैठे हैं, और सब तरफ बापू की तस्वीरें भी हैं। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम मानसहीन, तुम रक्तहीन, अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये लंबी कविता है, तिलक पे कविता है, विवेकानंद पे कविता है। तो लगता है कि अपने समय के मूर्धन्यों पे, जिन व्यक्तित्वों ने भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण किया, उन सब पे पंत लिख रहे हैं। कई बार वो प्रयोग भी करते हैं
1: दायित्व की तरह,
2: यानी गुलाब को लेकर अगर निराला ने लिखा तो पंत ने तो कहा कि ताज का मृत्यु

0: का ऐसा पूजन हम क्यों करें। और वो कविता मुझे तो थोड़ी विस्मय में डालती है, क्योंकि ताज को मुझे याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा था कि काल के कपोल पे आंसू की बूंद है, और साहिर ने उसका दूसरे ढंग से कहा था कि एक शहंशाह ने कि हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। पंत इसको क्या देखते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटित सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, मानव ऐसे भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल करें जीवन का प्रांगण, और विलम्ब शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। ताजमहल को लेकर किस मिजाज में उन्होंने ये कविता लिखी होगी, यहाँ वो सिकुमार नहीं बिल्कुल एक तरह के कि आक्रामक वैचारिक मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं,
1: कठोर कवि,
0: बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं। तो शायद अपने आप को बदलने की कोशिश है, शायद कुछ नए चिंतन की कोशिश है, जो कई बार विफल भी रहती है। विफलता कोई ऐसी चीज है जिस पर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए, विफलता से ही सफलता का रास्ता बनता है। लेकिन जहां पंत अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं वो वही हिस्सा है जिसको आप बताते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वहां प्रकृति से लगातार बतियाती उनकी कविताएं, और प्रकृति के मानवीकरण की जो बात मैं भूल गया था उन्होंने ठीक याद दिलाई। तो उस छायावादी कविता का चरम पंत के यहाँ मिलता है।
2: थोड़ा मैं आपके इस बात पे भी दृष्टि चाहूंगा रामकिशोर जी, आपसे चाहूंगा कि आप इस बात की शुरुआत करें कि भाषा और शिल्प की जब हम बात करते हैं तो आज जब हम इंग्लिश के दौर में गुजर रहे हैं, जैसा कि मदन जी ने कहा कि साहसिक कार्य उन्होंने किया वहां पे खड़ी बोली से फिर हिंदी की तरफ आने का जो साहस था, तो उसे फिर हम अब आज थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसे आप आज वर्तमान समाज के हिसाब से जरा समझाएं कि उनकी भाषा आज कितनी अब प्रासंगिक रह गई है और क्या क्रांति थी वो।
1: देखिए पंत का जब जन्म हुआ तो हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे थे, और द्वेदी युग के बाद ये कार्य शुरू हुआ, रोमांटिसिज्म की जिसको बात करते हैं, स्वतंत्रतावाद की बात करते हैं, उस समय का एक काल आया। और उस समय जो हिंदी लिखी जा रही थी, या उस समय जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है कि शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर का उन पर प्रभाव रहा, और वो अंग्रेजी कवियों से भी प्रभावित हुए, शैली या कीट्स से तो वो ज्यादा प्रभावित रहे, और उस समय के वो उनके पूर्ववर्ती थे तो उनकी कई रचनाओं पर आरोप भी लगता है,
0: शैली
1: की छाया दिखाई पड़े,
3: पूरी एक किताब ही निराला ने लिख दी।
1: हाँ
3: पंथ और पल
1: तो उनकी एक टिंटर्न एबे जो है,
2: टिंटर्न
1: एबे वो, और अगर आप नौका विहार को आप अध्ययन करते हो उसमें वही आध्यात्मिकता वही रहस्यवाद आपको उसमें देखने को मिलता है। तो हर काल की अपनी एक आवश्यकताएं होती है, हर काल की परिस्थितियां बदलती हैं। तो उस समय जब हम लोग विकास के क्रम में थे तो जैसी आवश्यकताएं मनुष्य की बदल रही हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है, हम लोग वैश्विक होते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाषा पर हमारा प्रभाव नहीं आएगा, हम अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द ग्रहण करते जा रहे हैं। तो प्रांजलता पर जहां तक बात है, क्योंकि पंत जी की शिल्प बहुत प्रांजलता, बहुत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे बिंब गढ़े, जैसे नक्षत्र को कहा उन्होंने शशि शावक, तो शशि शावक जब आज का बच्चा पढ़ेगा तो शशि शावक को समझ ही नहीं पाएगा कि वो नक्षत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार कविता होनी चाहिए, और कविता वही है कि जो सरल भाषा में पाठक के हृदय तक पहुंच जाए। किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए अगर पाठक को शब्द कोश उठाना पड़े, उसका अर्थ ढूंढना पड़े, तो मैं समझता हूं कि कविता का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि वो सहज मन में नहीं जाती। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है एक बूंद, अब एक बूंद कविता को पढ़े तो आप उसको आत्मसात कर सकते हो कि जो निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद थी आगे बढ़ी, तो बहुत प्रभावी रचना है, लेकिन उनमें कोई ऐसा प्रांजलता का कोई उसमें आग्रह नहीं है। तो आप एक आम पाठक भी उस कविता को पढ़ करके अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, और जब वो अपने घर को छोड़ता है या जब किसी नए कार्य को करता है तो उसमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को सोच करके व्यक्ति पढ़ना छोड़ दे। लेकिन जहां तक इंग्लिश वाली बात जो है, उस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि वो आज ऐसा हो रहा है, लेकिन इंग्लिश लिखना वो मैं समझता हूँ हिंदी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये होगी अगर हम अपनी हिंदी में हम भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अधिक बढ़ाए अंग्रेजी भाषा के बजाय, तो हमारे उससे जो है ना राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीयता की भावना में भी विकास होगा। लेकिन अंग्रेजी तो इस मामले में रुकती नहीं, अंग्रेजी तो और दूसरी भाषाओं के शब्द भी बाकायदा ग्रहण करती
2: रहती है,
1: हर वर्ष वो अपने नए शब्दों का स्वीकार करती है।
2: भाषा पे आपको जोड़ना चाह रहे मदन जी?
3: देखिए भाषा तो निरंतर विकसित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और हमेशा वो आगे ही जाती है, और जो पुराणपंथी लोग होते हैं उनको हमेशा लगता है कि भाषा का पतन हो रहा है, जब प्रसाद निराला लिख रहे थे तब भी उनके पूर्ववर्तियों को लग रहा था कि ये कविता का भी पत्र

0: नए भाषा का भी पतन है। तो पीछे के लोगों को हमेशा लगता है होता है कि अपने समय में भाषा सामाजिक जीवन और उसकी संवेदना से कितनी जुड़ी हुई है, यही महत्वपूर्ण होता है। तुलसीदास की भाषा आज की भाषा कहाँ से है, कौन समझता है? एक अवध में छोड़ दीजिए तो, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश में तुलसीदास पढ़े भी जाते हैं, समझे जाते हैं, सम्मानित हैं। उनकी भाषा तो है नहीं, हमारी समझ के बाहर की वाली भाषा है वो, फिर भी अपने समय में वह भाषा अपने समाज से गहरे जुड़ी हुई थी। आप देखिएगा कि पंत का जो प्रारंभिक लेखन है, प्रारंभिक जिन कविताओं की हमने चर्चा की है, वो कविताएं अपने समय से वो जुड़ती है और समाज में संवेदना की नई बनावट का उद्घाटन करती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में दिक्कतें पैदा होने लगी थी, जैसा कि हमारे प्रियदर्शन जी ने बताया कि बाद में बहुत बार ये लगता है कि प्रयत्निक है मामला, बहुत कुछ प्रयत्न करके वो लिख रहे हैं, इसमें ऐसा लगने लगता है, तो ये एक अलग चीज हो जाती है इसलिए। लेकिन जब पंत पर हम बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक पंत और उनका जो मौलिक योगदान है उसी पर बात करनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ऐसा कई बार हुआ है विदेश में, वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ है, उन्होंने 30 वर्ष तक जो कविताएं लिखी वही महान कविताएं थी, उसके बाद भी तो लिख रहे थे, उनको कोई अकाउंट्स में नहीं रखता। तो बाद का जब आप रखेंगे ना, लोकायत को जब आप रखेंगे, तो लोकायत में तो छंद भी लगता है कि बहुत कोशिश करके बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वहाँ यही है कि वो लग रहा है कि कविता कोशिश करके बनाई जा रही है, जहाँ निराला में बिल्कुल नहीं लगता है राम की शक्ति पूजा में कि कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रवाह है, एक उदा। तो वो बाद की चीजें हैं। इन चीजों को भूलकर मैं ये मानता हूँ कि पंत को हमें इसीलिए याद रखना चाहिए कि पंत ने हिंदी की कविता के पूरे स्थापत्य को, हिंदी समाज की संवेदना की नई बनावट को समझते हुए बदलने का प्रयत्न किया, और ये एक ऐतिहासिक कोशिश थी। उसके बाद ही वो निराला है, उसके बाद ही प्रसाद है, दोनों उनसे बड़े कवि हैं टोटलिटी में, लेकिन वो शुरू करने वाले वही हैं।
1: जिस हिमालय की गोद में सुमित्रानंदन पंत पैदा हुए, इतना विशाल है कि उनके बारे में चर्चा करना भी के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन प्रदर्शन जी मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो संक्षिप्त।
2: देखिए, भाषा को लेकर उनकी एक कविता है, वाणी वाणी मेरी तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये शायद बाद की उनकी कविता है, जब उनको लगता है कि वाणी को आभरण मुक्त होना चाहिए, अलंकार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि भाषा पे हमने बात की तो जो मदन जी ने कहा वही ठीक है कि बिल्कुल सहज होनी चाहिए। शुद्धतावाद तो भाषाओं का शत्रु होता है, वो जान ले लेता है भाषाओं की, और भाषाओं में सिर्फ भारतीय भाषाओं की नहीं, अंग्रेजी की भी कई ऐसे शब्द है जो इतने सहज हिंदी में हो गए हैं। साइकिल अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ बदल गया है। अंग्रेजी में साइकिल का अर्थ चक्र है, हमारे यहाँ वो बाइसिकल के अर्थ में साइकिल है। और कई कविता संग्रहों के नाम, केदार जी के संग्रह का नाम साइकिल है, साइकिल से जुड़ता है, टॉलस्टॉय साइकिल, नीलेश रघुवंशी के उपन्यास का नाम है साइकिल।
0: ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए,
2: तो बहुत सारे शब्द शमशेर के यहाँ आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, मुक्ति बोध भी मिलेंगे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा में घुल मिल जाते हैं और भाषा उससे खिल जाती है। पंत ने जो काम किया, हालांकि हम छायावाद की समूची भाषा के बारे में बात कर सकते हैं, कि जो स्वच्छंदता हिंदी को दी, हिंदी के सौष्ठव को लेकर उसके पहले थोड़ा संदेह था, लेकिन एक अलग तरह की उदात्तता, एक अलग तरह की विराटता, एक अलग सी प्रांजलता छायावाद ने और पंत ने हिंदी कविता को दी, जहां तक आज भी पहुंचना बहुत मुश्किल काम है।
1: इन रंभाती नदियों के विचार के प्रवाह को रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नदियों का जल वाष्पित हो के वो बादल बने, और बादल बन के बरसे। तो इन पंक्तियों के साथ पहले मैं आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और श्रोताओं के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारें धारें गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी और पाख बिना तारे शशि दिनकर। नमस्कार,
0: नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: प्रगति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, अभी आप इस विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कवि और आलोचक श्री मदन कश्यप, वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम किशोर उपाध्याय, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री प्रियदर्शन। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव।
4: रविवार दिनांक 10 मई को प्रतिष्ठित

0: संस्था साहित्य उपवन रचनाकार के तत्वाधान में एक ऐतिहासिक साहित्यिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवि डॉक्टर आर.डी. गौतम विनम्र द्वारा रचित कृति शब्दों की विनम्रता का भव्य विमोचन देश प्रदेश के ख्याति लब्ध रचनाकारों और सैकड़ों सुधीजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राकेश सक्सेना ने की। विमोचित कृति शब्दों की विनम्रता पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने इसे साहित्य जगत के लिए एक अनमोल थाती बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री नवीन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार श्रोत्री एवं श्री किशन लाल भारती का विशेष योगदान रहा। समारोह के समापन पर संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रोहित रोज एवं डॉक्टर आर.डी. गौतम विनम्र ने सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। दिनांक 11 मई शिलोंग साहित्य महोत्सव का दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया गया। मेघालय सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बीकानेर हाउस में जारी रहा, जिसमें पूर्वोत्तर की संस्कृति साहित्य और स्वदेशी परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दिनांक 12 मई मंगलवार को दिल्ली के हिंदी भवन में वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैश्विक हिंदी परिवार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डायस्पोरा से संवाद कार्यक्रम श्री सुभाष शर्मा के साथ आयोजित किया गया। भारत की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने 14 मई को वर्ष 2026 के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उपन्यास, कविता संग्रह, लघु कथाएं और आलोचना शामिल हैं। इस वर्ष युवा और क्षेत्रीय लेखकों को मान्यता मिली है, जो भारतीय साहित्य की बढ़ती विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। पुरस्कार समारोह दिसंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी में दिनांक 14 मई बहुभाषी कवि सम्मेलन और बाल साहित्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इन बहुभाषी सम्मेलनों में विभिन्न भाषाओं के कवि अपनी मातृभाषा में कविता पाठ करते हैं। इस सत्र में कुल 12 भारतीय भाषाओं में काव्य रचना प्रस्तुत की गई। सांस्कृतिक संगम के इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों ने भाग लिया। ऐसे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कवियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए किए जाते हैं। दिनांक 15 मई को दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रवींद्र भवन में मुख्य रूप से संगीत नाटक अकादमी का विशेष सत्र रवींद्र प्रणति आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की साहित्यिक, सांगीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है, जिसमें पुस्तक लोकार्पण और व्याख्यान भी शामिल किए गए हैं। दिनांक 16 मई को ढाई आकड़ साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। यह दिल्ली में हिंदी भवन सहित अन्य संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महत्वपूर्ण साहित्य उत्सव है। यह 16 मई 2026 में होने वाला एक प्रमुख साहित्यिक संगम है। यह कार्यक्रम विरासत से भविष्य तक की थीम पर आधारित है, जिसमें साहित्य, कविता और सांस्कृतिक संवाद शामिल है।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, माथे पे जमाने के मुकद्दर की तरह हूँ। नमस्कार सभी का स्वागत, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त काजल। और आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। तहे दिल से आपका इस्तकबाल।

0: बाल करना चाहूंगी, आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: सामाइन की खिदमत में मैं रीता गांगुली आदाब पेश करना चाहती हूँ, और बहुत खुशी होती है जब भी आकाशवाणी मुझे बुलाती कोई भी खिदमत के लिए, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ आकाशवाणी के लिए हूँ। मैं बचपन से अचानक गाने लगी, नाचने लगी, पेंटिंग करने लगी, और आकाशवाणी लखनऊ के उन्होंने हमको ढूंढ के निकाला। तब तो कुछ भी, पहला यानी जिंदगी में पहली जो कमाई मेरी हुई
0: जी
1: वो 5 रुपए।
0: क्या बात,
1: एक चेक।
0: हाँ,
1: लेकिन तब 5 रुपए बहुत होते थे
0: जी।
1: ओहो, मैं भूल नहीं सकती हूँ, सबको हमने आइसक्रीम खिलाया, आई वाज वेरी प्राउड। ऑल इंडिया रेडियो में मेरी जो भी ग्रेजुएशन हुई, घुसी थी बी होकर, उसका बी हाई हुई, उसके बाद ए हुई, फिर ए प्लस हुई, उसके बाद टॉप ग्रेड हुई, ये सब न मैं जानती हूँ किसने दे दिया, मैं भूल नहीं सकती। ये एक महकमा है जिसको मैं सल्यूट करती हूँ।
0: मैम, आपने अपना सफ़र जब शुरू किया कला के क्षेत्र में, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा?
1: देखिए, फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी या ख़राब थी ऐसा नहीं,
0: जी
1: बात यह है कि हमने एक्सीडेंटली कहीं पर, हमारे शहर के बड़े बड़े लोग सब मिलके एक थिएटर कर रहे थे
0: जी,
1: कुछ रिलीफ फंड के लिए,
0: जी
1: मिसेस टैगोर आई हुई थी, रविंद्रनाथ की पुत्रवधु, और 3 महीने रह के मेहनत करी सबको लेके। उसमें मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, वो उनको एक रोल मिला हुआ था, वो भी हमको भी तैयार ऐसे करके लेके गई और खुद मेकअप रूम में चली गई, और जो स्क्रीन के इंचार्ज था उसको दे दिया, भाई बहुत नटखट है
0: जी।
1: 2 साल 4 महीने 5 महीने की थी मैं
0: जी,
1: बहुत हाथ मत छोड़ना, पर नहीं नहीं क्यों छोड़ेंगे, जब चाहे स्क्रीन खोलना है और बंद करना और क्या
0: जी।
1: तो पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम के वक्त वो बहुत बड़ी बात है, वो मैहर बैंड का प्रोग्राम था। मैहर बैंड मतलब तब बाबा अलाउद्दीन कंडक्ट कर रहे हैं, अली अकबर, रविशंकर
0: जी,
1: निखिल बनर्जी नहीं थे तब, शरण रानी बकरीवाल, तिमिर वरन, ऑल द टॉप परफॉर्मर्स, पन्नालाल घोष, ये सब बजा रहे थे। अचानक वो स्क्रीन नहीं खुला, तो उसको जाना ही था ठीक करने के लिए। उस जमाने ऑटोमेटिक स्क्रीन नहीं होता कि बटन दबाया खुल गया
0: जी जी।
1: तो वो कहे हमको लेके गए, उन्होंने कहा था छोड़ेंगे नहीं तो कहीं भाग जाएंगे, खो जाएंगे, हमको ले गए। फिर दोनों हाथ इस्तेमाल करना, नहीं तो खुलता नहीं था
0: जी।
1: वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके साइड में गए, मैं बीच में ही रुक गई थी, बहुत आदाज से मैं नमस्कार करके खड़ी थी, और दोनों विंक से सब लोग बहुत गुस्सा करने लगे, कोई लॉलीपॉप दिखा रहा है, कोई चॉकलेट दिखा रहा है, मैं हिलने वाली नहीं हूँ। मैंने जब तक चला ऑर्केस्ट्रा मैं नाचती रही। उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर, ये अखबार होते थे
0: जी,
1: तो उसके फ्रंट पेज में मेरी तस्वीर थी, और मिसेस टैगोर क्रिएट्स वंडर, मैं ट्रेनिंग 2-year-old child, हमको वो नशा लग गया। और उस प्रोग्राम में सरोजिनी नायडू आई हुई थी, क्योंकि वो फंड रिलीफ का था, तो जो भी रेज हुआ वो फंड रिलीफ के लिए किसी को दिया उन्होंने, इसीलिए उनको बुलाया गया। अब उन्होंने जो मुझे देखा, वो तो जहाँ जाती थी हमें ले जाती थी, मैंने कहा वो जो बहुत बुजुर्ग आदमी है वो ही बजाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं नाचूंगी। अब वो इतनी बड़ी स्टेट्समैन, वो किसी को बुलाए ना कैसे करे वो। तो उसके बाद मैं काफी दिन नाचती रही, बेबी रीता को जानती वानती थी नहीं, सीखा होखा कुछ नहीं
0: जी।
1: कोई छोटी सी लड़की हो, लंबे लंबे बाल हो, बड़े आँख हो, तो उसको अच्छे ही लगता, लोग छोटी बच्चे नाच रही फुदक रही है। लेकिन जब मैं 5-6 साल की हो गई, मेरे पिताजी ने बुलाया, कहे बेटा बहुत हो गई
0: जी,
1: तुम पढ़ो क्योंकि यही काम है
0: जी,
1: तुम विद्या दान करो, उसके लिए तुमको खुद पहले विद्वान होना, विदुषी होना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: पढ़ो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो कह रहे ठीक है, डांस तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तो थोड़ी जिद्दी थी बचपन में से, मेरे माँ ने कहा कि काय को उसको पीछे बोले, छोड़िए अपने आप छोड़ दिए खराब। पिताजी ने कहा अच्छा चलो शर्त लगाते हैं, जिस दिन तुम सेकेंड हो जाओगी उस दिन खुद ब खुद छोड़ दो। तो इन्होंने सोचा कि हम बड़े होंगे सब टाइम पे फर्स्ट रहेंगे, कोई जरूरी नहीं, हम भी सेकंड नहीं आए, और उन्होंने भी छोड़ने के लिए नहीं बोला। पढ़ाई में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जिस वक्त बच्चे खेलते कूदते हैं उस वक्त मैं बहुत सिंसियरली वेरी

0: कन्विक्शन के साथ मैं पढ़ती थी।
1: कला अपने आप में एक साधना है और पढ़ाई जो तालीम है वो भी अपने आप में एक साधना, और आप दोनों को साथ लेकर चली और दोनों पे में आप टॉप पे रही हैं। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आने वाली जो जनरेशन है या जो जनरेशन हमें इस वक्त सुन रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
0: शांति निकेतन में हमारा दाखिला हुआ
1: जी,
0: बहुत छोटी उम्र में थे, इसीलिए हमारी शर्त ये रखी गई कि हम नाच भी सीखेंगे, एक गाना भी सीखेंगे, उसके अलावा ग्रेजुएशन करेंगे।
1: जी,
0: इस तरह से हमारी गाना भी शुरू।
1: ये जानना चाहूंगी कि मौसीकी की पहली तालीम ध्रुपद से आपने शुरू की, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
0: उसकी वजह ये थी कि पिताजी ने मेरी बड़ी बहन जो अपने भी बहुत मशहूर बंगाल की लता मंगेशकर कहा जाता है, उनके लिए पिताजी ने घराने के तानसेन जी हैं
1: जी,
0: गौड़ी घराने का उसका गोपेश्वर बंदोपाध्याय घर बुला के रख, और उन्होंने हमको तालीम दी। हमको भी तालीम लेने के लिए कहा गया
1: जी,
0: हमको तो बहुत बोरिंग लगती थी, तो दो लेकिन बैठना पड़ता था। बहरहाल इस तरह से हमारा शुरुआत तो गोपेश्वर बंदोपाध्याय से तालीम मिली। फर्क सिर्फ ये है जो नींव है हम लोगों की परफॉर्मिंग आर्ट की, उसके नींव रहा भक्ति और प्रेम, रोमांस, वो रोमांस खो गया है, वो इश्क का इंटरप्रिटेशन बदल गया है, क्योंकि ये विरह था जो बेस था हमारे गाने का। जैसे बाबा फरीद ने कहा, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरह न उपजे वो तन जान मसान। यानी विरह अगर है तो उसको सजो के भी रखना पड़ता है। खूबसूरत चीजें हैं, भावनाएं हैं, समझ है, उसको सजो के रखना पड़ता है ताकि वक्त आने से उसका इस्तेमाल कर सके
1: जी।
0: यही इमोशनल मेमोरी करके बाद में सांस्लाविस्की ने थिएटर में बताया।
1: आपने 2 साल की उम्र में डांस की परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। फिर आप संगीत की तरफ से मुड़ी, जिस तरह से आपने बताया, हाँ। फिर आप थिएटर की तरफ आई, ये सब आपने कैसे किया? क्योंकि डांस अपने आप में बहुत एक रियाज और साधना, उसके बाद संगीत और फिर रंगमंच थिएटर।
0: अच्छा, डांस में भी हमारे देश के तीनों किस्म के डांस हमने सीखा है
1: जी,
0: और उसमें टॉप लोगों से सीखा है
1: जी।
0: कुंजू के रूप में एकमात्र महिला कथकली डांसर हूँ जिन्होंने मंदिर में नाचा, हमारी गुरु, गुरुओं की कृपा रही। एक ही चीज मेरे पिताजी ने हमको सिखाया था कि बेटा अगर गुरु है, बहुत कुछ क्वालिफिकेशन एक गुरु के होने चाहिए, उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, पैर साफ होना चाहिए, आंखें खूबसूरत होना चाहिए, आवाज ठीक होनी चाहिए, ऐसे 32 गुण चाहिए
1: जी
0: एक गुरु को। और शिष्य को सिर्फ 2 चीज, फेथ एंड सरेंडर। गुरु अगर आपने आपको मिल गया और मान ली, तो उसमें विश्वास रखिए और अपने को कंप्लीटली उनके चरणों में न्योछावर करिए, अपने आप आ जाएगा। नहीं तो मेरी एक पीढ़ी के गाना नाचना कैसे हो सकता है? ये तो उन लोगों की देन है, इसमें मेरी कोई तारीफ की बात नहीं है। हाँ, मेहनत करी विश्वास के साथ। मणिपुरी में यही सीख गई थी, शांति निकेतन में
1: जी।
0: हमारा नाच देख के और गाना सुन के स्टेज पे शंभु महाराज जी आए, हमको सिखाने लगे, फिर उनसे सीखने को मिला। अरे, भीमसेन जोशी जी की पहली तालीम तो उनके अंदर ही हुआ है, बहुत अच्छा सीखा हमने उनके पास
1: जी।
0: फिर उसके बाद में जब अमेरिका गई तो वहाँ मार्था ग्राम से सीखा, तो बहुत अच्छा सीखा वहाँ। वो उसका परफॉर्मेंस के लिए मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने बुलाया।
1: मल्लिकाई ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ भी, उनसे भी आपने तालीम हासिल की, कैसा अनुभव रहा?
0: वो भी देखिए, ये तीनों लोगों को, शंभू महाराज जी, सिद्धेश्वरी देवी जी और बेगम अख्तर साहिबा, बात सच है कि तीनों के पास मैं नहीं गई, ये किस्मत कहते हैं। मैं महाराज जी के पास जब सीखती थी
1: जी,
0: भाव कौन गली गए, वहीं पर अम्मा आई हुई थी, उनको स्पेशली बुलाया गया था बनारस से दिल्ली कि वो 1-2 स्टूडेंट को सिखाए
1: जी,
0: ताकि वो बनारस घराना जीवित रहे, और जिनको सिखाना सिखाएंगी उनको भी स्कॉलरशिप था
1: जी,
0: अच्छा था
1: जी।
0: तो उस जमाने में आप सोचिए, मालविका कानन, एटी कानन, क्या कहते हैं, माणिक वर्मा, ये लोग सब आए थे
1: जी,
0: रोज परफॉर्म होता था, सिलेक्शन में बैठती थी।
1: तो मल्लिकाई गजल बेगम अख्तर जी से आपका उस्ताद और शागिर्द का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा, बहुत ही

0: मेरा रिश्ता रहा, जानना चाहेंगे इस बारे में आपसे ज़रूर।
1: ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हुआ कि मेरे शौहर गए हुए थे उनको बुलाने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम था हिंदुस्तान में, शायद वो सबसे बड़ा प्रोग्राम, जितने भी गालिब के स्कॉलर थे
0: जी
1: उनका कुछ एनिवर्सरी था जिसमें ये लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जितने भी क्लासिकल गाने वाले उस्ताद उस जमाने में आए हुए थे, सबको एक एक गज़ल गा रहा था
0: जी।
1: और वो गज़ल संगीत नाटक अकेडमी ने दिया था। आखिरी में इंटरवल के बाद बेगम अख्तर का प्रोग्राम शेड्यूल था, तो उनको मधु करने के लिए हमको जो डायरेक्टर थे जिन वो ले गए, फिर आप आना चाहती हैं? मैंने कहा बिल्कुल, बेगम अख्तर कौन नहीं जाना चाहता। उनके पास मैं गई, आवाज़ इससे पहले एक प्रोग्राम में गई हुई थी मैं लखनऊ
0: जी,
1: जिसमें अहमदजान थिरकवा हमारे
0: जी जी
1: तबले में थे हमारे साथ,
0: जी जी
1: अम्मा गा रही
0: आकाशवाणी से ही थे वो भी,
1: हाँ श्रेष्ठतम तबला वादक बनने, और ये अपने राजन साजन जी के पिताजी हनुमान मिश्रा वो सारंगी पे थे। उसमें क्या हुआ कि अम्मा का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, मैंने गला फंस गया छालियों से
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा बेटा गाते रहो, तो मैं गाने रही, गाती रही। उसके बाद जब हो गया, बेगम साहब ने हमको सुन रखा था।
0: तो अब मैं रंगमंच की तरफ आती हूँ।
1: मैं सारा श्रेय इब्राहिम अलकाज़ी साहब को देती हूँ, मुझे मेरे ख्याल से वो सचमुच हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान ऋषि हैं जिन्होंने थिएटर को हमारे देश में रिवाइव किया और हमें साथ लिया। इंट्रोडक्शन हुआ उनके नए एक सिलेबस का, उसमें उन्होंने मेरे से काम लिया। उसके बाद नाट्य शास्त्र उन्होंने पढ़ाया, हमको सारे हिंदुस्तान घुमाया, सारे हिंदुस्तान में मूवमेंट देख के मैंने खुद एक कोर्स तैयार किया। तभी से मेरा इंटरेस्ट था
0: क्लासिकल
1: थिएटर को रिवाइव करना।
0: आपने किताबें भी लिखी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पर भी आपने पहली किताब लिखी, बेगम अख्तर साहिबा पर आपने किताबें लिखी, उन पर पहली डॉक्यूमेंट्री भी आपने बनाई
1: जी,
0: क्या कहेंगे इस?
1: बिस्मिल्लाह खान एंड शहनाई, द सीट ऑफ शहनाई, बिस्मिल्लाह खान एंड बनारस
0: जी,
1: द सीट ऑफ शहनाई, इस तरह से वो किताब लिखी गई
0: जी।
1: फिर अम्मी पे कि उनकी जो ये सोच है, जो समझ है
0: जी,
1: उसको हम बरकरार रख सकते हैं और उनके बारे में रिसर्च करके,
0: बहुत ही खूबसूरत ही बातों का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन वक्त हमसे कह रहा है कि हमें समेटना होगा, बहुत कुछ है पूछने के लिए। चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। और ये बात प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी पर बिल्कुल सही बैठती है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी तहे दिल से कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और अपने अपना जो अनुभव हमसे बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमारी अतिथि थी विदुषी रीता गांगुली, इनसे बातचीत कर रही थी काजल सूरी, प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हमारे अतिथि रीता गांगुली, पद्मश्री, जानी मानी रंगकर्मी और गायिका, भेंटकर्ता व प्रस्तुति काजल सूरी की। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब समय है मिट्टी दी महक का, कंपेयर संदीप कौर।

आइए नजर डालते हैं आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबगाही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप शब्द सुनेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें नश्र होंगी 9:50 पर और 10 बजे सुनिएगा प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्न गज़ल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गज़लें नश्र की जाएंगी। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मारूफ शायर जानिसार अख्तर के साथ रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर एक ड्रामा नश्र किया जाएगा जिसका उन्वान है बड़े साहब की बात निराली। दिन में 12 बजे खबरें नश्र की जाएंगी। 12:10 से आप सुन सकेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 12:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नश्र होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम सुबगाही। आज सुनिए बलजीत सिंह और साथियों से ये शब्द।

0: अभी आप सुन रहे थे सुबुगाही प्रोग्राम के तहत ये शब्द और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 17th ऑफ मई एंड टुडे वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इट एम्स टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, प्रमोट प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड कंट्रोल एंड आल्सो एनकरेज एक्शन एट इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम लेवल्स।
2: जी हाँ, ये आज भी दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। अनुमान के अनुसार विश्व भर में 1 अरब 40 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। प्रभावी और किफायती उपचार उपलब्ध होने के बावजूद बहुत से लोगों को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी तक नहीं होती।
1: Absolutely, and this year the global message is beautiful and also simple: controlling hypertension together. When it comes to our health, small happy steps make a big, huge difference.
2: बिल्कुल, चूंकि रक्तचाप का ध्यान रखना केवल खुद की सेहत के बारे में जागरूक रहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके जरिए आप अपने परिवार के साथ लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।
1: So true, and the government is also making it easier than ever for us to stay healthy together with wellness and care now just a short walk from your neighborhood. Step 1, you have to visit your nearest Ayushman Arogya Mandir for a routine complimentary blood pressure check. It's easy, quick and also completely free of cost.
2: बिल्कुल तन्वीर, सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों का विशाल नेटवर्क, उच्च गुणवत्ता वाली सरकार द्वारा प्रमाणित दवाएं बेहद किफायती दरों पर हर घर तक पहुंचा रहा है, जो आपकी पहुंच से दूर नहीं है।
1: And here is a wonderful tip from the FSSAI for every kitchen. Aaj se thoda kam. Just a small reduction in our daily salt intake keeps our hearts happy and

0: energetic.
1: और 1540 की बात करें तो आज ही के दिन शेरशाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया. इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था. इसके अलावा 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए. 1954 की बात करें तो आज ही के दिन अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सरकारी स्कूलों में नस्ली अलगाव को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके अलावा 1975 में आज ही के दिन जापानी महिला जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी. 1990 की बात करें तो आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समलैंगिकता को मानसिक बीमारियों की आधिकारिक सूची से पूरी तरह से हटा दिया था. और 2010 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया. ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है. अग्नि 2 का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाओं और भारत डायनेमिक्स हैदराबाद के साथ किया गया था.
0: And now, moving towards our next segment, let's talk about the great personalities who have taken birth on this day or who have left for their heavenly abode on this particular day. And the first person in the list is...
1: जी, बिल्कुल, आज हम याद कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया. 70 के दशक की अगर हम बात करें तो वो रोमांस का दौर था और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे दिलीप कुमार. धर्मेंद्र उस दौर में मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में बनी, और 1972 की सीता और गीता जैसी बेहतरीन फिल्मों से खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे. समय के साथ वो फिल्में बनाने में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी तो झट से खरीद लेते थे. सीता और गीता में काम करते हुए धर्मेंद्र ने उस फिल्म की राइटर जोड़ी सलीम जावेद की एक कहानी सुनी और नाम था जंजीर. तो सबसे पहले जंजीर का ये डायलॉग सुने.
2: तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है. जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम गला खराब हो जाएगा. घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे.
3: हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो.
2: जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा.
1: और अपने श्रोताओं को बता दें कि सलीम जावेद तब अंदाज और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में लिख चुके थे. कहानी पसंद आने पर धर्मेंद्र ने जंजीर की स्क्रिप्ट झट से खरीद ली. और लेकिन धर्मेंद्र ने दिलचस्पी तो दिखाई और कहानी भी सुनी. उन्हें वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि वो झट से इसे करने के लिए मान गए थे. लेकिन फिर एक डील हुई और धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा से समाधि की स्क्रिप्ट खरीदी और बदले में 3,500 रुपए लेकर जंजीर की स्क्रिप्ट थमा दी जो सलीम जावेद ने उन्हें दी थी. इसके अलावा प्रकाश मेहरा ने एक और बहुत अच्छी फिल्म निर्देशित की थी. उसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा काम किया है. तो उस फिल्म का एक गाना सुन लें.

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटिन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को करीबी शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब ओफ क्रिस्टरसन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद

0: मख्तर की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही आज का हुस्ने गज़ल प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। आज की प्रोग्राम में आपने बेगम अख्तर की आवाज़ में शमीम जयपुरी और सुदर्शन फ़ाकिर का कलाम सुना और हरिहरन से आपने सुना मिर्ज़ा गालिब और अकबर हैदराबादी का कलाम। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब सुनिए रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ शायर जानिसार अख्तर के साथ अमीक हनफी की गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग।
1: अख्तर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई अच्छा शायर एक शायर की हैसियत से फिल्म में दाखिल होता है तो या तो फिल्मी शायर की हैसियत से कामयाब नहीं होता और या फिर उसकी अपनी जो शेरी सलाहियतें हैं उन पर फिल्मी दुनिया का असर पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है?
2: मैं ये बात तो नहीं मानता कि अच्छा शायर फिल्मी दुनिया में कामयाब नहीं होता या नहीं हो सकता, इसलिए कि शेर कहने की सलाहियत वो बहरकैफ अपने साथ लेके आता है। ये बात जरूर है कि फिल्म में गीत लिखना एक मुख्तलिफ चीज है। आम अदबी शायरी में शायर वो कहता है जो वो महसूस करता है और जो वो कहना चाहता है। अलबत्ता फिल्मी दुनिया में उसे कहानी के किरदारों के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक, वो भी दी हुई ट्यूनों पर अल्फाज बिठाना होते हैं। अगर शायर ये सलाहियत रखता है, जिसमें थोड़ी बहुत म्यूजिक को जानने की सलाहियत भी शामिल होना जरूरी है, तो वो उन किरदारों के जहन को और उनके सोचने के तरीके को और जिंदगी के बर्ताव को अपना कर उसे शेर में, गीत में इस तरह पेश कर सकता है।
1: आपकी मुराद ये है कि फिल्मी शायरी एक बहुत ही यानी बहुत ज्यादा तरही शायरी है, यानी इसमें कई तरह होती हैं। एक तो कहानी, किरदार, सिचुएशन, ट्यून, तो इतनी सारी पाबंदियों के अंदर घिरा हुआ शायर क्या किसी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा कर सकता है?
2: हाँ, मेरे ख्याल से जरूर कर सकता है। वो फिल्मी शायरी बुनियादी तौर पे ड्रामे की शायरी है। अगर अदब के अंदर कामयाब ड्रामे लिखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां भी लिखने वाला उन किरदारों ही के मुताबिक और उस कहानी के मुताबिक ही ड्रामे लिखता है। मंजूम ड्रामे लिखे गए हैं दुनिया के अदब के अंदर, हजारों मंजूम ड्रामे ऐसे हैं कि जो आज हमारे क्लासिक्स में शुमार किए जाते हैं, तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि फिल्मी ड्रामे में शायर उन किरदार और उन कहानियों को लेकर अच्छी तख्लीक न दे सके।
1: पहले जिस किस्म के गाने फिल्मों में आते थे उनमें वाकई शेरियत भी होती थी, मौसीकी भी होती थी और जो बोल होते थे या जो लफ्ज होते थे वो यानी शायरी के मेयार पर भी अच्छे मालूम होते थे। अब जिस किस्म की शायरी होने लगी है मगरबी धुनों की वजह से या पॉप म्यूजिक की मकबूलियत की वजह से, उनमें लफ्ज का कोई, फिल्मी शायरी में, फिल्मी गानों में लफ्ज का कोई खास किरदार नहीं रह गया है, बल्कि लफ्ज उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह आम गुफ्तगु में और इकहरी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तब्दीली किस हद तक आपकी नजर में खुशगवार है या नागवार है?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो गाने लिखे जाते थे, जो गीत कहे जाते थे, उसमें शायर को आज के शायर की बनिस्बत थोड़ी बहुत छूट थी, इसलिए कि शायर को ट्यून का पाबंद नहीं होना पड़ता था। वो गाने शायर पहले लिखता था और बाद में उसकी ट्यूनें बनाई जाती थी, आम तौर से यही रिवाज था। और मेरे ख्याल से यही तरीका ज्यादा मुस्तहसन था। आजकल पहले ट्यून बनाई जाती है, शायद उसकी वजह यह हो कि हमारे आज के कंपोजर, आज के म्यूजिक डायरेक्टर इतने मसरूफ हैं कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो किसी लिखे हुए गीत की ट्यून बनाए। या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अक्सर उनमें से ये सलाहियत ही नहीं रखते हो। दूसरी चीज जो आपने कही कि वो पॉप म्यूजिक या जो मगरबी मूसीकी हमारे यहाँ आई है उसके ऊपर वो रचाव पैदा नहीं होता गानों में जो पहले गानों में था, तो मैं इसे मानता हूँ। वो रचाव गालिबन इसलिए भी पैदा नहीं होता कि अंग्रेजी धुने और हमारी जबान को ज्यादा मेल नहीं खाती एक दूसरे से। पहले हिंदुस्तानी मूसीकी की धुनें दी जाती थीं या बनाई जाती थीं, उनके साथ हमारी जबान एक किस्म से मैच करती थी और उनमें ज्यादा रचाव पैदा हो जाया करता था। रहा ये कि ये मगरबी मूसीकी किस हद तक खुशगवार साबित होगी और कहां तक ये हमारा साथ देगी, तो मैं इससे इनकार नहीं करता कि यकीनन हर फन में जिस तरह के बाहर के असरात को कबूल किया जाता है और इसी तरह म्यूजिक में भी, म्यूजिकी में भी बाहर के असरात आना चाहिए, लेकिन हमें क्या चीजें लेना है, उनसे क्या सीखना है, इस इंतखाब की बड़ी जरूरत है। बहुत यानी खास तौर से जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक

0: की और इधर उधर बहुत सी कंपनियों में मैंने काम किया, बहुत से म्यूजिक डॉक्टरों के साथ काम किया। इस वक्त भी 16-17 पिक्चरें मेरे पास हैं और मुख्तलिफ डायरेक्टरों के साथ हैं, मसलन कल्याण जी आनंद जी के साथ भी हैं, खयाम के साथ भी हैं, जयदेव के साथ भी हैं, सलील चौधरी के साथ भी हैं, ओमी के साथ भी हैं। इस तरह से मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ।
1: अख्तर साहब, अभी यानी जहां तक अदब का सवाल है, आपने फिर से बहुत अच्छी अच्छी गजलें कही हैं और जिनकी वजह से यानी नई गजल में आपके कामयाब तजुर्बों को काफी मकबूलियत की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन गजल की फिल्मों में जो मकबूलियत है वो अब शायद कम होती चली जा रही है। एक आध गजल इधर भी अच्छी मकबूल हुई है, लेकिन ज्यादातर गजल की शायरी अब मकबूल नहीं हो रही है। और इसका एक म्यूजिक डायरेक्टर ने हमें सबब यह बताया कि गजल का जो रिदम होता है, ये टेम्पो जो होता है, वो बहुत स्लो होता है और आजकल फिल्मों में बहुत तेज लय और बहुत तेज किस्म की रिदम को इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा गजल का कोई खास मुस्तकबिल नहीं है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं?
0: एक हद तक तो ये बात ठीक है कि गजल का उतना फास्ट रिदम नहीं होता और उनका कहना एक हद तक सही भी है। दूसरी उसकी और भी कई वजह हैं। एक वजह मिसाल के तौर पर यह है कि इस किस्म की कहानियां हमारे आप कम बनने लगी हैं कि जिसमें गजल की गुंजाइश हो। आम तौर से कहानियां जो बन रही हैं वो मौजूदा ट्रेंड जो है हमारी फिल्म का वो ज्यादातर वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, और वेस्टर्नाइज्ड होने की वजह से ज्यादातर अंग्रेजी म्यूजिक की तरफ लोगों की तवज्जो ज्यादा है। इस किस्म की कहानियां जैसे कि अभी पाकीज़ा आई थी, उसमें जाहिर है कि गजली की गुंजाइश हो सकती थी, तो ये कहानियों पर भी बहुत कुछ मबनी है कि वो कहानी कैसी है, उसमें गजल की गुंजाइश है या नहीं है।
1: बहू बेगम जो आपने प्रोड्यूस की थी, यानी शायरी से आप प्रोडक्शन की तरफ जो आए थे, वो काफी बड़ी जुरत का काम था, उसमें आपको क्या तजुर्बे हुए?
0: भाई असल में ये बात या ये राज किसी को मालूम नहीं कि मैंने ये पिक्चर क्यों बनाई थी। मैंने ये पिक्चर इसलिए प्रोड्यूस की थी कि अगर इससे मुझे थोड़ी सी माली मुनफरद हो जाती है तो मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहता था। मैंने महज इसी ख्याल से इसे पिक्चर को बनाया था कि इस फिल्म लाइन से मुझे किसी तरह से निजात मिल जाए अपने, और यही वजह थी कि इसके गीत भी मैंने खुद नहीं लिखे और दूसरों से लिखवाए। अगर मुझे इस लाइन में इसके बाद भी रहना होता तो शायद मैं ये हरकत नहीं करता, लेकिन वो जो एक बड़ी मशहूर जुमला है कि मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, वैसा हो नहीं सका। वो पिक्चर उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी कि मुझे उससे कोई माली नफा होता, लिहाजा मुझे फिर इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता रहना पड़ा। और तजुर्बा का जहां तक सवाल है तो तजुर्बा तो कोई बुरा नहीं था, क्योंकि उस में जो लागत आई थी उसने उस लागत को पूरा कर दिया था, और किसी किस्म का माली बार या माली नुकसान मुझे उस तस्वीर से नहीं पहुंचा।
1: बहू बेगम के फन्नी पहलू के बारे में, यानी फन्नी एतबार से एक प्रोड्यूसर की हैसियत से आपको बहू

0: बेगम कैसी लिखी?
1: भाई ये सवाल बड़ा मुश्किल है। वो कहानी तो खुद मेरी लिखी हुई थी और वो कहानी यकीनन बहुत पसंद की गई और डायलॉग अलबत्ता मेरे नहीं थे, वो सताविश सुल्तानपुरी ने लिखे थे और कहानी बेहद पसंद की गई। अलबत्ता जो उसमें गलती हुई थी वो उसके क्लाइमेक्स की थी, क्लाइमेक्स उसका पसंद नहीं किया गया और शायद क्लाइमेक्स ही की वजह से वो इतना न चल सकी कि जितना उसके चलने का यकीन था।
0: आपके जो हिट सॉन्ग्स हैं उनमें से खुद आपको कौन कौन से गाने पसंद हैं?
1: मिसाल के तौर के ऊपर एक मेरा गाना है, बेमुरव्वत बेअफा बेगाने दिल आप हैं, आप माने या ना माने मेरे कातिल आप हैं। दूसरा गाना मेरा था कि वो हीरोइन की जबानी था कि मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। तीसरा गाना मेरा जो बहुत पॉपुलर हुआ वो गाना था, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। चौथा गाना मेरा एक बहुत चला था जिसका एक मिसरा मेरा नहीं है बल्कि वो एक मिसरा मुझे दिया गया था कि मुझे उसके ऊपर गाना कहना है, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा देना। ये दूसरा मिसरा किसी पुराने शायर का है। इसके अलावा कुछ गीत भी मेरे बहुत पॉपुलर हुए, मिसाल के तौर के ऊपर वो मन मुरा बावरा, जिस दिन गाए गीत मिलन के मन मुरा बावरा, या मैंने गाना उसमें लिखा था ढाके की मलमल फिल्म थी उसमें, दिया तो जला सब रात रे बालम पर तुम लौट ना आए। तो इस किस्म से गानों की, मेरे मकबूल गानों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बस बताना मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो जाएगा कि याद दिलाने के बराबर हो गया लोगों को।
0: अख्तर साहब, जो इश्किया गीत हमारे यहाँ लिखे जाते हैं उनमें अक्सर यूपी की या बिहार की या राजस्थान की बोलियों से अल्फाज ज्यादा लिए जाते हैं, यानी लोक गीतों के बोलों को चाहे वो शहरी किरदार हों लेकिन इश्क के जज्बात का इजहार लोक गीतों के बोलों के जरिए किया जाता है, तो क्या ये मॉडर्न सिचुएशंस जो हैं, ये आज का जो इश्क है, आज के इंसान का इश्क, उसके लिए इतने पुराने अल्फाज और इतनी पुरानी तर्जों को इस्तेमाल करना महज एक रिवायत की पाबंदी है या वाकई इसके जरिए इसका इजहार बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से होता है?
1: ऐसी कहानियां जो मौजूदा जमाने के किरदारों को लेकर बनाई जाती हैं उसमें इस किस्म के गीत इस्तेमाल नहीं किए जाते, पहली बात तो यह है। ऐसे गीत सिर्फ उन्हीं कहानियों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनका पस मंजर देहातों का होता है। दूसरी बात यह कि आज की सोसाइटी में, आज की नई नस्ल के अंदर जो मोहब्बत का तसव्वुर बदल चुका है और मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं रही है जो आज से 50 साल पहले या 80 साल पहले हमारे लिटरेचर में या हमारे गीतों में पाई जाती थी, इसलिए भी ये जरिया यानी गीतों का जरिया

सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी साथिया। अब सुनिए सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ें, फिल्म है फिजा।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज पर यह है उर्दू सर्विस। अब सुनिए ड्रामा, उन्वान है बड़े साहब की बात निराली।
1: सामईन, आज हम आपको एक ड्रामे के वसीले से रोम के उन कदीम जमानों में लिए चलते हैं जब जरजन और जमीन के कजिए उस दौर के मुआशरे में आम थे। हम उस ड्रामे के किरदारों के बारे में इतना और वाजे कर दें कि ये सभी किरदार अफसानवी हैं जिनका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है।

आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास नजराना लेकर हाजिर हुए हैं, और वो नजराना है आज से 2200 साल पहले का, प्लातस का तहरीर करदा कदीमी रोमी ड्रामा। कहा जाता है कि प्लातस ने इस ड्रामे का मरकजी ख्याल अलाजन नामी 3000 साल पुराने एक यूनानी ड्रामे से लिया था, और लातिनी जबान में इसका नाम रखा था हाइल्स ग्लोरियोसस। इसी हवाले से हमारी आज की पेशकश का नाम है बड़े साहब की तो बात निराली।

कदीम रोम में जब ये ड्रामा पेश किया जाता था तो पर्दा उठते ही नाजरीन को दो शानदार कोठियां नजर आती थी। बाईं तरफ की कोठी बहराम लातिनी की थी और आज भी है। हालांकि दोनों कोठियों के दरवाजे दूर दूर हैं, लेकिन बीच की दीवार में खुशबूदार पेड़ों और फूल वाली बेलों से छुपा एक चोर दरवाजा है, जिसके बारे में सिकंदर के गुलाम बकरात के अलावा किसी को भी खबर नहीं है। दोनों कोठियां रोम के रईसों की हैं, इसलिए ठाट बाट और आराम और आसाइश की सारी चीजें यहां मौजूद हैं। बहराम लातिनी उम्र रसीदा शख्स हैं और सारे रोम में उनकी इज्जत है। पर्दा उठते ही आपको फौजी जनरल सिकंदर तमीमी अपने गुलामों के हमराह नजर आएगा। सिकंदर बहुत खूबसूरत शख्स है, लेकिन उसका दिल और उसकी सीरत बहुत बदसूरत है। सिकंदर को अपनी शक्ल सूरत और मालो दौलत का बहुत गुरूर।

0: वो हर वक्त चापलूसों में घिरा रहना पसंद करता है। तो लीजिए पेश है नाटक अलाजन उर्फ हाइल्स ग्लोरियोसस, यानी बड़े साहब की तो बात निराली।
1: मेरी इस ढाल को चमकाकर ऐसा रोशन बना दो कि गर्मियों की दोपहर का सूरज भी इसकी आबोताब देखकर शर्मा जाए। मैदान जंग में इसकी चमक देखकर दुश्मनों की आंखें खैरा हो जाए। कई दिनों से मेरी ये शमशीर बहुत उदास है। बेचारी ये शमशीर इस बात के लिए तड़प रही है कि इसे दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करने का मौका मिल सके। अरे लकमान कहाँ है?
2: गुलाम अपने आका के कदमों में हाजिर है। कौन बेवकूफ होगा जो ऐसे बहादुर, ऐसे दिलेर और जाबाज आका को छोड़कर कहीं और जाना पसंद करेगा।
1: लुकमान
2: जी हुजूर,
1: तुम्हें वो शख्स तो याद होगा सिसली की जंग में जिसकी जान हमने बख्श दी थी।
2: याद है हुजूर, हर बात याद है। आपने एक सांस में वहां सफे के सफे तितर बितर कर दी थी, जैसे हवा का तेज झोंका सूखी पत्तियों को उड़ाता है।
1: वो कुछ ऐसा खास भी नहीं था।
2: बजा फरमाया आका, आपके दूसरे कारनामों की बनिस्पत तो ये मार का कुछ भी नहीं था।
1: हाँ ये बात तो है। मैं भी अक्सर ये तय नहीं कर पाता हूं कि मेरी कौन सी जंग किससे बेहतर थी। अरे तुम क्या सोचने लगे?
2: मुझे अचानक हिंदुस्तान का वो हाथी याद आ गया है जिसकी रीढ़ की हड्डी आपने घूसा मार कर तोड़ दी थी।
1: रीढ़ की हड्डी? क्या वो रीढ़ की हड्डी थी?
2: माफ कीजिएगा काका, मुझे घुटना कहना चाहिए था शायद।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, घुटना ही तोड़ा था। हालांकि मैंने ज्यादा जोर से नहीं मारा था।
2: तो फरमाया काका,
1: चलो तुम्हारा इम्तहान लेते हैं। हमारा और कौन कौन सा कारनामा तुम्हें याद है?
2: मत याद दिलाइए हुजूर, उन लाशों को याद करता हूं तो मुझे छुरछुरी आ जाती है।
1: अच्छा चलो तादाद ही बता दो।
2: लाशों की बात छोड़िए सरकार, मुझे तो इस वक्त वो हसीनाएं याद आ रही हैं जो आपकी एक नजर के लिए बेताब रहती हैं। हुजूर आपकी वजह से मेरा राह चलना मुश्किल है।
1: अच्छा वो तुमसे क्या चाहती हैं?
2: अरे हुजूर बस आपके बारे में ही पूछती रहती हैं। वो क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनके बाल कितने अच्छे हैं, उनके काल कितने अच्छे हैं, उनकी आंखें, उनकी बाहें, उनकी बातें।
1: क्या सचमुच वो ऐसा पूछती हैं?
2: और क्या, वो आपको देखने के लिए तो ऐसे भागती हैं जैसे आप आदमी नहीं तमाशा हो।
1: तुम नहीं जानते खुश शक्ल होना कितनी बड़ी मुसीबत है, कैसे कैसे मासूम दिल तोड़ने पड़ते हैं।
2: रोज देखता हूं हुजूर, जैसे चिराग पर बरसाती पतंगे झपटते हैं, बस उसी तरह रोज रोम की नाजनी ने आपको दिख करती है।
1: इन बातों में हम ये तो भूल ही गए कि सीजर यानी कैसरे रोम ने हमसे सिपाहियों की भर्ती के मुआयने के लिए कहा है। अब उन्हें मायूस करना तो मुनासिब नहीं। चलो चलते हैं।
2: चलिए हुजूर, चलिए आइए।

0: तो ये थे तुम्हारे आका। सुनो, कुछ अजीब से नहीं लगते तुम्हें? क्यों बकरात?
1: हाँ तलीम, इनका सब कुछ ना बहुत अजीब है।
0: और वो चापलूस भी क्या तुम्हारी तरह गुलाम है उनका?
1: नहीं, कहने को तो वो जर खरीद गुलाम नहीं है, आका का दोस्त है, लेकिन चापलूसी में हम गुलामों से बदतर है।
0: क्या तुम्हारा आका सचमुच का फौजी है या यूं ही?
1: असली बात तो मुझे भी नहीं पता, बस सुना ही सुना है। लोग कहते हैं इन्होंने एक पानी का जहाज खरीदा, कैसर को एक जंग में जहाज की जरूरत पेश आई, तो बस नाम के लिए इनको कप्तान का लकब मिल गया। तब से आज तक ये अपने जंगी कारनामे सुनाते नहीं थकते। एक और खन्नास दिमाग पर सवार है।
0: अच्छा?
1: कि वो दुनिया की हर औरत के ख्वाब की ताबीर हैं। हालांकि हर शख्स पीठ पीछे उन पर हंसता है। अब सच कहें तो उनसे कौन कहे, हम लोग ठहरे गुलाम जिनकी एक गलती पर खाल खिंचवाई जा सकती है।
0: लेकिन तुम इनकी गुलामी में कैसे आ गए?
1: हाय, बड़ी दर्दनाक दास्तान है।
0: अच्छा?
1: मैं कुछ सालों पहले तक एथेंस के रहने वाले अरमान नाम के अमीर का चहीता गुलाम था। मेरे मालिक अरमान सलमा नाम की एक लड़की पर फिदा थे।
0: अच्छा।
1: मैं उन दोनों के बीच कासिद का काम करता था। सब कुछ ठीक था, उन दोनों की शादी होने वाली थी, और इसी बीच एक सिफारती मुहिम पर मेरे मालिक को मिस्र जाना पड़ा। उनके जाने के बाद ये कप्तान उसकी मां के पास पहुंचा और उसे तोहफे तहाइफ देकर हीरे जवाहरात नजर करके शीशे में उतार लिया, और फिर एक दिन उस लड़की सलमा को अगवा करके ये वहां से चंपत हो गया। मैंने एक वफादार गुलाम की माने सोचा कि यह खबर मैं मालिक तक पहुंचाऊं। मेरे मालिक मिस्र में थे, इसलिए मैं एक समंदरी जहाज पर मिस्र के लिए चला। रास्ते में समंदरी डाकुओं ने हमला किया और सारे लोगों को गिरफ्तार करके यहां रोम में आकर बेचा। किस्मत की सितम जरीफी देखो कि उन डाकुओं का इस कप्तान से ताल्लुक निकला, और वो मुझे तोहफे के तौर पर इसके हवाले कर गए। यहां आकर क्या देखता हूं कि मेरे मालिक की महबूबा इस शैतान की कैद में है।
0: तो भाई, तुम्हें उसे आजाद करने की कोशिश करनी चाहिए थी।
1: अरे मैंने वही किया, चोरी छुपे एक खत में सारे हालात लिखकर अपने पुराने मालिक के पास भेज दिए, अब वो यहीं आ गए।
0: अच्छा? हाँ? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ है?
1: मालिक के वालिद के एक पुराने दोस्त यहाँ के एक सरकदा शहरी हैं।
0: कौन है वो?
1: तुम्हारे मालिक यानी बहराम सासानी।
0: अच्छा। तो वो हमारे नए मेहमान असल में तुम्हारे मालिक हैं।
1: हाँ, और सुनो, ये बात अपने तक ही रखना।
0: भाई मैं यही सोच रहा था कि जब से वो नए मेहमान हमारे घर आए हैं, मेरे मालिक बहराम बहुत फिक्रमंद रहते हैं और घंटों छत पर बैठे इधर उधर छुपकर कुछ देखते रहते हैं।
1: और दूसरे मकान की छत पर मैं होता हूं।
0: है? लेकिन क्यों इस छत पर वो और उस छत पर तुम क्यों?
1: अरे मैंने बीच की दीवार में एक चोर रास्ता बनाया है, ताकि जब मौका मिले वो लड़की सलमा मालिक से मिलने तुम्हारे घर जा सके। देखो अब मेरा कप्तान किसी काम से गया है, इसलिए सलमा इस वक्त तुम्हारे घर में ही होगी। मुझे लगता है तुम्हारे मालिक बहराम किसी को डांट रहे हैं।
2: अगली बार अगर कोई मेरे घर की तरफ झांकता दिखे तो मुझे बताना, टांगे तोड़ दूंगा उसकी, कोड़े मार मार कर कचुमर बना दूंगा उसका। और अगर उस कप्तान का कोई आदमी छत पर दिख जाए तो तीर मार कर गिरा देना उसे। हाँ बस वो बुकरात को छोड़कर बस एक वही ठीक आदमी है उसके गुलामों में।
1: कलीम कलीम कलीम, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो?
0: लगता है किसी गुलाम की हरकत पर मालिक बहराम को गुस्सा आ गया है। तुम्हें छोड़कर वो सबकी हड्डियां तोड़ देना चाहते। मैं भागता हूँ।
1: भाग गया। अब आदाब जनाब अली बहराम साहब।
2: मैं बस तुम्ही को ढूंढ रहा था बकरात।
1: क्या बात है सरकार?
2: बकरात भाई, तुम्हारे मकान की छत से कोई बदतमीज शख्स मेरे मेहमान खाने के रोशनदान से झांक रहा था। हाँ, मेरा नौजवान मेहमान और उसकी।
1: ऐसी बदतमीजी भला कौन कर सकता है हुजूर?
2: तुम्हारा ही कोई साथी होगा बकरात।
1: जी
2: मुझे रुस्तम पर शक है।
1: अबे मर गए फिर तो, क्योंकि रुस्तम को कप्तान ने सलमा पर नजर रखने के लिए कहा है। अगर उसने देख लिया तो कयामत हो जाएगी। क्या सलमा अभी भी आपके घर में हुजूर?
2: भाई मैं जब बाहर आया था तो वो अरमान के कमरे में थी।
1: तो जनाब उससे कहिए कि फौ

0: फौरन उसी रास्ते से अपने कमरे पहुंच जाए ताकि हर आदमी उसे देख ले कि वो अपने घर में थी, वरना उसकी वजह से हम सब गुलाम कत्ल कर दिए जाएंगे।
1: अच्छा ठीक है, जाता हूं उसे भेजने।
0: जी
1: और कुछ बुकरात?
0: जी उसे कहिए कि जिस बुकरात ने उसे अरमान के साथ देखा था उसे यकीन दिलाए कि उसने उसको नहीं देखा था। उससे कहिए कि झूठ बोले और उस वक्त तक बोलती रहे जब तक कि उसे रंगे हाथों पकड़ने वाला गुलाम चुप ना हो जाए।
1: ठीक है ये भी कह दूंगा। भाई क्या सोचने लगे बकरात?
0: हुजूर वो उस गुलाम ने उन्हें किस हालत में देखा था?
1: अब कुछ ऐसी ही हालत में देखा था कि वो बस देखते देखते होश खो बैठा
0: है
1: और खुली छत के नीचे पेड़ों पर गिर पड़ा।
0: अच्छा कोई फिक्र की बात नहीं हुजूर, कपड़े ज्यादा आसानी से पहचाने जाते हैं। अब मुझे मुझे अब सिर्फ ये मालूम करना है कि उस गुलाम ने क्या नतीजा निकाला, फिर मैं उसे समझाऊंगा कि जो उसने देखा वो नहीं देखा
1: बिल्कुल,
0: और जो नहीं देखा वो देखा।
1: ठीक है जो बेहतर समझो करो। मैं जाता हूँ
0: जी,
1: शर्मा को वापस भेजने।
0: जी हुजूर, जी जी।

0: अरे अरे रुस्तम, अभी क्या हालत बना रखी है? चेहरे पर फिक्र की लकीरें हैं, और ये दायां हाथ सीने पर, और ये बायां कमर पर, और ये बार बार सर को क्यों झटके दे रहे हो हैं? अरे सोने में चल रहे हो या चलते चलते सो रहे हो? इसीलिए कहता हूं ज्यादा मत पिया करो। रुस्तम भाई, अरे जाग जाओ, सुबह हो गई।
1: बुकरात, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता।
0: अरे तो मैं कौन सा किसी से बात करना चाहता हूं? मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि कोई शख्स हमारी छत से पड़ोसी के रोशनदान में झांक रहा था। मालिक बहराम उस शख्स के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये क्या तुम्हारे चेहरे और हाथों पर ये खराशे? कहीं तुम ही तो नहीं थे वो? अरे तुम्हें कुछ हो गया तो सच, तुम मुझे बहुत याद
1: तुम
0: आओगे।
1: सही कह रहे हो, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा उस पर यकीन करने की हिम्मत हिम्मत नहीं है मेरी। मालूम है मैंने क्या देखा?
0: अरे तुमने ख्वाब में बोतलें देखी होंगी, या फिर बोतलों के असर में कोई ख्वाब देख लिया होगा?
1: अरे नहीं, मैंने मालिक की उस मंजूरे नजर को दूसरे घर में एक अजनबी के साथ,
0: नामुमकिन।
1: बस वही नामुमकिन, मैंने देखा अपनी इन दोनों आंखों से, और देखता रह गया।
0: नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई?
2: यानी मेरी दोनों आंखें खराब हैं?
0: मैं क्या जानू, डॉक्टर को दिखाओ या फिर हकीम को। लेकिन मैं तुम्हारी जगह होता ना, दो वजूहात के बिना पर अपना मुंह बंद रखता।
3: कौन सी दो वजह है?
0: पहली तो ये कि सलमा पर लगाया इल्जाम झूठा साबित होने की सूरत में मैं मारा जाता, और दूसरे कि सलमा पर नजर रखने के काम में लापरवाही बरतने के इल्जाम में भी मैं ही मारा जाता। मेरा मतलब है कि दोनों सूरतों में तुम ही मारे जाओगे रुस्तम।
3: लेकिन बुकरात, मैं जानता हूं कि वो सलमा ही थी।
0: है? कितनी देर पहले देखा था?
3: बस 5 मिनट पहले। वो अभी भी वही है।
0: यारे तुम कह रहे हो कि सलमा यहां नहीं, उस सामने वाले घर में?
3: मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर अंदर देखाओ, तब तक मैं यही रास्ते में बैठा हूं।
0: है?
3: वो वापस इधर से ही तो आएगी।
0: है?
3: हाँ
0: हाँ
3: जाओ जाओ जाओ, मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर कप्तान साहब के हवाले करूंगा, और कहूंगा कि इस मुसीबत की रखवाली मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है जब मैं कप्तान की सवारी को अलविदा कहने छत पर गया था, तभी वो खिसक गई थी।
0: रुस्तम, रुस्तम, तुमसे झूठा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
3: क्यों, क्या हुआ?
0: अपनी इन आंखों को निकाल कर फेंक दो। तुम पागल हो, पागल पागल।
3: बात क्या है?
0: इस झूठी जबान को भी काट कर फेंक दो, फेंक दो। तुम कहते थे सलमा उस सामने के घर में थी, है?
3: हाँ?
0: तुमने खुद देखा था?
3: हाँ?
0: है? अरे वो वहां अपने कमरे में है।
3: ये नहीं हो सकता, अपने घर में आने का एक ही तो रास्ता है, वो वहां उस घर में थी।
0: हाँ, वो उड़ती फाख्ता है जो फुर्र से उड़कर इधर और फुर्र से उधर चली जाएगी।
3: ओफो, देखो तुम कुछ भी कहो, मुझे अपनी आंखों पर यकीन है, वो वहां थी और वहीं है। इस दरवाजे से अंदर जाती तभी तो अंदर होती वहां।
0: लो लो, लग गई, लग गई शर्त।
3: हाँ लग गई।
0: क्या दोगे जो मेरी बात सही निकली?
3: जो तुम कहो।
0: तो लग गई शर्त, 10-10 कोड़ों की
3: लग गई शर्त।
0: लग गई।
3: हाँ
0: तो ठीक है, मैं अपने घर पर जाता हूं
3: हाँ
0: और उसे किसी बहाने से बाहर लाता हूं।
3: ठीक है।
0: ठीक है,
3: हाँ
0: तब तक तुम यहीं रहो और नजर रखो बहराम के घर से कोई निकला तो नहीं। और हाँ, कोड़े खाने को तैयार रहना।
3: हाँ, हर सजा मंजूर है। ये समझता है मुझे बातों से बेवकूफ बना लेगा। सारे गुलामों में यही उस औरत का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, तो उसके ऐब तो छुपाए गए। ये कभी कप्तान का वफादार नहीं हो सकता। अभी 6 महीने भी तो नहीं हुए इसे कप्तान की गुलामी में, लेकिन जबान के जोर पर चहीता बना फिरता है। ये सारी बातें जरूर इसलिए थी कि मैं दरवाजे से हट जाऊं ताकि वो वापस घर में घुस सके। और ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ।
0: मैंने जो जो कहा याद है ना आपको?
4: कितनी बार कहूं कि याद है?
0: बहुत चालाकी से काम करना होगा आपको।
4: मैं समझ गई। अब तुम जाओ, बुलाओ उसे।
0: ठीक है। रुस्तम, रुस्तम,
5: मैंने कहा ना कि मैं यहां से नहीं हट सकता, अपने मालिक का नमक ख्वार हूं।
0: तो फिर उधर देखो, वो कौन है?
1: वो मेरे खुदा, रहम कर, ये तो कप्तान साहब वाली सलमा है।
0: बस तो अब तुम तैयार हो जाओ।
1: किस बात के लिए?
0: मरने के लिए।
4: कहां है वो वफादार गुलाम जो मुझ जैसी मासूम लड़की पर ऐसा भयानक बोहतान लगा रहा था?
0: जो कुछ मैंने आपको बताया ना, वो सब इसी ने कहा था।
4: मनहूस इंसान, तो तूने कहा है कि तूने मुझे पड़ोस के मकान में देखा था? हाँ
1: जी जी जी, एक अजनबी के साथ वहाँ।
4: अपनी इन आंखों से?
1: अपोलो की कसम, अपनी इन्हीं आंखों से।
0: लेकिन इन आंखों में अब ज्यादा देर रोशनी नहीं रहेगी।
1: क्या?
0: क्योंकि ये वो देखती हैं जो नहीं होता।
1: तो तुम ये कहना क्या चाह रहे हो कि मैंने जो देखा वो नहीं देखा?
4: ये आदमी पागल है। मुझे इसकी बकवास सुनकर अपना वक्त नहीं बर्बाद करना। मैं कप्तान से कहूंगी इसे बेच दे।
3: देखिए, अपनी धमकियां बचा कर रखी है, अपने बाप की तरह, दादा की तरह, परदादा की तरह, और उनके भी दादा की तरह। मैं जानता हूं कि मुझे भी एक ना एक दिन सूली तक पहुंचना है, और जो मैं नहीं जानता वो ये कि आप उस घर से इस घर तक कैसे पहुंची।
0: मैं लालच तुम पर है जो तुम अभी भी अपने गंदे इल्जाम पर अड़े हो।
4: इसका मतलब जो ख्वाब में मैंने कल रात देखा था वो सही निकला।
0: कैसा ख्वाब?
4: मैंने रात ख्वाब में देखा कि मेरी जुड़वा बहन एथेंस से अपने महबूब के साथ यहाँ आई है और पड़ोस के मकान में ठहरी है। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन एक शख्स ने मेरी बहन को अपने महबूब के साथ देखा और मेरी इज्जत और नामोस पर शक किया कि मैं उस अजनबी के साथ थी, जबकि वो तो मेरी बहन थी। यानी मेरा ख्वाब सच निकला।
0: कितना अजीब इत्तेफाक है।
4: हाँ?
0: क्या आपका ख्वाब इस जलील इंसान की दीदा व दानिस्ता धांधली की बिना पर सच साबित हो रहा है?
4: बिल्कुल।
0: आपको कप्तान साहब से बात करनी चाहिए।
4: बिल्कुल, ऐसी भयानक गलती की सजा भी भयानक होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: बुकरात, मेरी पीठ कोड़ों के अंदेशे से फड़क रही है।
0: रुस्तम, वैसे ये कितना अजीब है।

0: रो, तुमको अब अकल आती जा रही है। वो देखो उधर पड़ोस के घर से, अरे कौन है वहां?
1: ये मोमबत्तियां अगरबत्तियां सब जला दो, मुझे मेहरबान देवी डायना का शुक्र अदा करना है।
2: बुकरात, बुकरात, वो जो औरत वहां है ना, हमारी मालकिन है या नहीं, बोलो।
0: बाखुदा, तुम सही कह रहे हो रुस्तम, ये तो अभी अपने घर गई थी, ये उस घर से कैसे निकली?
2: इसी को तो मैंने वहां कुछ कुछ करते देखा था।
0: ये ऐसी लगती है।
2: मैं बात करता हूं उससे। मालकिन, आप वहां उस घर के बागीचे में क्या कर रही हैं?
0: ये या तो बहरी है या फिर तुम दीवार से बातें कर रहे हो।
2: अरे बेशर्म, बेगैरत औरत दूसरों के घर में इस तरह तुम्हें?
1: बदतमीज अजनबी, तुझे इस तरह बात करने का हक किसने दिया? कौन है तू?
2: कौन हूं मैं?
0: इसका मतलब कि आप मुझे भी भूल चुकी होंगी?
1: तुम दोनों जो भी हो निहायत बदतमीज हो।
0: माफ कीजिएगा मैडम, हम शायद कुछ गलत समझे थे।
2: तो तुम, मेरा मतलब आप सलमा नहीं है?
1: मेरा नाम नीलोफर है।
0: यहाँ इस शहर में आप कैसे आ गईं?
1: मैं यहाँ अपनी जुड़वा बहन को तलाश करने आई हूँ।
2: अरे बस बस, बहुत बना लिया बेवकूफ, चलो अपने घर चलो। अरे
1: बदतमीज बेहुदा आदमी, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो। अरे, क्या इस शहर में मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है? बचाओ, छोड़ो मेरा हाथ। अरे,
0: बचाओ, रुक, रुक, रुस्तम, एक मिनट। वो वहां अपने घर के दरवाजे पर, अभी मैंने अपनी मालकिन सलमा को झांकते देखा। वो पहले से ही तुमसे नाराज है, अब यूं एक औरत के साथ बदतमीजी करते देखकर वो तुम्हारी खाल खिंचवा देगी।
2: देखा, तुम्हारी बातों में वो हाथ से छूटकर चली गई, वो सलमा ही थी, और अब वहां वहां उस घर में फिर उस अजनबी के साथ होगी।
0: लग तो मुझे भी रहा था कि वो सलमा थी। अरे अगर ऐसा है तो रुस्तम अंदर जाओ और मेरी तलवार लेकर आओ, मैं अभी उस हर्रफा और उस अजनबी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
2: हाँ, मैं अभी लाया बुकरात।
0: हाँ, और रुस्तम से पहले अब तक तो मालकिन सलमा अपने घर में पहुंच चुकी होंगी। हाँ। और रुस्तम उन्हें अंदर देखकर अपना सर फोड़ लेगा।
3: क्या हुआ रुस्तम, तलवार क्यों नहीं लाया तक?
2: तलवार की जरूरत नहीं है, मालकिन अंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता,
2: वो वहां आराम कर रही है।
0: यार, फिर तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो रुस्तम, तुमने मालकिन पर बोहतान लगाया, पड़ोसी के मेहमान से बदतमीजी की, जबकि वो तो मालकिन की बहन निकली। क्या तुमने इसी बहन को उस अजनबी के साथ देखा था? देखो, यूं किसी की एक खिलवत में झांकना भी तो जुर्म है। और तुम्हारा क्या होगा रुस्तम?
2: बुकरात, मर गया मैं तो, अब नहीं बच सकता।
0: बेहतर यही है कि अपने लब सी लो, किसी गुलाम को तुम्हारी गलती की हवा भी नहीं लगनी चाहिए।
3: जिसने मेरी मेहमान से बदतमीजी करने की जसारत की,
0: भुगतो अपनी गलतियों का फल। मैं तो किसका?
2: अरे बाबू,
3: तो तुम थे, खोल में फुस भरवा कर टंगवा दूंगा।
2: जनाब मेरी बात तो सुनिए, मैं
3: तुम्हें और तुम्हारे मालिक दोनों को देख लूंगा।
2: वो आपकी मेहमान शायद मेरी मालकिन की हम शक्ल है।
3: मुमकिन है ये? नामुमकिन, बाजी मत करो।
2: मैं सच कह रहा हूँ बहराम साहब, ये सब गलती ऊपर वाले की है कि उसने एक औरत को दूसरे जैसा क्यों बनाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ।
3: ठीक है, उठो उठो। तो अब ये तो नहीं कहोगे कि मेरे मकान में तुम्हारी मालकिन थी?
2: जी हाँ, वो वही थी। नहीं, वो नहीं थी, जो मैंने देखा वो नहीं देखा था।
3: रुस्तम, अभी भी कोई शक है? कोई शक है तो मेरे घर जाकर देखाओ, जाओ।
2: जी जी, ये ठीक रहेगा, जाता हूँ।
3: बुकरात।
0: जी जी जी जी हुजूर।
3: सुनो, सलमा से जाकर कहो कि रुस्तम के जाते ही भागकर कप्तान के घर में पहुंच जाए।
0: जी।

0: जी बेहतर बेहतर।
1: सरकार सरकार, वो मेरी मालकिन जैसी आपकी मेहमान आप ही के घर में है।
2: और अब जाओ रुस्तम, और जाकर अपने घर में अपनी मालकिन को देख कर आओ। जाओ
1: जी, ये भी ठीक रहेगा।
0: मैं क्या है हुजूर, क्या क्या
2: बकरार
0: जी,
2: तो तुम भी यही थे?
0: जी हाँ, छुप छुप कर सूरत हाल का लुत्फ ले रहा था। मैंने अपनी पूरी उम्र रुस्तम जितना बौखला इंसान नहीं देखा।
1: आप लोग ठीक कह रहे थे, मेरी आंखें आंखें नहीं है, मेरा दिमाग दिमाग नहीं है, मैं पागल हूं, बिल्कुल दीवाना, क्योंकि आपकी मेहमान मेरे घर में है, मेरी मालकिन वहां उस अजनबी के साथ है, माफ कीजिएगा, जिसको जहां होना चाहिए वो वहां है, और मुझे काल कोठरी में होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: 100 जूते, 1000 जूते, 1,00,000 जूते मारिए मुझे, मैं गधा हूं।
0: अबे गधों की बेइज्जती मत करो रुस्तम।
2: चलो चलो चलो चलो, बात साफ हो गई, अब मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी पड़ेगी।
1: लेकिन हुजूर, मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा आपको इस रहम दिली का अजर देगा।
0: जी हुजूर, आप जैसे नेक इंसान को ये नेकी करनी ही चाहिए।
1: जी जी,
2: ठीक है, सुनो
1: जी,
2: ये गुलाम को अपनी आंखें हाथ और जबान अपने काबू में रखनी चाहिए।
1: जी, जी,
2: जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें।
1: जी, जी,
2: लेकिन आइंदा ऐसी गलती सरजद नहीं होनी चाहिए, समझे?
1: जी, जी, जी, जाता हूँ जाता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार, खुदा हाफिज सरकार, खुदा आपको सलामत रखे।
3: बड़े साहब की बात निराली। अभी आप सुन रहे थे प्लॉटर्स की कहानी पर मबनी ये ड्रामा। रेडियाई रूप तरतीब दिया था मोहतरमा सुधापुरी ने। इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा दिन में 3:30 पर नश्र किया जाएगा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हममनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने 2 रोज़ा दौरे पर आज गोटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन के अपने हममनसब अल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाले अशिया के जुमरे में डाल दिया है। अमेरिका और नाइजीरिया की फौजों ने इस्लामिक स्टेट आईएस के सीनियर कमांडर अबू बिलाल अल मुनुकी को एक कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसीतर मुज़ाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकत दारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जान सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया। तरजीह शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकत दारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकत दार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरक जमहूरी इकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम गहरे रिश्तों पर मबनी हैं। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर आज गोटनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक का एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे और बाहमी तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई और आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों और ماحول دوست بدلاؤ کی جانب منتقلی کو بڑھانے

0: इस तीर्थंकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से आरजी कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजाशेखर मंठा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाला वाहिद मुजरिम है। मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक रुकन असेंबली निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की जानिब से शाया करदा गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। तरमीम के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल तादाद अब बढ़कर 38 हो जाएगी। अमेरिका और नाइजीरिया की फौजों ने नाइजीरिया की झील चांद बेसिन में जुमे की रात को एक मुश्तरका फौजी कार्रवाई करते हुए इस्लामिक स्टेट आईएस के सीनियर कमांडर अबू बिलाल अल मनुकी और आईएसआईएस के दीगर लीडरों को हलाक कर दिया। नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनबू ने आईसिस के सीनियर कमांडर अबू बिलाल अल मनुकी और उसके दूसरे लेफ्टिनेंट्स की हलाकत की तस्दीक की है। अबू बिलाल अबू मैनोक के नाम से भी जाना जाता था। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हममनसब जो ब्रिटेन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के अपने दो रोज़ा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

गुंडा राज फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे अलीशा चनॉय और कुमार सानू की आवाज़ों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को सुनिए, फिल्म है नगीना।

0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म में आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है धम्मपद।
1: सूफिया इकराम के मलफूजात की तरह बुद्ध मत या महात्मा बुद्ध की अकवाल को भी मारिज तहरीर में लाया गया और ये किताब धम्मपद के नाम से मौसूम हुई। सम्राट अशोक के जमाने से ही धम्मपद को महात्मा बुद्ध के अकवाल का मजमुआ तस्लीम किया गया और इस बात की तस्दीक बुद्ध भिक्षुओं की उस तीसरी मजलिस ने भी की थी जो अशोक ने 242 कब्ल मसीह में मुनक्किद कराई थी। धम्मपद पाली जबान में बुद्ध मजहब की मुकद्दस किताबों के मजमुए त्रिपिटक के दूसरे हिस्से में शामिल है। त्रिपिटक को बुद्ध आलिमों के कदीम तरीन फिरकों में भी मोतबर माना जाता है। धम्मपद मंजूम है और इसके 26 हिस्से हैं। अश्लोकों की मजमुई तादाद 423 है। हर हिस्से का एक उन्वान है, मसलन नादान, आकिल, दुनिया, मसरत, गुस्सा, सजा वगैरह। इनमें से अक्सर उन्वानात अशार के बुनियादी मौजू की निशानदेही करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो कुछ कहा भिक्षुओं ने उसको याद रखा और अपने बाद आने वालों को ये कीमती विरसा सौंप गए। ये सिलसिला मुद्दतों तक चलता रहा। लिखाई का काम बहुत बाद में शुरू हुआ। धम्मपद में महात्मा बुद्ध की तालीमात की जो रूह है उसकी तबोताब का एहसास हर पढ़ने वाले को होता है। धम्मपद की एक बहुत पुरानी तफसीर भी मिलती है। ये 5वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई बरसों में लिखी गई थी। ख्याल ये है कि ये तफसीर सिन्हाली जबान से पाली में मुंतकिल की गई है और इसको एक भिक्षु बुद्ध घोष से मंसूब किया जाता है। इस तफसीर में धम्मपद के अशार की वजाहत हिकायतों के जरिए की गई है और इन अशार का पस मंजर बयान किया गया है। धम्मपद के लफ्जी माने हैं मजहब या नेकी का रास्ता। बाज लोगों ने इसका तर्जुमा मजहब की बुनियाद भी किया है। उर्दू में धम्मपद का मंजूम तर्जुमा मुनव्वर लखनवी ने सच्ची राह के नाम से किया था जो 1954 में शाया हुआ था। बुद्ध मजहब में आसमानी किताब का तस्वुर नहीं है और न गौतम बुद्ध पर कोई सहीफा उतरा। बुद्ध मत में उसूल दीन की अहमियत है और जिन किताबों में इस उसूल का बयान हो वो मुकद्दस।

0: उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में ये नगमा था यारा दिलदारा फिल्म से। और आखिरी पेशकश आप सबकी नज़र कर रहे हैं, समाप्त कीजिए, सपना मुखर्जी और जॉली मुखर्जी को, फिल्म है दयावान।
1: हैया हो, हैया, हैया हो।

0: दयावान फिल्म के इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
2: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
3: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ही आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की यह यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज है और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19-20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
2: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
3: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है चार देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन्स ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाईज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
2: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
3: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्ट

0: यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
1: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहाँ पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी।

0: भी बातचीत होगी, तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है
1: जी
0: उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में
1: जी
0: आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा, जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था,
1: जी
0: तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को ये सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं।
1: जी
0: और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है, जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो
1: बिल्कुल
0: जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है, जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है।
0: जी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं,
1: जी
0: उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं।
1: जी
0: प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत और इटली के बीच में, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात,
1: जी
0: तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को

0: भारत ने अबनाए हुरमुज में तजारती जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि जहाजरानी की आज़ादी को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आलमी अदारे सेहत WHO ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला के फूट पड़ने को सेहत आम्मा से मुतालिक बैन अलाक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विसेज सुन रहे हैं। पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वो स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटिन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तक पहुंचा दिया है। भारत ने अबनाए हुरमुज में तिजारती जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि जहाजरानी की आजादी को कमजोर नहीं किया जा सकता। आलमी इदारा सेहत WHO ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला की वबा फूट पड़ने को सेहत आमा से मुतालिक बैनुल अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सित्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और टेनिस में आलमी नंबर एक

यानिक सिनर ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए इटालियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अभी तक आप उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुन रहे थे। दिन के 1:15 होने को है पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: वाह क्या बात है दोस्तों, पुराने गीतों की मिठास ही कुछ और होती है और इन गीतों का आनंद आप सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही ले सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। अब बात करते हैं फिल्म अनजाना की कहानी के बारे में। कहानी है एक सीधे साधे नेक दिल नौजवान की, जिसका किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार ने। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादगी और भावनाओं से भरा हुआ है। राजेंद्र कुमार उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्मों को जुबली हिट कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती थी। फिल्म में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत और चंचल लड़की से, यानी बबीता से। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, बातचीत होती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। कहानी में प्रवेश होता है लालच, गलतफहमियां और साजिशों का, और यहीं से फिल्म में आता है बड़ा मोड़। लेकिन कहानी आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: अवतारा
1: नहीं
0: दीवाना,
1: दीवाना नहीं अंजाना।
2: जी हाँ, वो कौन है, वो कौन है जो आपको 1:10 पर फिल्मी कहानी के साथ साथ गाने सुनवाता है, बोलो बोलो। जी हाँ, वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल। तो कहानी को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।

0: easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं साल 1969 की फिल्म अनजाना की, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, और इस मोड़ को और ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा। उनकी मुस्कुराहट में भी एक चालाकी दिखाई देती थी, और फिल्म अनजाना में भी उनका किरदार कहानी में उलझने पैदा करता है, और दोस्तों फिल्म में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। प्राण साहब, अब अगर प्राण किसी फिल्म में हो तो समझ जाइए कि अभिनय अपने उच्च स्तर पर होगा, कभी खलनायक कभी चरित्र अभिनेता। हर भूमिका में जान डाल देने वाले प्राण ने फिल्म अनजाना में भी अपने अभिनय का शानदार रंग दिखाया है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला बेहद प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार होगा अपने मेल्स का, जो हम मेल शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कृपया हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है ip.radiodelhi@gmail.com। तो ये पत्र हमें मिला है, ये ईमेल हमें मिला है। प्रिय प्रसारक जी, नंदा जी, नमस्कार। नमस्कार आपको भी। फिल्म अनजाना, जिसमें राजेंद्र कुमार, बबीता, निरुपा रॉय की लाजवाब जोड़ी है, बिल्कुल सही आपने लिखा। ये पत्र, ये मेल हमें मिला है वीरमगाम जंक्शन, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश सनी, जैमिन कुमार भवसार जी ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं। ये मेल हमें भेजा है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ ने हमें ये मेल भेजा है। राजेंद्र कुमार, बबीता अभिनीत 1969 की फिल्म अनजाना एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेल भेजने के लिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेल के साथ आपने इस फिल्म की कहानी भी हमें लिखकर भेजी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं आर कुमार जी का। इन्होंने, आर कुमार जी ने ये भेजा है हमें मेल वडिंग खेड़ा पंजाब से, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है और लिखा है कि प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला मेल हम शामिल करते हैं सुरेश नारंग जी का। ये मेल हमें भेज रहे हैं सहारनपुर चंदर नगर से। इनके साथ हैं आशु नारंग, सोनाली। इन्होंने कहा है कि कोई फिल्म का गीत सुना दें। ये कोई भी फिल्म का गीत वाला प्रोग्राम नहीं है, ये है एक ही फिल्म से, और आप फिल्म अनजाना की कहानी के साथ साथ उसी फिल्म के गीत सुन रहे हैं। और कृपया हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो और भी मेल शामिल करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि प्यार की राह में गलतफहमियां और मुश्किलें दस्तक दे चुकी हैं, और यहाँ फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी सिनेमा की माँ कही जाने वाली निरूपा रॉय। फिल्म अनजाना में उनका अभिनय कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी की तरह अनजाना भी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई देर से सही सामने ज़रूर आती है। धीरे धीरे कहानी की सारी उलझने सुलझने लगती हैं, सच सामने आता है, कई गलतफहमियां दूर होती हैं, और जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वो फिर से करीब आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और फिल्म का संदेश भी बेहद खूबसूरत है कि प्यार और भरोसा अगर सच्चा हो तो हर मुश्किल पार किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और

गीत के साथ साथ मैं मेल भी शामिल कर रही हूँ। ये मेल हमें मिला है प्रवीण एस जी का, सूर्यनगर गाजियाबाद से इन्होंने भेजा है। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन एंड मूवी सिलेक्शन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें आया है सूर्यनगर गाजियाबाद से। अगला मेल मैं शामिल करती हूँ कुलदीप गुप्ता जी का। मैडम जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता जी आपका। और इन्होंने मेल हमें भेजा है बघोली 12।

बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल मिला है। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, फिल्म अनजाना बेहतरीन जानकारी, धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से इनके महेंद्र छिप्पा और इनके साथ है कमल कपिल छिप्पा जी ने हमें ये मेल भेजा है।

समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से पसंद आया होगा। अब विदा लेने का समय है, लेकिन अगली बार एक ही फिल्म से में फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं। एक ही फिल्म से प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उम्दा जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है पंजाजी नवकर जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेंसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़रा आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज़्ज़त माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतायज से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, ख़ासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के

0: है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज़ रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज़ पर हमले के चंद रोज़ बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैन अल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-11700 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपये की होगी, जबकि गाज़ियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपये होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साल कोहपेमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज़्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को

0: of the peak. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi Metro will run additional train trips to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. DMRC said that from tomorrow, 24 additional train trips will be operated every Monday with the deployment of 6 extra trains. The corporation added that the additional services will also be introduced on other days depending upon the requirement. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving 2 rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in 2 rear coaches, which include 1 guard coach and 1 AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alod stations in the Kota Division around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The India Meteorological Department IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Maharashtra and northeastern states for the next 2 days. IMD has said Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha may experience heat wave conditions till tomorrow. Severe heat wave grips Madhya Pradesh, temperature crosses 43 degrees in 15 cities. A report.
1: Madhya Pradesh is reeling under severe heat. Life has become difficult for people. Indore and Ujjain divisions are the worst affected. Yesterday, Khandwa and Nogaon recorded temperatures above 44 degrees Celsius. In 15 cities across the state, the mercury touched 43 degrees or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargon and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anyway today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolihkrishnanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a 2-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: आई वर्क फ्रॉम अ बिजनेस काउंसिल।
5: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा

0: देने के लिए एक रोड मैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोड मैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को

0: 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान

0: रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

और इंतजार की घड़ियां हुई दोस्तों समाप्त, और लेकर हाजिर हूं मैं अरुणेश कुमार आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

बैकग्राउंड में चल रहे इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी हाँ, आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा, और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज प्रकाश मेहरा साहब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की उपाधि दिलाई। बहुत सारी होंगी बातें, बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम, और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये बता रहा है यारी दोस्ती मित्रता के महत्व को। और इस गाने को गाया है मन्ना डे साहब ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने को लिखा है गुलशन बावरा ने। और ये फिल्म जंजीर का गाना है जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब। तो दोस्तों, आज बात प्रकाश मेहरा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, और आज हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में प्रकाश मेहरा के बारे में बातें होंगी। तो मेहरा साहब का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बिजनौर में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, और कुछ लोग तो उन्हें अमिताभ बच्चन के गॉडफादर के रूप में भी जानते हैं। अब ये बात इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में बहुत ही अधिक जानदार, शानदार, दमदार और जोरदार पहचान बनाई है। और अमिताभ बच्चन को एक तरह से एंग्री यंग मैन की भूमिका जंजीर फिल्म के बाद ही मिली है। और अगर बात करें प्रकाश मेहरा साहब की, उनके करियर की, उनके जीवन की शुरुआत

की तो वे अपने घर, अपने गांव जो कि बिजनौर शहर में वो था, वहां से वो सिर्फ अपनी जेब में केवल 13 रुपए लेकर मुंबई की ओर गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, रेलवे स्टेशन पर भूखे सोए। सपनों के शहर मुंबई में उन्हें कुछ पता नहीं था कि नियति उन्हें कहाँ ले जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो एक न एक दिन पूरी कायनात आपको सफल बनाती है, भले ही आपको कितना भी अधिक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और उनकी जो है शुरुआत हुई थी 1968 में, जब उन्हें पहली बार एक ब्रेक मिला और उनकी किस्मत बदल गई जब उन्होंने शशि कपूर और बबीता अभिनीत फिल्म हसीना मान जाएगी, इस फिल्म के साथ अपने फिल्मी निर्देशन की शुरुआत की। और ये फिल्म अपने गीत संगीत के साथ साथ बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। और इसके बाद तो जैसे सफलता की राह पर उनके कदम आगे बढ़ते ही गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद 1971 का वो साल आया जब उन्होंने मेला नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया, जो कि फिरोज़ खान और संजय खान अभिनीत एक फिल्म थी। और इस फिल्म ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1972 में आई समाधि, जिसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख और जया बहादुरी ने अभिनय किया था। और इस फिल्म की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा साहब जाने माने फिल्म डायरेक्टर बन गए। तो आगे बढ़ने से पहले लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा, दिल को भा जाने वाला, दिल को छू जाने वाला गाना आपको सुनाते हैं कि दिल

और इसी बीच आपके मैसेज, आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठगंज से दिग्दर्शन और कविता जी ने लिखा है कि प्रकाश मेहरा जी पर केंद्रित आज का कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लग रहा है, आपकी बेहतरीन और उत्तम प्रस्तुतिकरण है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने और रोचक जानकारी जो आप बता रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमारे चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को सुनते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।

एक और में संदेश आया है कैथल हरियाणा से, मधु नायक, अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों के गाने हम अभी सुन रहे हैं और आपकी शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश को ले लेते हैं। ये मैसेज आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, PS न्यावकर, निर्मला न्यावकर और विशाल न्यावकर का। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय उद्घोषक जी, प्रेम पूर्वक सप्रेम नमस्कार। क्या बात है, प्रेम पूर्वक भी है और सप्रेम भी है। तो इन्होंने लिखा है कि शानदार लाजवाब प्रस्तुति के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत ही सुनी और अनसुनी बातें। प्रकाश मेहरा जी के बारे में आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो समाधि फिल्म थी, इसकी सफलता के बाद तो प्रकाश मेहरा के पास बहुत सारा काम आ गया। और 1973 के मई महीने में जब उनके घर और पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दौरान वे काम कर रहे थे अपने प्रोडक्शन हाउस, प्रकाश मेहरा

प्रोडक्शन की पहली फिल्म जंजीर की। और जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिस जो रिलीज होने के बाद तो इतिहास रच दिया, और इस फिल्म के बाद ही अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में प्रकाश मेहरा साहब ने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया? कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पास वो गए, लेकिन किसी ने उनकी इस फिल्म को साइन नहीं किया था। और उस समय अमिताभ बच्चन साहब की भी कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, जिसके बाद किसी न किसी रोज एक प्राण साहब से उनकी मुलाकात हुई, और इसके बाद मेहरा साहब प्राण साहब को एक वरिष्ठ और मार्गदर्शक और कलाकार के रूप में सम्मान देते थे, और उन्हें बड़े प्यार से प्राण साहब कहकर संबोधित किया करते थे। और एक जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें उनको कोई अच्छा कलाकार जंजीर फिल्म के लिए चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो हीरो हैं वो इस फिल्म को नहीं साइन कर रहे हैं, तब प्राण साहब ने ही अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया था, और इस तरह से अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर मिली। और इस फिल्म की रिलीज होने के बाद तो इतिहास ही बन गया, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं, जैसे लावारिस फिल्म का है अपनी तो जैसे तैसे, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें प्रकाश मेहरा साहब ने अपने टैलेंट का परिचय दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको लावारिस फिल्म से ही एक गाना सुनवाते हैं, किशोर कुमार की मस्त मौला आवाज़ में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है प्रकाश मेहरा साहब ने खुद ही, उनकी ही कलम से ये गाना लिखा गया है जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय है।

इसी बीच आपके एक मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, अशफाक और अल्ताफ साहब का मैसेज आया है और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, रेस्पेक्टेड अरुणेश कुमार जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम एक ही कलाकार एंड टुडे यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्रकाश मेहरा साहब, नाइस प्रेजेंटेशन, रेयर फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ऑल टाइम सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल फीडबैक।

और एक और मैसेज आया है भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और प्रकाश मेहरा साहब के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है और हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन साहब ने एक साथ 6 बड़ी फिल्मों में काम किया और सभी की सभी

महान गीतकार अनजान साहब, और वैसे तो प्रकाश मेहरा साहब खुद ही भी लेखन प्रतिभा का पावर हाउस रहे हैं। उन्होंने कई सुपर डुपर हिट गाने लिखे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ आपको सुनाया, अपनी तो जैसे तैसे, आपका क्या होगा जनाबे अली, और इसके अलावा बप्पी लहरी साहब जो कि नमक हलाल में उन्होंने बहुत ही चार्ट बस्टर संगीत देने के बाद प्रकाश मेहरा की टीम के स्थायी सदस्य बन गए। वहीं सुपर टैलेंटेड कादर खान साहब को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के कुछ असाधारण संवाद यानी डायलॉग लिखे। और जो दिवंगत महान अभिनेता थे अमजद खान साहब, उनको वे अपने बहुत ही अच्छे दोस्तों और उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इसके अलावा प्राण साहब, राज कपूर साहब, संगीत जोड़ी कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी के साथ भी उनका रिश्ता बेहद ही प्यारा था। अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो खैर वो ये कहते हैं ना, जादुई रिश्ता था, और उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा था। और आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज का मैसेज आया है कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद।

प्रकाश मेहरा साहब ने 1991 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ जिंदगी एक जुआ इस फिल्म का भी निर्माण और निर्देशन किया। वहीं 1993 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म दलाल, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे पार्थो घोष साहब और निर्माता थे हमारे प्रकाश मेहरा साहब। और मेहरा साहब 2006 में इंडिया मोशन पिक्चर डायरेक्टर एसोसिएशन यानी IMPDA से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। और इसके बाद प्रकाश मेहरा साहब का निधन 17 मई 2009 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था, जहां पर उनका निमोनिया से उत्पन्न जटिलताओं के बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इस तरह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही जो हमारे प्रकाश मेहरा साहब हैं वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वे अपने गीत संगीत, अपने फिल्मों के माध्यम से और अपने जो उनकी कला है, जो फिल्में आज भी हम उनकी देखते हैं, उसके माध्यम से वे अपने दर्शकों के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो गया है। तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

सपहर 3:30 बजे बड़े साहब की बात निराली। प्लेटस के नॉवेल पर मबनी इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे। शाम 4 बजे अब लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसिकी से। फिल्मी नाखमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सपहर गोथनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की एमरजेंसी करार दिया है। और नेपाल के कोहे पेमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर गोथनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदाम और अवाम से अवाम के राबतों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीर-ए-आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज़्ज़त माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज़ कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे से काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतायज से बहुत पुरउम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को किलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर किलीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया की सूरतहाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तिजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम गेब्रियसिस ने 300 मुश्तबा केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि इबोला फूट पड़ने का यह मामला कोविड-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है।

इसके साथ ही उसने बैन अल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, उसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इसमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतालिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो प्राइवेट मोटर गाड़ियों के मुकाबले मेट्रो के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए इजाफी ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक मौजूदा हालात में तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने, इक्तिसादी इस्तेहकाम और माहौलियाती पायदार निज़ाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम रोल को महलूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि कल से हर पीर के रोज 24 इजाफी ट्रेन ट्रिप्स का अहतमाम किया जाएगा और इसके लिए 6 इजाफी रेलगाड़ियाँ लगाई जाएंगी। कॉरपोरेशन के मुताबिक दीगर दिनों में भी इजाफी खिदमात शुरू की जाएंगी, जिसका इन्हिसार मांग पर होगा। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने के पानी चली चांदी और प्लैटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ादी से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत के लाइसेंस की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मालूम हुआ है कि तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन नंबर 12431 के B1 रेल डब्बे में आग लग गई थी। ये वाकया आज सुबह सवेरे 5:20 के आसपास कोटा डिवीजन में लूनी रिछा और विक्रमगढ़ एलॉट स्टेशन के दरमियान पेश आया। रतलाम के रेलवे डिवीजन के तर्जुमान मुकेश कुमार ने बताया कि इस वाकये में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और लक्षद्वीप में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की है। नेपाल के कोही पीमा कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साल कोही पीमा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद 3:30 शुरू होगा। इधर शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज से पैर गोथनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझे

0: दारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। और भारत ने अब नए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद खूबसूरत कवालियाँ आपकी नज़र करना चाहेंगे। पहली पेशकश धर्मपुत्र फिल्म से है, महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में, मौसीकी N. दत्ता की।

0: परेशान रहते।
1: यह फिल्म बाबर की कव्वाली आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, कलाम साहिल लुधियानवी का, मौसीकी रोशन की।

तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है, तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है। तुम इस हुस्न पर खुद पछताओ।

यह इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म से मन्नाडे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में नगमा निगार साहिर मौसीकी रोशन की।

इस कवाली के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बड़े साहब की बात निराली, इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।

0: था खरीफ मर तो नाहंजान जिसने मेरी मेहमान से बदतमीजी करने की जसारत की। कहाँ था वो?
1: भुगतो अपनी गलतियों का फल। मैं तो किसका?
2: अरे बाबू पति
0: वो तुम थे। खाल में भुस भरवा कर टंगवा दूंगा।
1: जनाब मेरी बात तो सुनिए। मैं
0: तुम्हें और तुम्हारे मालिक दोनों को देख लूंगा।
1: वो आपकी मेहमान शायद मेरी मालकिन की हम शक्ल है।
0: नामुमकिन है ये, नामुमकिन। बहानेबाजी मत करो।
1: मैं सच कह रहा हूँ बहराम साहब, ये सब गलती ऊपर वाले की है कि उसने एक औरत को दूसरे जैसा क्यों बनाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ।
3: ठीक है, उठो।
1: जी,
3: तो अब ये तो नहीं कहोगे कि मेरे मकान में तुम्हारी माल किन थी?
1: जी हाँ, वो वही थी। नहीं, वो नहीं थी। जो मैंने देखा वो नहीं देखा था।
3: रुस्तम, अभी भी कोई शक है? कोई शक है तो मेरे घर जाकर देखाओ, जाओ।
1: जी जी, ये ठीक रहेगा, जाता हूँ।
3: बुकरात।
4: जी हुजूर।
3: सुनो, सलमा से जाकर कहो कि रुस्तम के जाते ही भागकर कप्तान के घर में पहुंच जाए।
4: जी, बेहतर।
1: सरकार, सरकार, वो मेरी मालकिन जैसी आपकी मेहमान आप ही के घर में है।
3: और अब जाओ रुस्तम, और जाकर अपने घर में अपनी मालकिन को देख कर आओ, जाओ।
1: जी, ये भी ठीक रहेगा। जी, जाता।
4: मैं क्या है हुजूर? क्या? जी,
3: तो तुम भी यही थे?
4: जी हाँ, छुप छुप कर सूरत हाल का लुत्फ ले रहा था। मैंने अपनी पूरी उम्र रुस्तम जितना बौखला इंसान नहीं देखा।
1: आप लोग ठीक कह रहे थे। मेरी आंखें नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है। मैं पागल हूँ, बिल्कुल दीवाना, क्योंकि आपकी मेहमान मेरे घर में है। मेरी मालकिन वहां उस अजनबी के साथ है। माफ कीजिएगा, जिसको जहां होना चाहिए वो वहां है, और मुझे काल कोठरी में होना चाहिए।
3: बिल्कुल।
1: 100 जूते, 1000 जूते, 1,000,000 जूते मारिए मुझे, मैं गधा हूं।
4: अबे गधों की बेइज्जती मत करो रुस्तम।
3: चलो, बात साफ हो गई। अब मुझे तुम्हारे मालिक से बात करनी पड़ेगी।
1: लेकिन हुजूर, मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा आपको इस रहम दिली का अजर देगा।
4: जी हुजूर, आप जैसे नेक इंसान को ये नेकी करनी ही चाहिए।
1: जी,
3: ठीक है। सुनो
1: जी,
3: ये गुलाम को अपनी आंखें, हाथ और जबान अपने काबू में रखनी चाहिए।
1: जी,
3: जाओ। मैंने माफ किया तुम्हें।
1: जी,
3: लेकिन आइंदा ऐसी गलती सरजद नहीं होनी चाहिए, समझे?
1: जी, जाता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार। खुदा हाफिज सरकार। खुदा आपको सलामत रखे।

0: मुझे तो यकीन नहीं होता कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझे लगता है बहराम साहब मालिक के आते ही सारी रुदाद गोश गुजार कर देंगे।
1: बेटे, गलती की है तो सजा भी मिल सकती है और शायद बच भी सकते हो।
0: बुकरात यही धड़का तो मारे।

0: तो अरमान साहब, बहराम साहब,
1: जी
0: कैसा लगा आप लोगों को मेरा मंसूबा?
1: भाई, इससे बेहतर मंसूबा कोई हो ही नहीं सकता। देखो भाई, हम कामयाब रहे तो अरमान तुम्हें तुम्हारी सलमा मिल जाएगी और उस कप्तान को अपने किए की सजा।
2: मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे मेहरबान बुजुर्ग को मेरी वजह से इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है।
0: अरमान, अगर आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो आपको सच्चा आशिक नहीं कहा जा सकता।
2: लेकिन चचा बहराम को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, वो भी इस उम्र में।
1: अरमान मियाँ, देखिए क्या मतलब है अभी तुम्हारा? कोई है कि मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूं? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 54 साल
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: लेकिन लेकिन मेरे किसी हम उम्र साथी की तरह आपने इस मामले में मेरा साथ दिया है।
1: खैर छोड़ो ये सब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई, सलमा को कप्तान के चुंगल से निकाल कर तुम वापस एथेंस ले जाओ।
0: और उसका मंसूबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लाइए, मुझे अपनी अंगूठी दीजिए।
1: क्यों?
0: अरे दीजिए तो।
1: अब ठीक है, अब ये लो।
0: हाँ ये, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे नए मालिक यानी कप्तान का वहम है कि इस जहान की हर खातून उस पर फिदा है।
1: हाँ, ये बीमारी तो है उसे।
0: क्या आप किसी ऐसी औरत को तलाश कर सकते हैं जो देखने में हसीन हो, चालाक और तेज तर्रार हो, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक का भी हुनर रखती हो?
1: भाई कम उम्र हो या पुख्ता?
0: अजी कोई रस भरा चलता पुरजा।
1: अच्छा, एक है मेरी नजर में, लेकिन उसका करोगे क्या?
0: पर मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी ही औरत को घर लाएं और मशहूर करें कि वो आपकी बीवी है।
2: लेकिन उस सबसे क्या होगा?
0: वो अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए, क्या उसकी कोई कनीज वगैरह भी?
1: हाँ, है, और वो भी बिल्कुल
0: तो बस,
1: पटाखा।
0: अब आपको ये करना है कि उस औरत को बीवी की तरह घर लाइए और उस कनीज को कप्तान तक कासिद के तौर पर भिजवाइए।
2: लेकिन इससे होगा क्या?
0: जब कप्तान को एक छोड़ दो दो

0: हसीनाएं मिलेंगी तो वो बिल्कुल ही पगला जाएगा और सलमा से पीछा छोड़ाना चाहेगा और इस तरह हमारा काम बन जाएगा।
1: वाह वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
0: लेकिन हुजूर ये मत भूलिए कि मैं फिलहाल कप्तान का गुलाम हूँ। अच्छा, मैं छुपते छुपते वापस ठिकाने पर पहुंचता हूँ।
2: ठीक है ठीक है।

0: तो शब्बो तुम समझ गई ना?
1: आप फिक्र ना कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाना ये तो हमारा काम ही है, क्यों गुलाबो?
2: इसमें क्या शक है?
3: उम्मीद करता हूँ उन लोगों में मैं और चाचा बहराम शामिल नहीं।
2: क्या बात करते हैं हुजूर, हमारा मतलब उस कप्तान से था।
0: तो ठीक है गुलाबो, ठीक है। देखो जैसे ही कप्तान घर वापस आएगा बुकरात वहां से इशारा करेगा और तुम अपने काम पर रवाना हो जाओगी।
3: अच्छा अच्छा, तो ठीक है मैं चलता हूँ।
1: अरे ये कहाँ गए?
0: जाने दो जाने दो जाने दो, वो जा रहे हैं उनसे मिलने जिसको आजाद कराने के लिए सब पापड़ बेले जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: यानी सलमा से।
1: अब समझी।
2: तो ये बात है, वरना कोई मामूली दिल गुर्दे का शख्स हमारी बीवी जी की महफिल से यूं कैसे उठ सकता है?
1: और नहीं तो क्या।

0: एमरोज, एमरोज, तुम्हारा साथी रुस्तम कहाँ है?
1: हम दोनों तहखाने में कुछ ढूंढने गए थे, वो वहीं है, सो रहा है, उसकी नाक जाग रही है बस।
0: अरे तुम कहाँ जा रहे हो?
1: मालकिन ने बाजार से फूल मंगवाए हैं, सारे घोड़े कप्तान साहब के साथ गए हैं, पैदल जाना पड़ेगा।
0: रुस्तम सो रहा है, सलमा ने इसे बहाने से बाहर भेजा, इसका मतलब है कि अब वो पुराने मालिक से मिलने जाएगी।
2: अरे बाप रे, ये कप्तान सिकंदर तो वापस आ गया और सलमा तो अब तक क्या करूं, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
3: ये सारे घोड़े अस्तबल में ले जाओ। भुगराज, क्या बात है, क्या सोचने लगे तुम?
0: एक मिनट जनाब, आप अभी अंदर मत जाइए।
3: क्यों?
0: क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलेगा।
3: क्या बकवास किए जा रहे हो?
0: आप इधर तो आइए, आइए ना, आइए हुजूर, आइए। मुझे आपसे तन्हाई में कुछ कहना है। वो बात यह है कि पड़ोस की एक लड़की आपकी तलाश में है।
3: अच्छा, तुम्हें कैसे पता?
0: अजी हुजूर, उसकी निगाह बता रही थी कि वो आपको ही ढूंढ रही है।
3: वो कैसी थी?
0: बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत हसीन।
3: हाँ, मुझसे क्या चाहती थी वो?
0: हुजूर, ये तो वही बता सकती है।
3: ये तुम इशारे कैसे कर रहे हो? किसे इशारे कर रहे हो?
0: जनाब, मैं तो ये बता रहा था कि वो रही लड़की, वो जी।
3: ये तो सचमुच गजब की है।
0: मैं जाता हूँ हुजूर, क्योंकि वो इधर ही आ रही है।
4: कनीस आदाब बजा लाती है।
3: क्या आप मुझे जानती हैं?
4: आपको कौन नहीं जानता हुजूर? आपके लिए एक पयाम है।
3: कहिए, हम हमातन गोश हैं?
4: नहीं, आप ही नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं हुजूर। आप मुझे 1 घंटे बाद बगी

0: बच्चे में मिले,
1: एक घंटे बाद।
0: खुदा हाफिज।
2: हुजूर, क्या कह रही थी?
1: अजीब लड़की है, तन्हाई में मिलना चाहती है।
2: दिल की बातें राज की बातें होती हैं जनाब।
1: लेकिन लेकिन थी बहुत खूबसूरत।
3: अजी, ये तो उसके पैर की धोवन भी नहीं है।
1: हैं? क्या, किसके क्या कह रहे हो तुम?
3: अरे, ये जिसका पयाम लेकर आई थी।
1: हाँ, वो क्या सच?
3: हाँ,
1: मेरे लिए तो ये भी ठीक है।
3: लेकिन जनाब, एक बात का ध्यान रखिएगा।
1: हाँ?
3: आपके बर्ताव से महसूस होना चाहिए कि आपको इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं है।
1: ये तो बहुत मुश्किल काम है
3: जनाब। अगर इश्क में कामयाबी चाहते हैं तो यही करना होगा। इससे आतिश इश्क और भड़केगी, भड़कती जाएगी। चलता हूँ।
1: अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो?
3: जी, वो घोड़े को पानी देना।
1: अरे भूल जाओ घोड़ों को, तुम मेरे साथ रहो, हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत है।
3: ची ची, जो हुकुम सरकार का।
1: चलो बगीचे में बैठकर सोचते हैं
3: जी
1: कि क्या करना है और कैसे करना है।
3: जी, बेहतर।

0: तो
1: आप समझ गए हुजूर, वो आ ही रही है।
0: आ रही है।
1: और हुजूर, जब दिल की मुराद मिल जाए तो इस वाली को मुझे अता कर दीजिएगा।
0: हुजूर, इस गुलाबों ने आपसे तन्हा मिलने की दरख्वास्त की थी, ये कौन है?
2: ये मेरा राजदार है, फिक्र की कोई बात नहीं।
0: अगर राजदार है तो इससे कहिए कोई राज की बात बताए।
1: ये कौन सी बात है? मैं जानता हूं कि कोई है जो किसी पर मरता है,
0: ऐसी तो सैकड़ों हैं।
1: लेकिन वो तोहफे नहीं भेजती ना।
0: इसका मतलब है राजदार किस्मत का हाल जानता है।
1: अरे ये तो मैं भी जानता हूं, कोई है जो छुप छुप के रोता है, आहें भरता है, और मेरे मालिक की एक झलक के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है।
0: जी बिल्कुल सही। मेरी मालकिन की यही हालत है, तुम्हारे मालिक के गम में है। हाँ?
2: ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं क्या करूं?
1: जवाब नहीं मालिक, यही अंदाज ठीक है।
0: मेरी मालकिन की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आरजू लिए वो इस जहां से जाए।
2: क्या है उनकी आरजू?
0: वो आपसे मिलना चाहती है हुजूर, दिल की बात कहना चाहती है, वो आपकी होना चाहती है। आपने मुल्क फतेह किए, शाहों के ताज अपने कदमों में गिराए हैं, क्या आप एक मोहब्बत में मारी औरत को उसकी मोहब्बत नहीं दे सकते?
2: उनसे कहिए कि वो खुद मुझसे मिले, जो कहना हो कहें, तभी मैं कुछ सोच सकता हूं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए, मेरी मालकिन ने ये अंगूठी अपने प्यार की निशानी के तौर पर भिजवाई है। अब मैं चलूंगी हुजूर, खुदा हाफिज।
1: मैं इनको पहुंचाकर आता हूं हुजूर
2: ठीक है।
1: जी।
0: जी
1: अगर सलमा वहां अरमान के साथ हो तो उसको फौरन अपने कमरे में पहुंचने को कहो, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा।
0: जी
1: है? ठीक है, शब खैर।
0: शबक है।
1: हुजूर, बहुत खुश थी।
2: इसकी मालकिन कुंवारी है या शादीशुदा?

0: बुखारी, दोनों बातें सही हैं हुजूर।
1: क्या मतलब है?
0: हुजूर, इसकी मालकिन फिरदौस अपने पड़ोसी बहराम की नई बीवी है।
1: उस बुढ़े की?
0: जी हाँ, शादी को 1 महीना हुआ है और 29 दिनों से वो फिरदौस आपके इश्क में गिरफ्तार है।
1: वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सलमा का क्या करूं?
0: मेरी खबर है हुजूर कि सलमा की बहन अपने एक दोस्त के हमराह यहां इस शहर में उसको ढूंढने आई है।
1: अच्छा,
0: सलमा को उसके हवाले कीजिए, 2 बिछड़ी बहनें मिल जाएंगी और आपका काम भी बन जाएगा।
1: क्या वो हंसी खुशी जाना पसंद करेगी?
0: अरे आपके लिए किस बात की कमी है हुजूर, उसको हीरे जवाहरात तोहफे तहाइफ देकर रुख्सत कीजिए, चली जाएगी। फिर आप होंगे और आपकी फिरदौस।
1: और अगर वो नहीं गई तो मैं निकाल बाहर करूंगा
0: हुजूर।

0: तो इसका मतलब है बुकरात
1: जी
0: कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब रहे।
1: जी हाँ, हम कप्तान ने सलमा के हवाले बहुत से हीरे जवाहरात और कीमती अशिया कर दी हैं। अब बस कल किसी वक्त आपको एक जहाजी के भेस में उसके घर जाना है ताकि सलमा आपके साथ जा सके।
2: और उसके फौरन बाद मैं कप्तान को मिलने के लिए यहाँ बुला लूंगी। और फिर
3: जो कुछ करना है मुझे करना है। मैं बरसों से एक मौके का मुंतजर था। अब तुम जाओ, लेकिन एहतियात से, कोई तुम्हें देख ना ले।
1: आप फिक्र ना कीजिए हुजूर, वो चोर रास्ता कब काम आएगा जिससे सलमा इनसे मिलने आती थी।

0: हुजूर,
1: एक जहाजी आपसे मिलने आया है और कहता है कि उसे सलमा की बहन नीलोफर ने भेजा है।
0: अपने साथी गुलामों से कहो कि वो सारा असबाब जहाज पर पहुंचा दे।
1: बेहतर।
0: और हां, एक दुख की बात है बुकरात,
1: दुख कैसा मालिक, अब तो सब सुखी सुख होगा।
0: तुम नहीं समझोगे बुकरात, सलमा की जिद है कि वो तुम्हें भी अपने साथ एथेंस ले जाए, और मैंने मजबूर होकर हाँ कह दिया है।
1: मालिक, ये आपने क्या किया? मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगा
0: खनीस
1: मालिक?
0: आधा बजा लाती है हुजूर। मालकिन ने कहलाया है कि अब वो एक लम्हा भी आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उनके शौहर बहराम लातिनी कहीं बाहर गए हैं। अगर आप कुछ देर के लिए वहां, मेरा मतलब तशरीफ ला सके तो मेहरबानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो शिद्दत इंतजार में अपनी जान गवा बैठे।
1: नहीं, चलो मैं चलता हूं।
2: सलमा साहिबा जाने से पहले आपको खुदा हाफिज करना चाहती हैं।
0: बुकरात, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं,
1: आप सलमा को खुदा हाफिज कहकर सीधे बहराम लातीनी के घर जाइए। ये लीजिए, सलमा तो यहीं आ गई हैं। अरे मालकिन, आप रो क्यों रही हैं?
3: मैं कैसे अपनी आंसुओं को रोकूं? यहां मैं कितनी खुश थी।
1: हाँ, लेकिन बहन भी तो बहन होती है ना। क्यों जहाजी?
2: जी हाँ जी हाँ, इनकी बहन इनसे मिलने को बहुत बेचैन है।
3: फिर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन लेकिन एक बार जाने से पहले मैं
2: अरे अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई।
1: अरे अरे, संभालो संभालो जहाजी, संभालो संभालो संभालो।
0: बुकरात, तुम भी संभालो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? और जहाजी, उसके होंठों के पास से मुंह उठाओ।
2: मैं देख रहा था कि सांस तो आ रही है ना।
0: अरे कान से देखो, मुंह से नहीं।
2: आप कहें तो मैं छोड़ देता हूं।
0: नहीं, गिर जाएगी बेवकूफ। अच्छा, अब इसे ले जाओ ले जाओ, जहाज पर
1: जी
0: बहन के साथ
1: जी
0: भेजो।
1: अच्छा गुलाम भाइयों, कहा सुना माफ करना। मालिक, मैं चलता हूं और आप भी चलिए, लेकिन उस तरफ जिधर कोई आपका इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज, बड़े साहब की तो बात ही निराली।

0: तो सब लोग तैयार हैं?
1: तैयार है, तैयार है।
0: उसको पकड़ कर बाहर लाना, यहीं सरे बाजार जूते लगाने हैं उसे। लुकमान, तुम्हारा चाकू तैयार है? बस पकड़ लो उसे। जाओ।

0: तुम्हारी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े मेरी बीवी के कमरे में?
1: मेरी कोई गलती नहीं है, उसे ने मुझे पहले बुलाया था।
2: ये झूठा है जी, हाँ जी, सरासर झूठा।
1: आप गुलाबों से पूछ लीजिए।
3: हाय हाय हाय मेरे खुदा, इस मुंडी काटे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं तो अभी पहली बार इसकी शक्ल देख रही
1: हूँ। बुकरात से पूछ लीजिए, बुकरात से।
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो एथेंस जा चुका है।
1: क्यों?
0: बहुत हो गया, ये कह रहे तुम लोग?
1: अरे
0: ये कोड़े किस दिन के लिए है?
1: अरे
0: अरे
1: मर गया, मर गया। अरे राम, अरे माफ कर दो मुझे, अरे माफ कर दो मुझे, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारा गुलाम बन कर रहूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मर गया।
0: अगर तुम मेरे गुलाम हो तो मैं बिना कीमत दिए तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूँ? ये तुम लोगों के कोड़े क्यों रुकाए?
4: हुजूर, ये तो सचमुच मर गए।
0: तो क्या करूँ? इसका कहना है कि ये मेरा गुलाम है, क्या कीमत मिल सकेगी इसकी?
5: इसके लिए 100 धरम से ज्यादा नहीं मिलेंगे।
1: मुझे मंजूर है, रुस्तम को बुलाओ।
0: रुस्तम, रुस्तम!
6: जी हुजूर, जी हुजूर।
1: इन्हें घर से 100 धरम ला कर दे दो।
5: और ये तलवार, जूते और चोगा भी यही छोड़ कर जाओ।
7: और मारना है जनाब या बस करें?
0: अब जाने दो। और अगर अब शहर में किसी के भी तरफ आंख उठाकर देख लिया तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, समझे?

0: 100 दरहम दे आया हुजूर।
1: मुझे सहारा दो और हाँ उस जहाज को रोको, रोको जहाज को।
0: हुजूर अब तो वो आधे रास्ते में होगा। हाँ और हुजूर वो जो एक आंख का जहाजी था वो काना नहीं था।
1: क्या
0: मुझे याद आया वो तो जहाजी भी नहीं था। आपके घर से निकलते ही उसने आंख पर बंधी पट्टी फेंक दी थी।
1: क्या?
0: हाँ, तब मैंने पहचाना वो तो वही था जिसको मैंने सलमा के साथ वहां पड़ोस के घर में देखा था।
1: क्या,
0: हाँ, क्या हुआ हुजूर क्या हुआ? अरे आप तो बेहोश हो गए हैं?

हाइल्स ग्लोरिसस यानी बड़े साहब की तो बात निराली। ये ड्रामा अभी आपने समाप्त फरमाया। हिस्सा लेने वाले फनकारों के नाम मैं किरदारों के इस तरह हैं: बुकरात नीरज शर्मा, सलमा सुनीता शाहबादी, कलीम कीमती आनंद, लुकमान तिलक राज, रुस्तम सुनील लोहिया, सिकंदर अशोक मलकानी, बहराम सुरेंद्र सागर, गुलाबो ममता मलकानी, शब्बो फ्लोरा बोस और अरमान एस एम शरीफ, मुआविन दानिश जैदी, हिदायतकार सरफराज अहमद और पेशकश दानिश इकबाल।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज करें मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के नगमे से। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, नगमा निगार अनजान मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

हसीना मान जाए की फिल्म का ये दो गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और इन्हीं दो आवाज़ों में अगला नगमा फिल्म है आन बान, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

मेला फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और यह है नमक हलाल फिल्म का नगमा किशोर कुमार और साथियों का गाया हुआ। मौसीकी बप्पी लाहिरी की।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश समाधि फिल्म का नगमा आशा भोसले का गाया हुआ नगमा। निगार मजरू सुल्तानपुरी मौसीकी

लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की एमरजेंसी करार दिया है। और नेपाल के कोहपैमा कामी रिटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क़लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रोब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क़लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों वज़ीरे आज़म ने मग़रबी एशिया की सूरत हाल, ख़ासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई चेन और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है। जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के इनोवेशन और इनक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मरदमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतालिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि CBSE की 12वीं जमात के इम्तिहानात में ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम से जांच के अमल में गैर जानिबदारी और शफाफियत में इजाफा हुआ है। आज नई दिल्ली में CBSE की जानिब से 12वीं जमात के नतीज से मुतालिक खदशात के बारे में बात करते हुए स्कूली तालीम और ख्वादगी के महकमे की सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि नंबर देने के तरीके कार और पास होने के फ़ीसद में मामूली कमी पर तलबा की जानिब से कुछ खदशात जाहिर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की फलाह बहबूद सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए किसी भी तालिब इल्म को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे उसकी अहलियत से कम नंबर दिए गए हैं। सेक्रेटरी ने वजाहत की कि CBSE ने इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम नाफिज किया है, जिससे जांच के अमल में ज़्यादा शफाफियत और गैर जानबदारी को यकीनी बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो प्राइवेट मोटर गाड़ियों के मुकाबले मेट्रो के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए इजाफी ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक मौजूदा हालात में तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने, इक्तसादी इस्तेहकाम और माहौलियाती पायदार निज़ाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम रोल को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि कल से हर पीर के रोज 24 इजाफी ट्रेन ट्रिप्स का अहतमाम किया जाएगा। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का एक

0: WHO ने अलबत्त इस बात की भी वजाहत की है कि इबोला फूट पड़ने का ये मामला कोविड-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। लातविया के सदर एदगार्स रिंकविक्स ने अपोजिशन रुकने पार्लियामेंट एंद्रिस कुलबर्गस को मुल्क का अगला वजीर आजम नामजद किया है। अपोजिशन यूनाइटेड लिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुलबर्गस को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए कहा गया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लातविया के सदर ने कहा कि उन्होंने हालिया दिनों में सेईमा में मौजूद सियासी जमातों और मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों के साथ तफसीली गौर वखोज किया। रूस के हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को और उसके अतराफ के इलाकों पर गुज़िश्ता एक साल से ज्यादा अरसे के दौरान अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि मॉस्को के करीब खिमकी में एक ड्रोन के एक घर से टकराने की वजह से एक खातून हलाक हो गई, जबकि पोगोरेल्की गाँव में ड्रोन का मलबा एक ज़ेर तामीर मुकाम पर गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साल कोहपेमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। और नेपाल के कोहपेमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4 बजे 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तिन दी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दा आगाज़ कर रहे हैं श्री जबान सराइकी दे प्रोग्राम झोक माही दे नाल।

0: भगत बछावली, रतन खान, राम अवतार, लीला, साखी, सुख सागर, दस रत्न। संत मलूकदास जी दा आखना है कि पत्थर पूजन दे बजाए अगर ऐसा किसी दुखी इंसान दा दुख दूर कर सकूं ता परमात्मा बहुत खुश थींदन। ऐसा को परमात्मा दे कोल वरन दा रस्ता मिलदे। हिना दे जीवन दी है कि यो जी घटना मैं तुहाकू सुणदी हाँ जिंदे नाल उन्हां को ज्ञान दी प्राप्ति थई आई। संत मलूकदास जी एक बार अपने गुरु कोल पुछण लगे कि असा नैमिक क्षेत्र विच आ तां गए से लेकिन साडे खावण पीवण दा इंतजाम किवें थी से। गुरु ने आख्या भगवान अपने बंदिया को कदा भी भुखा नहीं रावण देंदे, वो अपने आप ही इंतजाम करेंद उन्हां दे खावण दा। संत मलूकदास जी सोचण लगे कि यह किवें थी सकते, मैं भगवान की परीक्षा गिंदा। एक बार वह जंगल विच वट वृक्ष के उत्ते चढ़ के पै गए। जंगल विच चरवाहा ने अपनी रोटी की पोटलियाँ वृक्ष की टहनियाँ ते लटका रखे हैं। सवेरे तो शाम थी गई, संत मलूकदास उथई पेड़ के उत्ते ही बैठे रह गए। शाम के वक्त उथों डाकू का काफिला निकला। वो सारे आराम करन वास्ते वट वृक्ष के थले ही बह गए ते उन्हां को भुख भी लगी हई। उन्होंने डिठिया कि वट वृक्ष की टहनिया ते पोटलियाँ टंगे वेन। उन्होंने पोटली उतार के डिठा तो हुंदे विच रोटी हई, लेकिन डाकुआ के सरदार ने रोटी खावण वास्ते मना कर दिता। वो आखन लग्या कि थी सकते ही रोटी दे विच किसी ने जहर मिला के रख्या होवे, पहले असा को पड़ताल कर गिननी चाहिए है, वल ही रोटी को खाना चाहिए। वो पुछण लगे असा किए करे सूँ पड़ताल ही दी। उन्हां दी नज़र गई वट वृक्ष के उत्ते बैठे संत मलूकदास जी के उत्ते। डाकुआ ने उनको थले उतारा और उन्हां को आख्या कि रोटी खा। उन्होंने सोचा कि अगर ये रोटी खावण के बाद जिंदा रह गया तो असा ये भी रोटी खा गए सूँ, और अगर हिंग की मृत्यु थी गई तो असा रोटी छोड़ दे सूँ। मलूकदास जी ने रोटी खावण वास्ते मना कर दिता, लेकिन डाकुआ ने मार मार के उन्हां को रोटी खवाई। ही घटना तो संत मलूकदास जी को ज्ञान की प्राप्ति थी और उन्होंने सोचा कि भगवान चाहे जिए भी होवे अपने भक्तों को भुखा नहीं रहन दे सकता। तो उन्होंने लिखा अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब यह है कि अजगर कोई नौकरी के नहीं करेंदा और ना ही पक्षी कोई काम करेंदन। मलूकदास जी के आखण का मतलब यह है कि सब दे दाता हुए जेड़े राम हैं ना, वो धरती ते आवण वाले हर जीव का पेट भरेंदन। चाहे जरिया कोई भी होवे वो किसी नू भुखा नहीं सुमण देंदे। जेड़े वट वृक्ष के थले उन्हां को ज्ञान की प्राप्ति थई है वो सीतापुर जिले विच अज भी मौजूद है। सत्संग सुनने वास्ते उन्हां दे कोल लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती है जिंदे विच हर जाति धर्म के लोग होंदे हन। उन्हां दी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक आई कि लोग इन्हां दी गाल भी मनेंदे हन और इन्हां दा सम्मान भी बहुत करेंदे हन। उन्हां दा जीवन काल 108 साल है। 1682 दे विच वो परमात्मा दे चरणां दे विच विलीन थी गए। संत मलूकदास जी दे कुछ दोहे ही प्रकार हैं। उहां न कबहु जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। मलूकदास जी आखेंदन कि उत्थां कदे भी नहीं वड़ना चाहिए जिथां हरी दा नाम नहीं गिद्दा वेंदा। जिथां परमात्मा दा नाम गिद्दा वेंदा होवे हमेशा उथाई दी राह पकड़नी चाहिए है। दिगंबर दा मतलब है निवस्त्र जिहड़े रांदन। अगर हुना दे गांव विच कोई धोबी चला वे सी तां हुंकु तां कोई काम ना मिल सी क्योंकि उथां तां कोई कपड़ा ही कहनी पैंदा। आखण दा मतलब यह है कि जिहड़ा व्यक्ति अध्यात्मिक है, साधक है, जिहड़ा परमात्मा दा नाम कहिंदे हुंकु हुना लोगां दा साथ नहीं करना चाहिदा जिहड़े परमात्मा को कह नहीं मनेंदे और जिन्हां दा परमात्मा दे नाल कोई मतलब ही कह नहीं। जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे गाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। मलूकदास जी कहिंदे कि जिथां जिथां बछड़ा वेंदे उनकी माँ यानी गऊ माता भी उथों उथों ही वेंदी है। कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए, मतलब कि भगवान राम उत्थां आप ही चले वेंदन जिथां हुना दे भक्त होंदन, जेड़े परमात्मा को प्रेम करेंदन भगवान आपे ही हुना दे कोल हुना दे पिछों पिछों उथाई पहुँच वेंदन। परमात्मा दिल दे भाव को गिणदन। दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन ते ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। मलूकदास यखें दिन कि जिन्दे दिल विच हृदय विच धर्म रूपी दया वसती है हुना दी बोली विच अमृत मिठी वाणी है ते ही उच्चे जानिए मतलब है कि हुना को ही उच्चा समझो जिंदे अखा हमेशा झुके रावन। आखण का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति ही महान है जिंदे हृदय विच हमेशा दया भावना प्रेम है। वह सब नाल प्रेम नाल गाल करें दे और घमंडी कहनी हुना ने ही दोहे विच महान व्यक्तियां दी पहचान दसी है। जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही न सुनाव अंतर जामी जानी है अंतरगत का भाव। संत मलूकदास जी अखेंदन तेरे दिल विच अगर परमात्मा दे प्रति प्यार है आराधना है तो हमको दसण की लोड़ कहनी अंतरयामी परमात्मा हर किसी दे दिल विच वसते। ओ परमात्मा दिल दे भाव जान दे आखण का मतलब है तो आपको परमात्मा को कुछ भी बार बार दसण की लोड़ कहनी वो सब जाने जान है। जीती बाजी गुर प्रताप ते माया मोह निवार कहे मलुक गुरु कृपा ते उतरा भव चल पार। मलूकदास जी कहें कि मैं अपने जीवन रूपी बाजी जीत गिती है अपने गुरु दे प्रताप तो मेरे गुरु दी इतनी महानता है कि हुना दी वजह ते मैं अपने जीवन दी भी बाजी जीत गिती है मेको माया मोह तो मुक्ति मिल गई है। मलूकदास जी कहें मैं ही संसारिक जीवन तो उद्धार पा गया भाव सागर तो भी पार थी गया। जीवहु ते प्यारे अधिक लागे मोही राम बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। जीवन विच जितने भी लोग हैं हुना को सब तो प्यारे मेको राम हैं बिन हरि नाम नहीं मुझे हिंदा मतलब है कि हरि दे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही कहनी कोई अर्थ ही कहनी। अगर प्रभु दा नाम है मेरा जीवन तार गए हिंदा मतलब है कि जीवन विच कोई यो जा बंदा नहीं जेड़ा परमात्मा दा नाम गिने ते ना तरे। भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। संत मलूकदास जी कहते हैं कि फकीर दा सिर्फ भेष बदल गिनना ही ना कुछ कहनी अगर उन्हें अपने मन दे अंदर मैल भरया हुआ है तो हुंदा फकीर वाला भेष कोई कम ना आसी। जेडे परमात्मा दा नां गिंदे ओ भगवान हुंदे हमेशा नाल रहंदे। सब को साहिब बंधते हिंदू मुसलमान साहिब तिनको बंधता जिसका ठोर ईमान। परमात्मा को हिंदू मुसलमान सारे धर्म दे लोग मनेंदे लेकिन परमात्मा सिर्फ हुंको मनेंदे जेडे लोगां दे विच ईमानदारी सच्चाई है इंसानियत है। परमात्मा हमेशा हुंको अपना परम भक्त मनेंदे। मलूक वाद ना कीजिए क्रोधे दे बहाए हार मनु अनजाने बकबक करे मलाए। इंदा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति दे नाल वार वाद विवाद नहीं करना चाहिए सारी जगह ते अज्ञानी बने रहो ते अपना गुस्सा पानी की तरह बहा लियो। अगर कोई अज्ञानी बहस करें दे तो मौन थी बनो गलत बोलने वाला व्यक्ति भी आपे ही मौन थी वैसे।
1: सुनन आलियो धार्मिक होवना कीते जरूरी है सूफीवाद। अमीर खुसरू तुंगहिन के बुल्ले शातोड़ी सारा ने धार्मिक होण ते जोर देता है। कविता दे रिवाज विच पाकिस्तानी उर्दू शायरी पश्तो कविता पंजाबी शायरी सिराइकी कविता बलूची ते कश्मीरी कलाम शामिल हैं जिथे लोगां दे मन भाव दे सूफी कवियां दी शायरी पढ़न ते गावन विच आवदी है। सूफीवाद को आम किताब वाले कार नहीं पढ़िया वेंदे हां सूफियाना कलाम जडन कलाकार गावदे हैं ना ता एक समा बज वेंदा है। आओ सुनेंदे हां नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दा गाया ए कलाम।

सुफियाना कलाम तुसा नुसरत फतेह अली खान ते साथियां दियां आवाज़ां विच सुनदे पए हवे। रब ने प्यार दे जरिए दुनिया की रचना कीती हई ते इस प्यार दे जरिए ही इंसान सारा चीजां विच रब दी हाजरी को रूबरू देख सकेंदा है। शाहबाज कलंदर दा नां तुसा सुना होसी। शाहबाज को भाई बंदी शांति ते सबर दा सुनेहा देन कीते जांदा वेंदा है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया बहु वैराग ते सहारण शक्ति दे प्रतीक हन। औलिया साहब आधे हिन सुफियाना कलाम बहाव रूहानी प्यार दा बहाव है। ए प्यार ते भक्ति दे जरिए सच वल को घिने दिवेंदी है। इस गाल को तुसा गालिब दे इस मशहूर शेर तू बहु वधिया तरीके समझ सकेंदे हो। शेर को मैं कुछ सराइकी च पढ़ेंदी हां। ओ आए साडे घर विच खुदा दी कुदरत है, कदहा असा उन्हा को कदहा अपने घर को डेदे हां। एक बया शेर गालिब दा है, तुसा ना आए ताकि सवेर ना होई, हां पर चैन नाल बसर ना होई, मेरा हाल सुना जमाने ने हिक तुसा को खबर ना होई। ते आओ हुन सुनेंदे हां शाह हुसैन दी काफी, गावन आले हिन संतोष कुमार।

0: ते ए है तुहाडे किते सिराइकी प्रोग्राम जिस विच तुसा सुफियाना कलाम सुनदे पए हवे। ए प्रोग्राम तुहाकू किंज दा लगा साको खत घल के जरूर दसना। हुन सिराइकी प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। हरजीत कौर को इजाजत देवो।
1: FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा अमृतसर केंद्र है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस 3 दी पंजाबी सेवा। पेशे प्रोग्राम देश पंजाब।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हां जी, तेजा सिंह जी, जेड़ा सिलसिला अपना 90 साल आकाशवाणी दे नाल
4: जी,
3: इस सिलसिले दे विच जेड़े भी लोग आकाशवाणी दे नाल जुड़े हुंदे आ किसी भी पक्ष तो
4: जी,
3: चाहे वह स्रोता वर्ग है, चाहे वह पेशकारी दे नाल जुड़िया, किसी ना किसी तरह आकाशवाणी नाल संबंध रखते हैं, तो वह लोग आके अपने दिल दीयां गल्लां जज्बात अपने सांझे करते हैं। अश्विनी कुमार होरी ने अज्ज दे सिलसिले च इन्हां नाल गल्लां बातां होईयां सांझियां करदे आपां
4: जी।
5: ठीक।

0: ਉਹ ਟੂਮ ਧੜਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ
1: ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
0: ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ
1: ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ,
0: ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਚਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 10 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
1: ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
1: ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੂਪ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ।
0: ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਘੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,
1: ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਯਾ ਭਾਰਤੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउड डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने

0: में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए रविवार का दिन है और आज कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ है। भाइयों के खत भी आपके हाथ में दिखाई दे रहा है और भाई देखिए, लेकिन पहले भाइयों से कुछ बात कर लें। देखिए किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा सामूहिक समूह या कंपनी है
1: जी।
0: इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें कृषि व्यापार और बाजार के जो मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वो अपनी आय बढ़ा सके। और देखिए सरकार का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसमें अगर सदस्यता की बात करें तो ये एक रजिस्टर्ड संस्था या कंपनी होती है। मैदानी इलाकों में इसे बनाने के लिए कम से कम 300 किसानों का समूह होना चाहिए और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 100 सदस्य इसको जो सदस्यता ले सकते हैं। और इसे देखिए किसी कंपनी अधिनियम या राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है।
1: और देखिए ना, जहाँ तक हम अगर हम बात करें इस योजना की कि हम किसानों की तरक्की हो, इस योजना को खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपयोग में ये योजना लाई गई। और हमारे देश में किसान मेहनती बहुत हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी जोत, महंगे महंगे बीज खाद, बाज़ार तक सही पहुंच ना होना, फसल का उचित दाम न मिलना जैसी समस्याएं उनकी मेहनत को कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन अब समय बदलता चला जा रहा है क्योंकि किसानों की ताकत अब संगठन बन रही है और इसी सोच को शुरू किया है किसान उत्पादन संगठन यानी FPO योजना के रूप में।
0: इन संगठनों से अश्विनी भाई जो सस्ता सामान और अच्छी तकनीक जब किसान समूह में बीज खाद कीटनाशक और मशीन खरीदते हैं तो उन्हें थोक भावों में भारी छूट मिलती है। साथ ही देखिए बेहतर बाजार FPO बिचौलियों को जो खत्म करके सीधे व्यापारियों या कंपनी मंडियों किसानों की फसल बेचती हैं जैसे उनसे बेहतर दाम मिलते हैं। साथ ही मूल्य संवर्धन की अगर बात करें तो किसान केवल कच्चा माल बेचने की बजाय अपने उत्पादों की जो ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग पैकेजिंग आदि करके कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इन सभी चीजों का भाई योजना सभी जी
0: बिल्कुल सुनिए भाई, एक फायदा और भी है। देखिए जो सरकार द्वारा जो वित्तीय अनुदान अगर बात करें तो भारत सरकार केंद्रीय योजना के तहत प्रति FPO पर 33 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही संगठन को ठीक से चलाने के लिए सरकार शुरुआती 3 वर्षों तक कार्यालय प्रबंध के लिए फंड भी देती है और सदस्यों की पूंजी बढ़ाने के लिए प्रति किसान 2000 रुपये तक का जो मैचिंग ग्रांट दी जाती है।

0: और देखिए ना, योजना किसान तक पहुँचे, ये किसान हमारी सरकारें लगातार इस क्षेत्र में काम करती हैं कि हर किसी किसान को छोटे सीमांत किसानों को संगठित करना, खेती की लागत को कम करना, किसानों को बाजार से सीधा जोड़ना, फसल को बेहतर मूल्य दिलाना और किसानों की आय को बढ़ाना, जो लगातार हमारी सरकारें कह रही हैं कि किसानों की आय दोगुनी, लाभ ज़्यादा, लागत कम, इन सब चीज़ों पर मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्रित हैं सरकारें हमारे, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और हर योजना का फ़ायदा किसान तक पहुँचे, तभी तो सरकारें और ये योजनाएँ आप कहीं ना कहीं क्षेत्र में खड़ी होकर कहेंगे कि हाँ, हर किसान को इस स्कीम का, इस योजना का फायदा मिला।
1: और भाई जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि भाई काफ़ी फरमाइश हमें और भी मिली है, तो आज के जो अगले कलाकार हैं बुलंद त्यागी है, और बुलंद त्यागी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ऊपरी कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और शाहनवाज सरफराज फरदीन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और एक और पत्र मिला है, ये है नरविला महाराष्ट्र, पत्र में लिखा है ये PS नेहवाकर, निर्मला नेहवाकर, विशाल नेहवाकर, उनका पूरा परिवार, और शहर बांदापुर पुराना पंजाब से पत्र मिला है ये सरदार परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह और इनका पूरा परिवार।
1: बुलंद त्यागी को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनका समस्त परिवार।
0: और यह चक्र 5 MD अनूपगढ़ से पत्र हमें लिखा है मंगल, मंगल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील, और इनको इन्होंने सुनना चाहा है।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, अंसर असलम अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और ये है सीमापुर बक्सर से एक और पत्र मिला है जिनको शामिल कर, जिन्होंने सुनना चाहा है बुलंद त्यागी को, ये है राज SD अंसारी, खातून अंसारी, मेहताब अंसारी, कल्लू मुल्लू अंसारी और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर एक पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है, रोशनलाल देवगन, कौशल देवगन, लता, बबलू, भव्या और उनका पूरा परिवार।
1: और ये अगली फरमाई समय मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, इसको भेजने वाले बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, और इसको भेजने वाले मुर्शद जहानाज और तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: और कोटा नारायणपुर बाबा पट्टी वाली से पत्र मिला है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, उनका पूरा परिवार। और नेवादा जिला गाजीपुर से ही पत्र एक और मिला है जिन्होंने सुनना चाहा है बुलंद त्यागी को, ये है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, उसको भेजने वाले अकरम हुसैन बेगम, इशरत वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
0: खेल बाजार पानीपत से एक और पत्र मिला है, ये है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी, और ये है शिवजी कॉलोनी रोहतक से एक और पत्र है, ये है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, इसको भेजने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
0: ये हमीदपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से एक और पत्र मिला है, ये रामकरण विश्वकर्मा, शाहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, प्रियल, दिवांशी विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है पिंगा वाला चौक से, इसको भेजने वाले संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और उनका समस्त परिवार।
0: शादिलपुर से है राजस्थान से एक पत्र शामिल और कर लेते हैं, रामकुमार मेरवाड, चंद्रकला मेरवाड। और एक और पत्र है, ये जनकपुरी सहारनपुर से है, ये हमारे पुराने श्रोता हैं और लगातार हमें मैसेज करते हैं, जॉन डिकोस्टा, रॉजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा और विलियम डिकोस्टा।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है गांव खरखड़ा 24 से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, आंशिक बोट, तमन्ना कांगड़ा की।
0: ये है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, यह है अनिल कुमार मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन का पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, जिग्नेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली कैथल हरियाणा से मधु नायक की, और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली गांव खोखर वाली से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन वारसा की।
0: जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र है, ये पत्र लिखा है खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से है नाजिया शेख, नाजिया और इनका पूरा परिवार। यह है गोविंदपुरा अहमदनगर से है जुनेद साहिबा, मिसाल जुनेद और उनका पूरा परिवार।
1: अगली फरमाइश हमें मिले भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार की। साथ ही हमें फरमाइश मिले भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली एताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर, आजाद नगर लक्षर, हरिद्वार से।
0: और एक पत्र मिला है, ये है रामगढ़ से ये पत्र मिला है, ये है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी और फरदीन अब्बासी, अरजान अब्बासी और उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बुलंद त्यागी से ये उपदेश।

0: सहयोग काम।
1: असली भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर भूलन त्यागी से उपदेश सुना और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा
2: है। जी देखिए, ये पत्र हमें भेजा है राजेश कुमार ने, गांव खिकड़ा है। और ये राजेश जी पूछ रहे हैं कि मैं आंवले का बाग लगाना चाहता हूँ, आंवले का बाग लगाने के लिए सही समय क्या होता है, आंवले के लिए कौन कौन सी किस्में लूँ, उन्नत किस्में लूँ और जिससे अच्छा उत्पादन मिले, लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, और आंवले का जो वृक्ष है वो कितने साल में फल देने लग जाता है, और सिंचाई की क्या व्यवस्था करूँ जिससे मुझे फल उत्पादन में अच्छा मिले, लागत मेरी कम आए और फसल मुझे अच्छी से अच्छी मिले।
1: तो राजेश भाई देखिए, आंवले की रोपाई आप करना चाहते हैं तो रोपाई का जो सही समय और सबसे अच्छा उपयुक्त समय जो माना जाता है, जुलाई व अगस्त का महीना माना जाता है। लेकिन भाई देखिए, इससे पहले आपको जून माह में 1x1 मीटर आकार के जो खड्डे पहले ही खोद लेने चाहिए और पौधे की रोपाई 9 से 10 मीटर के अंतर पर करनी चाहिए। जहाँ तक आपने भाई बात की है मिट्टी की, वैसे तो आंवला विभिन्न प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन राजेश भाई इसके लिए अच्छे जल निकासी वाली उर्वरा व गहरी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मानी जाती है। बीज की मात्रा की जहाँ तक बात, अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उचित माना जाता है। और प्रजातियों की अगर बात करें तो मुख्य प्रजातियों में बनारसी, हाथी, जूल, चकैया, कृष्णा, NA4, NA9, NA10 और कंचन, बलवंत, आंवला मुख्यतः जो उन्नत किस्में मानी जाती है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं। जहाँ तक वृक्ष की आपने फल देने की बात की, तो 6 से 7 वर्ष के में आंवले का जो वृक्ष है फल देना शुरू कर देता है। फल नवंबर दिसंबर में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। और भाई सिंचाई की जो जहाँ तक बात है, गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और बरसात ना हो तो भाई मानसून के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

0: जो फल निकलने के समय भाई सिंचाई ना करें, इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ले पाएंगे आंवला फसल से भरपूर उत्पादन। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो सुभाष चंद्र लुसाना, और उसको सुनने के लिए ये पहली फरमाइश मिली हरगोबिंद नगर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है बिलासपुर मध्य हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरौर, बेबी गरौर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये संबलपुर काकेरा से है। ये है फागुन राम यादव, ज्योति यादव, अजय यादव। और एक और है दत्ती तिरंगी से, भगवान भगवत शर्मा, शांति देवी शर्मा, लालावती, विनीत शर्मा वर्मा और रुद्र वर्मा, उनका पूरा परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सुभाष चंद्र लुसाना से ये उपदेश।

असली भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना सुभाष चंद्र लुसाना से। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जानकारी देंगे कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका। साथ ही योजना की अगर बात करें तो योजना के बारे में जानकारी देंगे हर घर जल योजना के बारे में। और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे खरीफ की फसलों के लिए बीजों का चयन। साथ ही वही जानकारी देंगे योजना गोवर्धन योजना के बारे में और बाजार भाव की भी जानकारी कार्यक्रम में देंगे। और

0: देखिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सकें खेती संबंधी भाई नई नई जानकारी, साथ ही करा सकें आपका मनोरंजन। इसके बावजूद भी यदि आपकी समस्या रह जाती है तो हर रविवार को हम देते हैं आपके खतों के जवाब, और इसके लिए भाई ज़रूरी है पता। तो पता आप लिख लीजिए, हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 1100001।
1: और आप हमें मेल भी कर सकते हैं कि आपका हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और कार्यक्रम में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। हम आप हमें मेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी उस फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करके आपकी समस्या का निवारण करें।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम कृषि जगत सुना और अब समय हो चला है आपके कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का। गज़ल और कव्वाली में आप सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से ये कव्वाली, जो मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी।

0: वक्त जो हवा का रुख है वो बहुत तेज और बहुत गर्म है, तो अपने आप को लू से जरूर जरूर बचा के रखिए, हीट वेव से बचा कर रखिए।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा।

वाकई इज्जत रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और मर मर के ही और घुट घुट के ही उसे रखा जाता है। वो इज्जत चाहे इश्क की हो, मोहब्बत की हो, या फिर आपकी किसी अजीज की हो। और फिर ऐसे में दिल चाहता है कि उसकी आंखों के समंदर में ऐसे डूबे कि फिर उबरने का कोई रास्ता ना रहे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन,
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
10: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
11: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
12: आप कौन?
13: RBI कहता है,
14: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। श्रीमती गुप्ता ने ये घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली रोहिणी वेस्ट स्थित यूनिटी वन मॉल के पास आयोजित 2 दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
15: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपना उत्पाद तैयार करे तथा उसे बाजार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत हो सके। इस मेगा मेला में लगभग 24 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। साथ ही उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।

0: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के ब्लॉक ए में लगभग 30 लाख रुपए और असलादपुर में जनकपुरी में लगभग 71 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक विकसित और सुविधा युक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
1: इन विकास कार्यों में जनकपुरी के ब्लॉक ए में विभिन्न सड़कों और बैंक लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं असलादपुर जनकपुरी में सड़क, नाली निर्माण, पार्क सौंदर्यकरण और बाउंड्री वॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बेहतर जुड़ाव, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री ने चंद्रनगर और नारंग कॉलोनी में भी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और पार्कों का सौंदर्यकरण शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित कुमार।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार 2025 का अपना एक और चुनाव संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष से अधिक समय के बाद राजधानी में लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहब सिंह ने आज घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह चौपाल सामाजिक समरसता, जनसुविधाओं और स्थानीय नागरिकों के संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गांव, देहात और हर वर्ग के विकास के संकल्प को भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार ये सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जाँच व्यवस्था को मजबूत करेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन ट्रेन का संचालन कल से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि अन्य दिनों भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। साथ ही इस क्षमता का विस्तार का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना और यात्रियों का सुचारू प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बों में आग लग गई, जिनमें 1 गार्ड का डिब्बा और 1 AC 3 टायर डिब्बा शामिल था। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: राजधानी में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश को वैश्विक व्यापार, संसाधनों, विनिर्माण और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भी निहित है, जिसके अंतर्गत देश भर के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई, नवाचार कारीगरों तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वायदा कर यह रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की एक विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। और राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सी

0: सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
0: RBI कहता है,
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन,
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती सुधा कुमारी।
1: आज हम सभी यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में कवि गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं श्री शिव शंकर एहसास जी। उसके अलावा हमारे बीच में उपलब्ध हैं इस समय सुरेश कुमार जी, और उसके बाद हमारे बीच में हैं संगीता वर्मा जी जो अपना काव्य पाठ करेंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। एक छोटा सा गीत कहना चाहूंगी। पिता जो होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो एक छोटा सा गीत है, मैं अपनी मनोभावना कहना चाहूंगी। पत्ते

0: गिर जो
1: बहुत
0: टूटे,
1: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: गंगा जल की जैसा मेरा मन ये शीतल हो पाया है।
1: वाह,

0: पत्ते पत्ते बूटे बूटे तरवर से गिर गिर जो टूटे।
1: बहुत अच्छा
2: बहुत अच्छा बहुत
0: अच्छा। उड़ने

0: टूटे
1: बहुत अच्छे।
0: और एक गजल और कहती हूँ मैं, सुनिएगा कि बदलिए रंग लेती हैं, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियाँ देखो, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियाँ देखो, बड़ी अटखेलियाँ ये कर रही कठपुतलियाँ देखो।
1: बहुत अच्छा।
0: सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, ललायत हो रही हैं मन चली ये तितलियां देखो, ललायत हो रही हैं मन चली।

0: ये तितलियां
1: बहुत
0: देखो,
1: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शुक्रिया। शुदा मिटती नहीं इनकी भले पर्याप्त तो हो साधन, शुदा मिटती नहीं
1: नहीं
0: इनकी भले पर्याप्त
1: पर्याप्त
0: हो
1: हो साधन,
0: साधन, रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियां देखो।
1: क्या भाव है,
0: रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियां देखो। और शुक्रिया। करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियां देखो। खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियां देखो। और कहती हूँ कि जुबाशीरी नजर पहनी जो तीखी तेज धारी है, जुबाशीरी नजर पहनी जो तीखी तेज धारी है, असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो। असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
0: शुक्रिया। और अंतिम, संभलना है गरजते बादलों से ऐ बशर सुन ले, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और
0: बहुत बहुत शुक्रिया। एक सच्ची बात और कहती हूँ सिर्फ चार पंक्ति में, कि
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: गगन छू के आना तमाशा नहीं है, गगन छू के आना तमाशा नहीं है, चकाचौंध की मुझको आशा नहीं है।

0: में अभी खुद को उतना तराशा नहीं है, अभी खुद को उतना तराशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा आपने पाठ किया संगीता जी, उम्दा आपने अपनी गजल और गीत सुनाए, बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद सुधा जी।
1: अब मैं श्री शिव शंकर एहसास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनका हमारा तुम्हारा जीवन दर्पण नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और शीघ्र ही ये एक और नया काव्य संग्रह प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो मैं इनको अपनी दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी। एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, खूबसूरत बेमिसाल जीवन का मुकाम होगा। मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, प्यार और इंसानियत से जमी सुकून का मकान होगा, सुकून का मकान होगा। शिवशंकर जी, आपसे मैं आग्रह करूंगी आप अपनी रचना का पाठ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी रचना कहना चाहूंगा। तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, जब खुद से मोहब्बत नहीं, जब खुद से मोहब्बत नहीं तो उनसे मोहब्बत क्या होगी, तो उनसे मोहब्बत क्या होगी। इसी प्यार की कुछ बातों को मैं अपने एक पंक्तियों में लेकर हाजिर हूँ, नगमा मैंने इसको शीर्षक दिया है। हर वक्त आंखें नम रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, दूर जहां तक भी नजर जाती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, तेरा ख्याल सब कुछ भुला देता है, दिया जलाता हूँ रोशनी के लिए, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है, तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, मगर यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है, भूल जाना चाहता हूँ जिन नगमों को, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है। नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, यह ऐसा आसियाना है जहाँ कोई दोबारा नहीं आता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं। वो दो कदम साथ क्या चले, वो दो कदम साथ क्या चले, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, वो कभी इतने करीब आए कि हमारी अपनी पहचान चली गई, कि हमारी अपनी पहचान चली गई। धन्यवाद मैडम। किस कदर देखिए पहचान किस तरह से गई। दो जिस्म एक जान थे हम, दो जिस्म एक जान थे हम, सच कहता

0: है जमाना, सच कहता है जमाना, बहुत अनजान थे हम, बहुत अनजान थे हम। शुक्रिया मैडम। मैं अपनी बात कुछ लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, क्यों चित चंचल करती है, बन चंचला उड़ती है नभ में, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है। यही जब हमारी एक नन्ही सी चिड़िया बड़ी होती है, और इसका मैं एक भूमिका से है कि जब वो बालिका से एक महिला बनती, नारी बनती है, तो नारी बनने के बाद में उसकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, मैं उन अपेक्षाओं को अपनी चंद लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं नारी हूं, मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूं मैं तुम्हारी, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूं मैं तुम्हारी, मुझसे बस प्यार करो, मुझसे ना नमन ना सत्कार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, यूं ना तुम मेरा तिरस्कार करो, नारी हूँ मेरा सम्मान करो, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, मेरे सृजन को स्वीकार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, निर्भया पर की गई क्रूर बर्बरता का ना यूं तुम विस्तार करो, बना द्रौपदी महफिल में ना मेरा अपमान करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो।
1: बहुत अच्छे।
0: ना लूटो भरे बाजार मेरी असमत को, ना लूटो भरे बाजार मेरी असमत को, ना ढकेलो जिंदगी की बंद गलियों में, जहां से मैं वापस आ न सकूं, अपनी लुटती असमत को बचा न सकूं, फर्ज नारी का भी मैं निभा न सकूं, ना ढकेलो जिंदगी की बंद गलियों में, ना ढकेलो जिंदगी की बंद गलियों में, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो।
2: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा।
0: मेरे धैर्य को कमजोरी समझ मेरा उपहास न करो, मेरे धैर्य को कमजोरी समझ मेरा उपहास ना करो, मैं सृष्टि की जननी हूँ, मैं सृष्टि की जननी हूँ, मेरा विलास ना करो, गर सूख गई कोख मेरी तुम वीरों को कहाँ से लाओगे, गर सूख गई कोख मेरी तुम वीरों को कहाँ से लाओगे, बहन बेटियों की जो न बचाई असमत तुमने, तो मातृभूमि की असमत कैसे बचाओगे, तो मातृभूमि की असमत कैसे बचाओगे। धन्यवाद मैडम। गर सूख गई कोख मेरी तुम वीरों को कहाँ से लाओगे, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो, मैं नारी हूं मुझसे बस प्यार करो, मुझसे बस प्यार करो।
1: बहुत अच्छे शेर शंकर जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। सुरेश जी, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आपकी रुचि है गजल गीत और नज्म में, और आपका एकल काव्य संग्रह फरेबे मुखलिसी प्रकाशित हो चुका है, और साझा काव्य संग्रह काव्य सरोवर भावरस ये भी प्रकाशित हो चुका है, तो मैं आपसे अब कहूंगी प्रस्तुत करें।
3: शुक्रिया सुधा जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं चार लाइनों से माँ के नाम जो हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। सबसे ज्यादा फिकर उसे मेरी जाँ की होती है, सबसे ज्यादा फिकर उसे मेरी जाँ की होती है, बेसुद को खबर ना यहाँ की होती है ना वहाँ की होती है, घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है, घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है, वो नजर तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की होती है।
1: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
3: अब इसके बाद एक मेरी गजल जिसमें बाप का दर्द भी है। बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, थोड़ा बचा अपनी पीढ़ी का आदाब रहने दो, हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, ओझल होने से पहले उनमें ये ताब रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
3: खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, मेहरबानियों का उनकी कैसे करोगे हिसाब, रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
3: उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, तुम्हारे बचपन पे उनका रहा निसार शबाब, रहने दो, जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने,
0: बहुत अच्छे,
3: जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने, मगर उनका था प्यार बच्चों से बेहिसाब, रहने दो। खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, आज उनके नाम लगाई शबील ये सवाब, रहने दो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप,

0: मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप के, उनके बिना पाले थे ओहदे और खिताब, रहने दो।
1: बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है।
0: एक अगली गजल उसके चंद शेर। हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, जब आसमां में हो तो जमीन नजर नहीं आती।
2: बहुत अच्छा।
0: छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, हुई थी गलतियां जहां वही नजर नहीं आती,
1: नहीं आती। बहुत अच्छा।
0: पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, हमें ये रिवायतें आजकल कहीं नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छे।
0: किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, पसे पर्दा उनकी जिंदगी में हंसी नजर नहीं आती।
1: बिल्कुल आज की सच्चाई है।
0: वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, आज क्यों उसको मेरी आंख की नमी नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छा।
0: ये तेरे लफ्जों की निकाशी कह जादू सुरेश, ये तेरे लफ्जों की नकाशी कह जादू सुरेश, उसकी तस्वीर तेरी गजलों में यूं ही नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छे।
0: चंद लाइनें एक और गजल की। कहते कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या
2: जी,
0: कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या, तुम्हारे वादे का अब भी एतबार करूं क्या।
1: बहुत अच्छा।
0: मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है
2: जी,
0: मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है, हाँ मैं खुद भी अपने में सुधार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे।
0: कहते रुखसत जब हुआ था मुड़ के न देखा उसने, रुखसत जब हुआ था मुड़ के न देखा उसने, समझ नहीं आ रहा अब उसका इंतजार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे।
0: वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, कश्म कश्म में हूँ तेज अपनी रफ्तार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे। क्या बात है।
0: तंज भरे जुमले ना कसो मुझ पर तुम, मैं भी तुम्हारी नजर चंद इशार करूं क्या।
1: बहुत शुक्रिया।
0: ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, अब क्या सीधा सीधा इजहार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे।
0: शुक्रिया। चंद लाइने। कहते गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, अपने बीच की अभी बात रहने दो। तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, बाकी अपने बेशकीमती सौगात रहने दो। किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, मगर ये बेमायने तर्क वजूहात रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
0: शुक्रिया। कुछ लम्हे खामोशी के भी दरमियान रहने दो, बेतुके जवाबों से बेहतर कुछ सवालात रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
0: सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, मूंदी आंखें रखो निगाहों की मुलाकात रहने दो। आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, छोड़ो दिल मेरा और मेरे जज्बात रहने दो।
1: बहुत अच्छा।
0: लगता है जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, अब मूसले से क्या करे एहतियात रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
0: एक छोटी सी एक गजल ओ
2: जी।
1: बिल्कुल।
0: पलक से निकल रुखसार पर रहता है। मेरा है रही मेरा तुम्हें क्या कहता है। पलक से निकल रुखसार पर रहता है, मेरा है रही मेरा तुम्हें क्या कहता है। कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, अश्क मेरा कहां से कहां तक बहता है, दर्द सहने का खूब हुनर आए है उसको, गुफ्तार कम हंसी ज्यादा ऐसे वो सहता है, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, हमारा दिल तो इसके इबादत कहता है, झूठ के पांव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, झूठ के पांव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, मुंसिफ के आगे भी गवाह कहां सच कहता है।

0: बहुत अच्छे।
1: एक छोटी सी गजल
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं।
2: जी जी।
1: अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं, लगता है ताज़ा कोई प्यार बने हैं।
0: बहुत अच्छे
2: बहुत अच्छे।
1: अब तेरे पाँव के खार बने हैं, लगता है ताज़ा कोई नए प्यार बने हैं। सब लहजे से तेरे महसूस हो रहा है ये, इस बार बिछड़ने के पूरे आसार बने
0: बन रहे हैं। बहुत अच्छे।
1: तुम आदत ना पालो हमें हमेशा बनाने की। तुम आदत न पालो हमें हमेशा बनाने की, बेशक वैसे हम तो हर बार बने हैं।
0: बने हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: नया हो या इश्क पुराना, तुम्हारा अब निभाना। इश्क की मंडियों में जिस्म के बाजार बने हैं। कहते रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर। रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर, इसी रोक टोक से आपके गुनहगार बने हैं।
0: बने हैं। बहुत अच्छे।
1: रसूख वाले ओहदे वाले हैं तुम्हारे करीबी सब, हम चाहने वाले सिर्फ सजा के हकदार बने हैं। कस्मे वादे दिल लगी इजहार मोहब्बत, नॉलेज सुरेश ये सब के सब व्यापार बने।
0: व्यापार बने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुरेश जी आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो आप
2: नहीं नहीं बहुत अच्छा सुनाया सुरेश जी ने और बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। हमारे बीच एक सफल मंच संचालन कर रही हैं सुधा मलिक जी। अपने मन के भावों को इन्होंने एक काव्य संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है एहसास। देखिए कितना एक संयोग है, मैं भी पसंद करता हूँ शिवशंकर एहसास के नाम से लिखना और मैडम ने तो किताब ही लिख डाली है एहसास के ऊपर। तो मैं आमंत्रित करूंगा मैडम सुधा मलिक को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें।
0: धन्यवाद धन्यवाद शिवशंकर जी। औरत के ऊपर कुछ लाइनें हैं। मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: जी जी।
0: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। जन्म दिया पाला अपनी रातें कर, अस्तित्व मिटाया बस तुझे देखकर। तेरी परवरिश पे जान झोंक दी, तुझे खिलाया खुद का निवाला छोड़कर। बड़े होकर ना आंख दिखाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं माँ हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
0: मैं माँ हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। जवानी तेरी रंगीन बना दी, प्यार भरी दुनिया दिखा दी। प्यार में तेरे खुद को सौंप दिया, अस्मत भी अपनी तुझ पे वार दी। तूने वक्त निकलते ही राह बदल दी, गैर के साथ जिंदगी बसर कर ली। धोखे से यूं ना मिटाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं प्रेमिका हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: बहुत अच्छी।
0: मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। घर बसाया तुझे अपना मानकर, जान झोंक दी कर्तव्य जानकर। वंश बढ़ाया सबकी देखभाल की, तेरे लिए अपनी हस्ती भेंट दी। जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई, जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई। तूने मुझ में लाखों कमियां बताई, पराई औरत में दिलचस्पी दिखाई। यूं धोखा देकर ना तड़पाओ मुझे,
2: बहुत अच्छा।
0: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं बीवी हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही, मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही। सड़कों पे भी ना हवस का शिकार बनाओ मुझे, मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मैं बेटी बहन माँ तुम्हारी, प्रेयसी पत्नी बहु हितकारी। देवी सी ना करो पूजा, देवी सी ना करो पूजा, पर इंसान सा आदत दिखाओ मुझे। मैं औरत हूँ मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। धन्यवाद धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता।
0: अब मैं आपको एक अपनी दूसरी रचना सुनाना चाहूंगी। इसमें थोड़ा कहना चाहूंगी कि हम किसी का भला करना चाहें तो उसके लिए हमें धन दौलत बहुत होना हमारे पास अनिवार्य नहीं है, हमारी नियत होनी चाहिए। तो उसी पे है, भला करने के लिए दौलत नहीं नियत है लाजमी। बहुत कुछ करके पुण्य कमा सकता है आदमी। रास्ते से किसी के पत्थर हटा दो, अपनी सीट पे जरूरतमंद को बिठा दो, किसी का बोझ उठा दो, पंछी को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो। कोई अगर हो परेशान उसे देख मुस्कुरा दो, दो मीठे बोल साझा करो उसका गम भुला दो। अनजान भले हो किसी बुजुर्ग को हंसा दो, दो कदम हाथ पकड़ के चला दो। लड़की कोई अकेली तो उसका हौसला बढ़ा दो, दो कदम साथ चल मंजिल पे सुरक्षित पहुंचा दो।
2: बहुत अच्छे बहुत को।
0: दो कदम साथ चल मंजिल पे उचित पहुंचा दो। बच्चा किसी का राह भूले, बच्चा किसी का राह भूले उसे सही सलाह दो, राह उचित पकड़ा दो। और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो, और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो। अफवाहों को ना हवा दो, भला करने के लिए दौलत नहीं नियत है लाजमी। बहुत कुछ करके पुण्य कमा सकता है,
2: बहुत कुछ करके
0: पुण्य कमा सकता है आदमी। मैंने अपने आप को कान्हा जी के रूप में रख के अपने सोचा और कुछ विचार मेरे मन में आए कि कृष्ण भगवान ने अपने जो जीवन यापन किया तो कितने कष्ट उसमें सहे, तो वो मैंने भाव अपने अंदर महसूस किया और उनको मैं उजागर करना चाहूंगी।
2: स्वागत है।
0: जो

0: मैं सोचूं काना बन गई, जो मैं सोचूं काना बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई। जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म उपरांत माँ भी मुझसे बिछड़ गई। मुझको जन्म देने के हेतु ज्येष्ठ पुत्रों के वध को सह गई, देखकर मुझको जन्म देव की गोद में लेने से वंचित रह गई।
1: बहुत अच्छा, बहुत
0: जो
1: अच्छा।
0: मैं सोचूं काना बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई। जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, यशोदा की ममता भी जल्दी छिन गई। गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई। गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई। धर्म का पालन करने हेतु तीस विरह की मुझको डस गई। बरसाने की गोरी राधा, बरसाने की गोरी राधा, प्यारी देखो कैसे मुझसे बिछड़ गई। अत्याचार मिटाने को, जनता को बचाने को, निज मामा की हत्या करनी पड़ गई। सत्य और धर्म जिताने को, अन्याय भूमि से मिटाने को, महाभारत भी मुझको रचनी पड़ गई। और चक्र चलाकर अपनों पर ही, और चक्र चलाकर अपनों पर ही रक्त की होली खेलनी पड़ गई। हाय कितना दर्द हृदय में, हाय कितना दर्द हृदय में, देख धरा जो शवों से पट गई। शोक विलाप करती गांधारी, शोक विलाप करती गांधारी, के श्राप की छाया लेनी पड़ गई। अपने ही पुत्रों के कारण, अपने ही पुत्रों के कारण यदुवंश की विध्वंस सहनी पड़ गई। और मैं जगत का पालनहारा, और मैं जगत का पालनहारा, तीनों लोकों का तारणहारा, एक तीर से प्राण आहुति देनी पड़ गई। मेरा मर्म न जाने कोई, मेरा मर्म न जाने कोई, क्या क्या परिस्थिति मुझको सहनी पड़ गई। मैं जगन्नाथ, मैं नारायण, मैं प्रजापति, मैं सर्वेश्वर, मैं जगन्नाथ, मैं नारायण, मैं प्रजापति, मैं सर्वेश्वर, भूलोक में अवतरण की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ गई। अपना कर्तव्य निभाने को, अपना कर्तव्य निभाने को, अधरों पर मुस्कान, हृदय में पीड़ा छुपानी पड़ गई। जो मैं सोचूं काना बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई। जो मैं सोचूं काना बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई।
1: बहुत ही खूब कविता, बहुत ही खूब कविता।
0: और अब मैं लास्ट में एक थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए,
1: जी जी स्वागत है।
0: ये मैंने अपने अंतर्मन के भाव हैं, जब हमारा कोई अपने अंतर्मन में चल रही होती है विचार भावना, तो उसका है कि अपने आप को ही मैं जवाब दे रही हूँ, अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ। आज फिर कुछ लिखूं क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। आज फिर कुछ लिखूं क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। कहने को तो हैं बहुत सी बातें, सारी की सारी कह दूं क्या। पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, तो वो बातें रहने दूं क्या। जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज्यादा, जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज्यादा, तो गम को खुशी से सह लूं क्या। कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, जो भूली सो भूली, जो याद वो सजा के रख लूं क्या। आज फिर कुछ लिख दूं क्या, बहुत गिले शिकवे जमाने से, बहुत गिले शिकवे जमाने से, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो गिले शिकवे भी रहने दूं क्या। चलो छोड़ दूं मैं सारी बातें, क्या रखा है बताने में। चलो छोड़ दूं मैं सारी बातें, क्या रखा है बताने में, जो जैसे खुश उसे वैसे ही रहने दो क्या। आज फिर कुछ लिखूं क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। आज फिर कुछ,
1: बहुत अच्छा है सुधा मलिक मैडम ने बोला। और ये तो मैं कार्यक्रम के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा प्यार तो हिना था, मेरा प्यार तो हिना था, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का। इसी के साथ में
0: अब इस काव्य गोष्ठी का हम समापन करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की,
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री शिव शंकर, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती सुधा कुमारी और श्रीमती संगीता वर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती सुधा कुमारी। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी कवि गोष्ठी का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म विरासत से कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूं आपके साथ चेतना और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:37 हुए हैं।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना और फिल्म खूबसूरत। उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने पसंद किया होगा और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:41 हुए हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव

0: दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सामिन, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में गैर फिल्मी गज़लें। आपने इस प्रोग्राम के तहत सुनी अकबर हैदराबादी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और फरहत शहज़ाद की लिखी हुई गज़लें। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली, मसनूई जहानत, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मुस्तहकम सप्लाई चेन, दिफा, खला, माहौलियाती इकदाम और अवाम से अवाम के दरमियान राबते के शोबों में बाहमी तआवुन के नए इम्कानात पर गौर खोज किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में उस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नए तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तश्वीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असम्बली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। ताहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के अख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफार्म फराहम करते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मधुर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का इफ्तिताह भी किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड स्टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीज़न के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टेयर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब, हिफाजती निज़ाम,

0: जाएगा। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स के जरिए आइए सुनते हैं बदलते हुए मौसम पर से आंखों पर पड़ते हुए असरात, उसके इलाज और बचाव के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें।
2: आज के प्रोग्राम का मौजू है बदलता मौसम और आंखों की आम बीमारियां, इन्फेक्शंस, वजूहात, बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खुशी तहलियानी, सीनियर आई सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर खुशी तहलियानी, आपके इस्तकबाल है।
3: स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आंखों की आम बीमारियों से क्या मतलब होता है? क्या क्या बीमारियाँ आम होती हैं जिसे कॉमन मैन समझ सकता है या समझना चाहिए उसको?
3: आंखों की आम बीमारियों में अगर हम कहें तो हर एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एक जो आम बीमारी बहुत कॉमन है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है।
2: आमतौर पर आंखें दुखना,
3: यस, आंखों का लालीपन, आंखों में से डिस्चार्ज आना, ये सब कॉमन सिम्टम होते हैं। ये हर एज ग्रुप में कॉमन है, चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे वृद्धावस्था हो। इसके अंदर मरीज को ये है कि डिस्चार्ज आना, आंखों का लालीपन, भारीपन होना, ये बहुत ही आम समस्या है। खास करके जैसे कि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में और बारिश के सीज़न के बाद में ये इन्फेक्शन देखने के बहुत देखा जाता है,
2: आमतौर पर ये मिलता है।
3: जी जी,
2: तो इसकी वजूहत क्या होती है? क्या बारिश का पानी या ये जो वेदर चेंज होता है?
3: बेसिकली दोनों ही चीज़ें, एक तो बारिश का पानी की वजह से और वेदर चेंज की वजह से, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो बैक्टीरिया से होती है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये दोनों ही बहुत कॉमन है। दोनों के सिम्टम दोनों ही कॉमन होते हैं और इसमें मरीज को हम एंटीबायोटिक के अलावा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का टॉपिकल ड्रग्स दी जाती है जिससे वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर घर के किसी एक मेंबर को है तो दूसरे मेंबर को भी होने की आशंका रहती है, बिकॉज दिस इज अ कंटेजियस, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना रहती है,
2: ज्यादा होती है।
3: जी जी,
2: तो ऐसे में सबसे बुनियादी तौर पर जो एहतियात फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए वो क्या है?
3: अगर आप कोई कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हैं तो आप अपना तौलिया किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, और इसके अलावा आई कांटेक्ट, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप आंखों में सनग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे कि आई कांटेक्ट से भी दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, तौलिए से, हाथ मिलाने से, ये सब कॉमन है। अगर आप इन सब चीज़ ग्रसित हैं तो बेहतर है कि अगर आप बच्चा है तो वो स्कूल उसको ना भेजें, क्योंकि अन्य बच्चों के भी होने को संभावना रहती है। अगर आप कॉलेज या कोई नौकरी करने जाते हैं तो अगर एक दो दिन की आप छुट्टी ले लें तो बेहतर रहेगा कि आपके अपने जो कोलीग हैं उनसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।
2: अच्छा, ये आई फ्लू क्या होता है?
3: इसी का, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आई फ्लू के नाम से जाना जाता है।
2: जी, इसमें ज्यादा देखा गया कि आंखें बहुत लाल हो जाती हैं।
3: जी जी जी,
2: चुभन होने लगती है,
3: आंखों में से डिस्चार्ज आता है, भारीपन, और आंखों में से कुछ महसूस होता है, भारीपन वगैरह का महसूस होता है इन चीज़ों।
2: जी जी, अच्छा एक चीज़ और भी होती है, कभी कभी कहते हैं कि चुभन आंखों में होने लगती है अचानक, जिसे रोहे किसी जमाने में कहा करते थे,
3: जी
2: उसे आमतौर पर कम देख
3: आजकल के केस बहुत कम हो गए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं रोहे पुराने ज़माने में हो करते थे, इसको हम उस बीमारी को हम ट्रकोमा के मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकोमा के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद आंखों में रोहे वगैरह, आंखों में लालीपन होता था, परंतु गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम की वजह से, जिससे कहते हैं ट्रकोमा एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया हुआ प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे जो कि 5 साल से कम है, उनको हम टॉपिकल एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन 1% दी जाती है, जिससे उनसे बचाव हो जाता है ट्रकोमा का, और आजकल के इनका इंसिडेंस बहुत ही कम हो गया पहले के मुकाबले।
2: अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी इस मौसम में हो सकती है? जैसे बरसात का मौसम है, क्योंकि आमतौर पर हाथ कभी लग गए, कुछ जरासीमों का मौसम होता है, इस कहते हैं इस पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
3: जी जी, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कंजक्टिवाइटिस के बारे में, ये डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल के अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कॉमन है, इसके अलावा फंगल कंजक्टिवाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन हैं जो कि बारिश के सीज़न में आपके होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर हम और जैसे कि डिस्कस करें कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, जिसमें आप हर उम्र में, कोई भी उम्र हो, हर कोई आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका मोबाइल यूज़ करता है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की इंसिडेंस भी बढ़ गया है। इसमें यह है कि कोई अगर व्यक्ति लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करता

0: Bir kasadan. Bravo. Aha şükür efendim. Aha şükür efendim. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. रात बेगम ने मियां अंडों का जब सालन रखा
1: जी
0: रात बेगम ने मियां अंडों का जब सालन रखा देख कर ये मौजदा में बाखुदा हैरान था मैंने पूछा तो वो बोली आज अम्मी आई थी
1: जी
0: सिर्फ दो घंटे ही बैठी आठ अंडे दे गई
1: क्या बात
0: सिर्फ दो घंटे ही बैठी आठ अंडे दे गई मैं ये बोला फार्मूला ये बड़ा आसान था और दो घंटे बिठा लेती तो क्या नुकसान था
2: जी इरशाद
0: पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा
2: पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा
0: पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया
2: पूछे
0: कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहे मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया
1: क्या बात है
0: वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया
1: वाह वाह
0: और सिर्फ जो है दो कतरे और
2: अपने
0: के फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर
2: फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर
0: फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था मैंने बढ़िया लिख दिया
2: अच्छा
0: आशिकाना मूड में था मैंने मैंने बढ़िया लिख दिया सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक असल में कीपैड ने बढ़िया को बुढ़िया लिख दिया आठ दूसरे के साथ आखिर आखिर कथा के शादी की पार्टी थी वहाँ भूत आ गए
2: अच्छा
0: शादी की पार्टी थी वहाँ भूत आ गए देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गईं वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे
2: वैसे
0: डरे हुए तो कई आदमी भी थे देखा जो औरतों ने वहाँ मौलवी भी थे
2: अच्छा
0: बोली औरतें हमें हजरत बचाइए तब मौलवी बोले वजू करके आइए
1: अच्छा
0: तब मौलवी बोले वजू करके आइए और करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गई करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गई फिर इसके बाद भूतों की चीखें निकले
2: कुछ और इनायत करें
0: छह मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुंतखब नज़मों की मैंने एक छपाई किताब
2: मुंतखब नज़मों की मैंने एक छपाई किताब
0: मुंतखब नज़मों की मैंने एक छपाई किताब आ गया अदबी जगत में एक भयंकर इनकलाब आग की तो बात क्या है बिक गई थी राख तक
1: अच्छा
0: आग की तो बात क्या है बिक गई थी राख तक एक हफ्ते में बिकी थी कॉपियां 2 लाख तक
1: वाह वाह
0: वाह एक हफ्ते में बिकी थी कॉपियां 2 लाख तक टाइटल था किस तरह लाइफ को काबू में रखें टाइटल था किस तरह लाइफ को काबू में रखें छप गया था किस तरह वाइफ को काबू में रखें
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत शुक्रिया छह मिसरे और देखिएगा
2: जी जी
0: तंज है इसमें तंजिया है कल हमारे घर के आगे मर गया था एक गधा
1: जी
0: कल हमारे घर के आगे मर गया था एक गधा फोन तब हमने निगम के एक अफसर को किया
1: जी
0: फोन तब हमने निगम के एक अफसर को किया वो ये बोला हम गधे का कुछ भी कर सकते नहीं आपका ये मसला है आप ही निपटाइए आपका ये मसला है आप ही निपटाइए हमने गुस्से में कहा कि ठीक है लेकिन जनाब शक्ल अपने भाई की तो देखने आ जाइए
2: तो सामने थे जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब जो कलाम क्या पेश कर रहे थे लग रहा था कि फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं बहरहाल मिजाहिया कलाम की खास बात यह भी होती है कि सोचने पर मजबूर करती है कि शायर ने कितने खूबसूरत और कितने हल्के फुल्के अंदाज में कितनी गहरी बात की है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रूबरू होते हैं जनाब इकबाल फिरदौसी की कि वो अपने कलाम से नवाजें जनाब इकबाल फिरदौसी
3: चंद कतार पेश कर रहा हूँ मुलाहिज़ा फरमाए पहला कतार कि मीठी जबां है इतनी ये
2: मीठी जबां है इतनी ये
3: अपना असर दिखलाती है
2: अपना
3: असर। मीठी जबां है इतनी ये
0: अपना
3: असर दिखलाती है 2 दिन उर्दू जो ना बोलूं शुगर कम हो जाती है मीठी जबां है इतनी ये अपना असर दिखलाती है शुक्रिया 2 दिन उर्दू जो ना बोलूं शुगर कम हो जाती है और एक कथा ये भी मुलाहिजा फरमाए कि एक उल्लू ये बोला इंसान से
2: एक उर्दू

0: उल्लू ये बोला,
1: छोड़ दे मेरा पीछा बद जाती।
2: अच्छा,
1: एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बद जाती, मरते दम तक नहीं बताऊंगा नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक उल्लू ये बोला इंसान से, छोड़ दे मेरा पीछा बद जाती, मरते दम तक नहीं बताऊंगा नींद क्यों रात भर नहीं आती। और ये कथा भी मुलाहिजा फरमाया कि रख लो समेट कर ये सभी रिश्तेदारियां, माँ बाप
0: ये सभी रिश्तेदारियां,
1: माँ बाप बीवी और न हमें भाई चाहिए। रख लो समेट कर ये सभी रिश्तेदारियां, माँ बाप बीवी और न हमें भाई चाहिए, रिश्तों को खुशगवार बनाने के वास्ते 56 करोड़ की हमें चौथाई चाहिए। रख लो समेट कर ये सभी,
2: बहुत अच्छा।
1: रख लो समेट कर ये सभी रिश्तेदारियां, माँ बाप बीवी और न हमें भाई चाहिए, रिश्तों को खुशगवार बनाने के वास्ते 56 करोड़ की हमें चौथाई चाहिए।
2: बहुत
1: और मुझे धमकी भरे खत मिल रहे हैं इन दिनों यारो, ये लगता है कहीं मेरा न कत्ले आम हो जाए। मुझे धमकी भरे खत मिल रहे हैं इन दिनों यारो, ये लगता है कहीं मेरा न कत्ले आम हो जाए, इसी डर के सबब मैं उनके कूचे अब नहीं जाता, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। इसी डर के सबब मैं उनके कूचे अब नहीं जाता। शुक्रिया नवाजिश। मुझे धमकी भरे खत मिल रहे हैं इन दिनों यारो, ये लगता है कहीं मेरा न कत्ले आम हो जाए, इसी डर के सबब मैं उनके कूचे अब नहीं जाता, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और मार कर लात कहा उसने गधे से अपने, हर घड़ी तुझको मुसीबत लगे बोझा ढोना।
0: अच्छा,
1: मार कर लात कहा उसने गधे से अपने,
0: हर घड़ी
1: तुझको मुसीबत लगे बोझा ढोना, कुछ संभलते हुए फिर बोला गधी से ये गधा, आदमी को भी मयस्सर नहीं कुछ संभलते हुए बोला गधी से ये गधा, कि आदमी को भी मयस्सर नहीं। मार कर लात कहा उसने गधे से अपने, हर घड़ी तुझको मुसीबत लगे बोझा ढोना, कुछ संभलते हुए फिर बोला गधी से ये गधा, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और जमा क्या होगी मर्द की बोलो, पूछना बस मेरा था ये मकसूद, कि जमा क्या होगी मर्द की बोलो, पूछना बस मेरा था ये मकसूद, बोली झिल्ला के दिल जली औरत, जमा होती है मर्द की मर्दूद। बोली झिल्ला के दिल जली औरत, जमा होती है मर्द की मर्दूद, जमा होती है मर्द की मर्दूद। ये चंद बंद मुलाहिजा फरमा, ये चंद कदात पहले 8-8 मिसरों के ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये सहेली से बोली एक औरत, मेरे शोहर ने मूछ रख ली है।
0: ये सहेली से
1: बोली एक औरत,
2: मेरे शोहर ने
1: मूछ रख ली है, जब तलक प्यार करते रहते हैं सरसराहट बदन में रहती है। ये सहेली से बोली एक औरत, मेरे शोहर ने मूछ रख ली है, जब तलक प्यार करते रहते हैं सरसराहट बदन में रहती है। बात सुनकर सहेली ये बोली, वाकई तू ये ठीक कहती है, अब भला तुझसे क्या छुपाऊं मैं, गुदगुदी तो मुझे भी होती है। अब भला तुझसे क्या छुपाऊं मैं, गुदगुदी तो मुझे भी होती है। और मेरी बीवी ने जब कहा मुझसे, फोन पर आपने नौकरानी से, मेरी बीवी ने जब कहा मुझसे,
0: फोन पर आपने
1: नौकरानी से, जाने क्या कह दिया जो सुनकर वो बाज आई न बदजबानी से।
0: अच्छा,
1: मेरी बीवी ने जब कहा मुझसे, फोन पर तुमने नौकरानी से, जाने क्या कह दिया जो सुनकर वो बाज आई न बदजबानी से। सर पकड़कर मैं बोला बीवी से, तुम ये कैसे ख्याल में गुम हो, इसलिए दिल की बात की मैंने, मैं तो समझा था फोन पर तुम हो। इसलिए दिल की बात की मैंने, मैं तो समझा था फोन पर तुम हो। और एक ये बंद मुलाहिजा फरमाए, मुझको यकीन है मेरी न होगी खता बड़ी, ये एक मतले पर एक शेर पर तजमीन है कि मुझको यकीन है मेरी न होगी खता बड़ी, तस्लीम कर ले जा मेरी अपनी खता बड़ी।
0: अच्छा,
1: या फिर किसी से पूछ ہے کس کی خطا بڑی؟ میری خطا بڑی ہے کہ تیری خطا بڑی؟ میں نے تو صرف جھوٹا تیرا

0: लाल कर दिया, तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया, मैंने तो सिर्फ झूठा तेरा गाल कर दिया, तूने तो मार मार के मुंह लाल कर दिया।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये एक बंदोर मुलाहिज़ा फरमाया कि बस इतनी बात पर कि तरन्नुम है शानदार,
2: बस इतनी बात पर कि तरन्नुम है,
0: गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, बस इतनी बात पर कि तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, महफिल की जान हो गए शायर वो बावकार, और लेते हैं एक मुशायरा पढ़ने के 10,000। हालांकि रिश्तेदार थे वो एक सुनार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के। हालांकि बस इतनी बात पर के तरन्नुम है शानदार, गीत और गजल रटाए गए उनको बेशुमार, महफिल की जान हो गए शायर वो बावकार, लेते हैं एक मुशायरा पढ़ने के 10,000। हालांकि रिश्तेदार थे वो एक सुनार के, शायर बना दिया है उन्हें मार मार के।
1: नाम भी बता दीजिए।
0: ये नाम पर्दे ही में रखे जाते हैं,
1: नाम नहीं बताएं।
0: जी जी। एक गजल जोक साहब के मिसरे पर
1: जी जी।
0: उनकी जमीन पर जो है हुई थी, वो पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। उड़ गई है जब से बुलबुल ये गुलिस्तां छोड़कर, उड़ गई है जब से बुलबुल ये गुलिस्तां छोड़कर, कव्वे को चुपसी लगी है अपनी कांका छोड़कर, उड़ गई है जब से बुलबुल ये गुलिस्तां छोड़कर, कव्वे को चुपसी लगी है अपनी कांका छोड़कर। उसने मतलब मुलाहिज़ा फरमाया कि ले मैं पीछे हट गया तेरा गिरेबां छोड़कर, तू भी अब खामोश हो जा अपनी चूचा छोड़कर, ले मैं पीछे हट गया, ले मैं पीछे हट गया तेरा गिरेबा छोड़कर, तू भी अब खामोश हो जा अपनी चूचा छोड़कर, और वो बना बैठा है मालिक किस धड़ल्ले से मियां।
1: वो बना
0: शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि वो बना बैठा है मालिक किस धड़ल्ले से मियां, मैं गया था अपने घर में जिसको मेहमान छोड़कर, वो बना बैठा है, वो बना बैठा है मालिक किस धड़ल्ले से मियां, मैं गया था अपने घर में जिसको मेहमान छोड़कर, और सारी सारी शब उसी की याद में रोता हूँ मैं, सारी सारी शब उसी की याद में रोता हूँ मैं, जाने क्यों मुझको गई मेरी शबिस्तां छोड़कर, सारी सारी शब उसी की याद में रोता हूँ मैं, जाने क्यों मुझको गई मेरी शबिस्तां छोड़कर, और वो भी करवट पर बदलती होगी करवट रात भर, वो भी करवट पर बदलती होगी करवट रात भर, सुख से कैसे होगी वो मुझको परेशान छोड़कर, वो भी करवट पर बदलती होगी करवट रात भर, सुख से कैसे होगी वो मुझको परेशान छोड़कर, देखिए ये शर्म शुर्मी जान न ले ले मेरी, देखिए ये शर्म शुर्मी जान न ले ले मेरी, बात कीजिए अब तो खुलकर अपनी हुहा छोड़कर, देखिए ये शर्म शर्मी जान, ये शर्म शुर्मी जान न ले ले मेरी, बात कीजिए अब तो खुलकर अपनी हुहा छोड़कर, और फिक्र क्यों करती हो, फिक्र क्यों करती हो मेरी जान पर बन जाएगी, फिक्र क्यों करती हो मेरी जान पर बन जाएगी, शौक से जाओ मुझे तुम जाने जाना छोड़कर, फिक्र क्यों करती हो मेरी जान पर बन जाएगी, शौक से जाओ मुझे तुम जाने जाना छोड़कर, और क्यों बना बैठा है बाबा इससे कुछ हासिल नहीं, क्यों बना बैठा है बाबा इससे कुछ हासिल नहीं, कोई अच्छा काम कर ले अब ये छूछा छोड़कर, उड़ गई है जब से बुलबुल ये गुलिस्तां छोड़कर, कव्वे को चुपसी लगी है अपनी काका छोड़कर।
1: कुछ और
0: एक गालिब की जमीन में मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, कैद से बीवी की जब शोहर खुला,
1: कैद से बीवी की जब शोहर खुला,
0: कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला, कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला, और शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि नौकरानी किसके गम में घुल गई,
2: नौकरानी
1: किसके गम में,
0: किसके गम में घुल गई, खूब पीटा तब कहीं नौकर खुला, नौकरानी किसके गम में घुल गई, खूब पीटा तब कहीं नौकर खुला, और यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियां, यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियां, आदमी रखता है अपना सर खुला, यूं उड़ाता फिर रहा हूँ टोपियां, आदमी रखता है अपना सर खुला, और जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, छोड़कर आया हूँ मैं दफ्तर खुला। जल्दी जल्दी प्यार कर लो डार्लिंग, छोड़कर आया हूँ मैं दफ्तर खुला।
1: ये दफ्तर पास होने की नहीं है।
0: और कितना कपड़ा था दबाव में जनाब, कितना कपड़ा था
1: दबाव में जनाब,
0: दबाव में जनाब बन गई पतलून जब नेकर खुला। कितना कपड़ा था, कितना कपड़ा था दबाव में जनाब, कितना कपड़ा था दबाव में जनाब, बन गई पतलून जब नेकर खुला। और जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियाँ,
2: जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियाँ,
0: जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियाँ, लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला। जीती कुश्ती हार बैठा हूँ मियाँ, लड़ते लड़ते जब मेरा लंगर खुला। शुक्रिया। कैद से बीवी की जब शोहर खुला, उछला यूं जैसे कोई बंदर खुला।
1: सामने थे जनाब इकबाल फिरदौसी, जो खूबसूरत अंदाज में कुछ समाजी मुश्किलात को अपना बयान बना रहे थे। और अब आज के इस स्टूडियो मुशायरे के आखिरी शायर जनाब मोहम्मद अहमद यानी अहमद अलवी साहब की तरफ चलते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि अपना कलाम पेश करें।
3: चंद खतात से
0: इशारा
3: करें। रुख पे चमक दमक है ये 14,000 की,
1: रुख पे चमक दमक है 14,000
0: की,
3: रुख पे चमक दमक है ये 14,000 की, मेकअप के ताम झाम से तुम लाजवाब हो। रुख पे चमक दमक है ये 14,000 की, मेकअप के ताम झाम से तुम लाजवाब हो। मेरा नहीं यकीन तो मुंह धो के देख लो, तुम चौदहवीं का चांद हो ने आफ्ताब हो।
0: अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा, बहुत।
3: और एक शायर के मिसरे को तज़मीन किया है
1: जी,
3: कि मैं डकारे हुए बैठा हूँ रकम लोगों की,
2: मैं डकारे हुए बैठा हूँ रकम लोगों की,
3: मैं डकारे हुए बैठा हूँ रकम लोगों की, देख लेंगे तो वसूलेंगे उठाकर मुझसे,
1: देख लेंगे तो वसूलेंगे
3: उठाकर मुझसे, ताज में मेरी मरम्मत का बहुत खदशा है, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मैं डकारे हुए बैठा हूँ रकम लोगों की, देख लेंगे तो वसूलेंगे उठाकर मुझसे, ताज में मेरी मरम्मत का बहुत खदशा है, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। और एक शायर का एक और मिसरा तज़मीन किया मैंने, तरन्नुम से गजल अपनी ना फरमाए हम दोनों,
0: अच्छा
3: तरन्नुम से गजल अपनी
1: ना फरमाए
3: हम दोनों, कभी एक दूसरे का अब ना भेजा खाए हम दोनों, न मैं तुमको कहूँ हाजी न तुम मुझको कहो हाजी,
1: अच्छा
3: चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
1: अच्छा मिश्रा साहब,
3: इन्हीं के दम से हैं उर्दू की महफिलें जिंदा,
1: इन्हीं के दम से हैं उर्दू की महफिलें जिंदा,
3: इन्हीं के दम से हैं उर्दू की महफिलें जिंदा, अगर ये अच्छू मियां और ये गफूर न हो,
1: अगर ये अच्छू मियां और गफूर न हो,
3: इन्हीं के दम से हैं उर्दू की महफिलें जिंदा, अगर ये अच्छू मियां और ये गफूर न हो, बने कहां से लिफाफे अजीम शायर के, मुशायरे भी ना हो पाए गर सदूर न हो। जान से प्यारे हुआ करते थे मसलक जिनको, जान से
1: प्यारे हुआ करते थे मसलक जिनको,
3: जिनकी मस्जिद थी अलग और अलग जिनकी नमाज, जान से प्यारे हुआ करते थे मसलक जिनको, जिनकी मस्जिद थी अलग और अलग जिनकी नमाज, अक्दसानी के लिए नाम जो मांगे मैंने, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद।
2: बहुत अच्छी तज़मीन की है सर।
1: वाह वाह वाह।
3: मनाए अगले बरस रोज जश्न आजादी,
1: अच्छा
3: मनाए
1: अगले बरस
3: रोज जश्न आजादी, न पल गुलामी का कोई किसी के पास आए,
1: आमीन,
3: न पल गुलामी का कोई किसी के पास आए, सभी की बीवियां घर जाएं अपने अब्बा के, दुआ करो कि नया साल सबको रास आए। और ये खता मुलाहिजा करेंगे, लम्हों की वो खता थी तुमको बता रहा हूँ, लम्हों की वो खता थी तुमको बता रहा हूँ, जिसकी सजा मैं यारों बरसों से पा रहा हूँ। कॉलेज में दबाया था एक रोज हाथ जिनका, कॉलेज में दबाया था एक रहा एक रोज हाथ जिनका, हर रोज अब मैं उसके पांव दबा रहा हूँ।
1: अच्छा है, मुकर्रर
3: लम्हों की वो खता थी, तुमको बता रहा हूँ, जिसकी

0: सजा में यारो बरसों से पा रहा हूँ। कॉलेज में दबाया था एक रोज हाथ जिसका, हर रोज अब मैं उसके पाँव दबा रहा हूँ। अकाउंट बैंक के खाली हुआ करते हैं शायर के,
1: अकाउंट बैंक के करते हैं शायर के
0: खाली हुआ करते हैं शायर के, यहाँ कंगाल हरे गालिबो इकबाल होता है।
2: अच्छा,
0: उसे मुफ्ती में सुनते हैं, उसे लाखों में लाते हैं।
2: हाँ।
0: बड़ा शायर से अपने मुल्क में कव्वाल होता है।
3: बहुत अच्छा है।
0: ये हकीकत है कि सूरज से तो लंगूर भी है। ये हकीकत है कि सूरज से तू लंगूर भी है, मुंतजिर तेरी कहीं आज कोई हूर भी है। अक्द का दिन है मेरे भाई नहाले अब तो, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और एक गजल के कुछ शेर फरमा ले।
1: इरशाद इरशाद,
0: देखिए मतलब यूं कहा है गजल का। न जाने कौन से शौहर परेशानी में रहते हैं,
1: न जाने कौन से शौहर परेशानी में रहते हैं।
0: बहुत खुश हम तो बेगम की निगहबानी में रहते हैं। बहुत खुश हम तो बेगम की निगहबानी में रहते हैं। हर एक एंगल से बेगम चौदहवीं का चांद लगती हो, हर एक एंगल से बेगम चौदहवीं का चांद लगती हो। मियां मसरूफ बीवी की सनाखानी में रहते हैं, मियां मसरूफ बेगम की सनाखानी में रहते हैं। और हुई तारीख तय शादी की, बेटे से कहा मैंने, हुई तारीख तय शादी की, बेटे से कहा मैंने, फकत कुछ रोज बाकी तेरी कुर्बानी में रहते हैं। फकत कुछ रोज बाकी तेरी कुर्बानी में रहते हैं। और शेर तवज्जो चाहूंगा इकबाल साहब कि बुरा क्या है गुलामी में जो मैं बेगम की रहता हूँ। बुरा क्या है गुलामी में जो मैं बेगम की रहता हूँ, मेरे अब्बा भी तो अम्मा की निगरानी में रहते हैं।
2: अच्छा,
1: विरासत में मिली
3: अच्छा।
0: बुरा क्या है गुलामी में जो मैं बेगम की रहता हूँ, मेरे अब्बा भी तो अम्मा की निगरानी में रहते हैं। लगामें कस के रखती हैं हमेशा बीवियां जिनकी, लगामें कस के रखती हैं
1: हमेशा
0: बीवियां जिनकी, बहुत मुश्किल घड़ी में भी वो आसानी से रहते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी में भी वो आसानी से रहते हैं। फकत मस्कन नहीं है सीधी सादी मछलियों का ये,
1: मस्कन नहीं है सीधी सादी मछलियों का ये,
0: फकत मस्कन नहीं है सीधी सादी मछलियों का ये, मगरमच्छ भी इसी ठहरे हुए पानी में रहते हैं। मगरमच्छ भी इसी ठहरे हुए पानी में रहते हैं। नहीं लिखता कोई भी बादशाह की बेलिबासी पर, नहीं लिखता कोई भी बादशाह की बेलिबासी पर, सभी अखबार दरबारों की दरबानी में रहते हैं। नहीं लिखता कोई भी बादशाह की बेलिबासी पर, सभी अखबार दरबारों की दरबानी में रहते हैं। और आखिरी शेर है कि भरोसा एक पल का भी नहीं है जिंदगानी का, भरोसा एक पल का भी नहीं है जिंदगानी का, सभी को है भरम के अर्ज़े लाफानी में रहते हैं। सभी को है भरम के अर्ज़े लाफानी में रहते हैं। न जाने कौन से शौहर परेशानी में रहते हैं, बहुत खुश हम तो बेगम की निगहबानी में रहते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब। सामिंग ये थे जनाब मोहम्मद अहमद साहब यानी अहमद अलवी साहब, जो अपने मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे। कुछ चीज़ें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं मदहिया शायर, ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए, समाज में कहाँ कहाँ क्या नशीब व फराज है। यकीनन आज भी कुछ सवाल आपके जहन में उभरे होंगे कि मिजाहिया मुशायरा सुनकर। बहरहाल अब मुशायरे का वक्त खत्म हो चाह है। मैं एक बार फिर नाम बता देता हूँ आज के इस स्टूडियो मुशायरे में जो शरीक थे, उनके इस्माई ग्रामी हैं जनाब अब्दुलरहमान मंसूर, जनाब इकबाल फिरदौसी और जनाब मोहम्मद अहमद यानी अहमद अलवी साहब। आप तमाम का शुक्रिया। तो सामिन ये था हमारा आज का स्टूडियो मुशायरा, पेशकश मुबीन अहमद खान की थी। अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
4: सामीने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मुशायरा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10

30 मिनट हो चुके हैं, पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेज़बान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, जब तक हम इसको शामिल करें, पहली पेशकश को आपको बताते चलें कि आप अपनी फरमाइशी हमें लिख कर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस esd@gmail.com। बरए मेहरबानी एक बार में एक ही मेल करें ताकि तमाम सामीन को, जितने भी सामीन इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, वो हो जाएं।

दीपक कुमार खटक। अरुण कुमार मालवीय दर्द सुनना चाहते हैं बड़गैबी वाराणसी चौराहा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजपाल पंकज, सोनू सुरेश और मुकेश कश्यप ग्राम उलापुर उत्तर प्रदेश से। हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा सुनना चाहते हैं नौखिलाल वर्मा छत्तीसगढ़ से, और मनमोहन रजावत मधुर रजावत राशि रक्षित शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद। दिल प्रामिकर अक्षर रामेकर अक्षय रामेकर अमरावती से सुनना चाहते हैं। जलाल वैश्य सुरेश गगनीजा पूनम गगनीजा दिशानी और निमित्त सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। राधेश्याम यादव प्रभा यादव और शालिनी यादव खंडवा से सुनना चाहते हैं, और बड़वा से भारती कुशवाहा मनीष कुशवाहा और पार्थ कुशवाहा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं राजेंद्र कुमार मलकित कौर और आरती रानी अंबाला हरियाणा से।

सामिन, अभी आप सुन रहे थे ये नगमा फ़िल्म नौशेरवाने आदिल से, जिसके नगमा निगार थे परवेज़ शमसी और मौसीकार थे चितलालकर रामचंद्रा। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज़ में, जिसको सुना चाह है अयोध्या नगर रालेगांव से विनोद कुमार धावले और वेनुताई धावले ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं

लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख। सुषमा बोरगानकर, प्रकाश बोरगानकर, प्रांजलि सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, प्रकाश पौरकर, नर्मदा पौरकर और सुजाता पौरकर तिलहाड़ा से सुनना चाहते हैं, और जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल वर्मा केथल हरियाणा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हरियाणा से सुनना चाहते हैं, और मल्लानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती प्रयागराज भट्ट सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं गजन येले, नवदीप येले, अशोक येले, सिद्धार्थनगर, दरियापुर बावली से, बाबूभाई भारती देवी उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं शाहीन परवीन सोनम और मारियायत शेख, मोहम्मद अरीफ शेख मुंबई से, भारत भूषण और अंजु श्रीवास्तव बेंगलुरु से सुनना चाहते हैं, और आनंद जोशी, तनुजय जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़स, और कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश शशीष गौड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं गुवाहाटी असम से हरिन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, मुस्कान आसिफ, आसिफ अली खान, शारिक अली खान बागपत से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन और शबनम अनवार गंज डुंडवारा से, किदवाई नगर से पूरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अंजुमन खान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और बाबा साहब डोडे, आदि चरभचंद डोडे, जरूर से सुनना चाहते हैं।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे मिलन, फिल्म से ये नगमा मुकेश की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महल से, जिसको सुना चाह है जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेजा, अंसा कोटेजा ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद ने बबलू ठेकेदार शेख वज़ीर सोहेल शेख मोटाला बाज़ार से, और सुना चाहते हैं शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी बरेली से, गुलनवाज़ बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी राजस्थान से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हुसैन निंदवानी, मीर हसन निंदवानी टंगवानी से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह ठाकुरवाला से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पी एस नोहानकर, निर्मला नोहानकर, विशाल नोहानकर नरवेल से, नई दिल्ली टेक्नो गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं उषा बुरांदे, अनुश्री बुरांदे, धनश्री बुरांदे यवतमाल से।

0: अमीन अभी आप सुन रहे थे महल फिल्म से इना कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब के 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। आइए इस दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बर्रे सगीर की खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्स

बाहू जी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ़ सतह की बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली, मसनूई जहानत, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मुस्तहकम सप्लाई चेन, दिफा, खला, माहौलियाती इकदामात और अवाम से अवाम के दरमियान राबते के शोबों में बाहमी ताउन के नए इम्कानात पर गौर खौज किया गया। वजीर आजम मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई नीज तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तश्वीश का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकल हमल के शोबों में ताउन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असम्बली इंतखाबात में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, ताहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मजकूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनाकिद होने वाली पहली सिविल इन्वेस्टिशर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। रेलवे की वजारत ने तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा स्टेशन जंक्शन के करीब तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डब्बों में आग लग गई। इन डब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नसब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID की इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशा वाराना तरक्की के मौजू प्लेटफार्म फ्राहम करते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मधुर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले 9 तामीर शुदा प्लांट का इफ्तिताह भी किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का इफ्तिताह किया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में
किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब कटघरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतालिक कोशिशों की

0: कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिल तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की सताइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। मुनशियात पर काबू पा करने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के दरमियान नशीली अशिया की नाजायज तजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमा सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमा में मुकीम सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूम में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। रूस में मॉस्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियाटिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन्स को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान बताया कि मॉस्को के मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की गुंजाइश है। बैडमिंटन में आज चीन में बाउची चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वालिशेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन की यौन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब से 2 तरफा बातचीत की जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा VD Sathisan को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय कारकुन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वालिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तमिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

इज्जत फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन ने, और सुनना चाहा था कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता ने, मधुबनी बिहार से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन। कालेगांव से सुनने के ख्वाहिशमंद थे सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा, बाजार अनारकली बाजार, जगराओं से सुनने के ख्वाहिशमंद थे बाबा साहब डोडे, आदित्य चरबे, चंद बाबा डोडे, जरूदवरू से सुनने चाहते थे, और विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, शुभम बिंडे, अकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। तेलंगाना निजामाबाद से एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जमीर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहता शादाब शमशाद, अनदीप खानम, सारे फातम शेख ने, रेलवे रोड गंजवारा से। मतीन और अजीज़, शेख चांद फारूक निजामाबाद से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और आगा खान आगा, बेगम निदा खान, बेगम अमल खान गंजवारा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रमेश जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया पटेल नगर मलोट पंजाब से सुनना चाहते थे, और एस एम जावेद, शगुफ्तानजुम गुबला झारखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। महाराष्ट्र से कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहते थे वैष्णवी, हर्षल राम भाड़े, काशनीवास, बंगाली पंजा, नागपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। अभिजीत गोहानकर, सरिता गोहानकर सुनने के ख्वाहिशमंद थे नागपुर से, और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह ठकुरवा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम अशरफ, इकरम, रुबीना वसीम सुनने के ख्वाहिशमंद थे नादमंजिल महसूल सीतामढ़ी से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहे शाहिना हसन मसरूर हसन ने सहारनपुर से, और सुनना चाहते हैं तमिलनाडु से डोडेपल श्यामला रानी, प्रकाश राज, गजानन कुंभर, पद्मावती कुंभर, मथुरा मधुरा महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद थे जैरा बेगम अंसारी, कलीम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, कासगंज से सुनना चाहते थे आदिल कमर गुन्नौर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहते हैं संबल से छोटे अंसारी, नौशाद सलमानी, दोना धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी के साथ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और मलकापुर से रमेश वरतालेकर, वंदना तालेकर, दिव्या हर्ष तालेकर सुनना चाहते हैं। शाहजी बोटके, नंदा बोटके महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं, और जब्बार मोहम्मद, अजीब खान, अशरफ खान उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, कीर्ति भारती, किशनगंज बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

मैंने भी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में नगमा बावरे नैन फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी रोशन ने और बोल थे केदार शर्मा के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहे नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने। अहमदाबाद से सुनना चाहते हैं माँ चक्रवर्ती दुर्गा कुमारी और प्रमोद चक्रवर्ती, और जलंधर से मंदीप जाटव संजय जाटव सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं मोहम्मद करीम जख्मी, नजम गुमनाज, बेबी फातिमा शेख रेलवे रोड गंजुंडवारा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चमन पार्क नई दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर अदीबा, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं परवीन सोनी कलावती सोनी गांधीग्राम से, कांदला बंदरगढ़ से जगदीश जौहरी सुनना चाहते हैं, राज अंसारी फातिमा अंसारी बक्सर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दीप्ति राज पूजा वर्मा प्रभा वर्मा रायगढ़ से, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना साजिद अली रुखसाना खातून सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं राजधानी रायगढ़ से नीलू मेघ डॉक्टर वंदना कुमार, काजल शर्मा मीरा शर्मा बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से चैतन्य मस्किन तुलसी मस्किन और रचिता मस्किन, राकेश पटेल प्रमिला पटेल राजकोट सुनना चाहते हैं, जालंधर से हिमापाल शैलेश पाल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

हाँ मैंने अभी आप सुन रहे थे ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में अंदाज़ फिल्म से, जिसके मौसिकार थे नौशाद और नगमा निगार थे शकील बदायूनी। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तलत महमूद की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहा है सांगली जिला जज शरीफ अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे ने, और सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रितेश संधू सुनना चाहते हैं कुलम रोड हरगोबिंद नगर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, निहारिका, हार्दिक पत्ता पटियाला से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं यूके से शाहिना रफ़ी, और सुनना चाहते हैं खंडवा से विजय महोबिया।

सामीन, अभी आप सुन रही थी ये नगमा तलत महमूद की आवाज़ में फ़िल्म दिले नादान से, जिसकी तर्ज बनाई थी गुलाम मोहम्मद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जिसको सुनना चाहा है राजकोट से शाहनवाज लखानी, मुदस्सरा लखानी और शब्बीर लखानी ने। नूरुल हक, नूर मुदस्सर, नूर मुर्तज़ा मियाना मालिया से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं दूध सागर मार्ग राजकोट से गुलाम रसूल जूना, शम्स जूना और दिलावर जूना, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया फर्रुखाबाद तो उत्तर प्रदेश से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग डबवली से, और गोलू कांगड़ा, अंकित अशिका बोत, तमन्ना कांगड़ा चौबीसी से सुनना चाहते हैं। अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा कुरावली से सुनना चाहते हैं। डब्लू लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, उमराज सुनना चाहते हैं जेल रोड नई दिल्ली से।

ही पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे, तेरी उठती जवानी पुकारे, तेरा जोबन किसी को ललकारे, दिल की धड़कन।

0: कहो ठिकाना, अंगुलाई तेरी है बहाना, साफ कह दो हमें के जाना।
1: अमीन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामीर इरशाद के तहत फरमाइशी फिल्मी नगमे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं,

0: सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
2: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफी बड़े सीईओज को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफी काफी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है, क्योंकि बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि ये जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहाँ पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे में हमें भारत को रिस्टिट्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती हैं। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और सारे संबंध के सारे आयामों पर, इसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई और साथ साथ विश्व में जो अभी आज की स्थिति है वहाँ भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जो एक प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफ़ी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री दोनों और बाकी भी उच्च अधिकारी, उनको ये मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए, और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज एस्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
0: अनिल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हो, टेररिज्म के हो, इनोवेशन के हो, रिसर्च और डेवलपमेंट के हो, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही है लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नेदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तोहिन, की बात से बताया, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इस पे काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया, और एक रोडमैप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहाँ पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट थे वहाँ पर। मुझे याद है जब मैं वहाँ स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो CEO थे और एक वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर थे लिफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, छोटे से देश हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा, पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट का वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है। तो

0: इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी, और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का, उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली, अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
0: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था, और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट, और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह है कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए, और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा, लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स एंड सर्विस का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा 1-2 साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल्स के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं, खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे हैं, और इसलिए उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आइए अब सुनते हैं अजीज वारसी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

0: सी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई। थानचिन तुआंग कई तरह के की मुंशियात और नशीले मादनों की कानून की के तहत मतलूब था। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन्स को तबाह भी किया गया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए उन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को के मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि सिफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूर की खैरियत दरियाफ्त की है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामी मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वालमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामी मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी काउंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का यह बयान सामने आया है। नेपाल के कोहपेमा की मारिटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपेमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रिटा ने पहली बार 1994 माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। बैडमिंटन में कल चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वालशेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की आन की युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टरसन से दोतरफा बातचीत की, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड के उनके दौरे से दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय कारकुन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वालशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद रईस खान का सितार पर बजाया हुआ राग शंकर बिहाग।

सामीन अभी आप सुन रहे थे उस्ताद रईस ख़ान का सितार पर बजाया हुआ राग शंकर बिहाग। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिरे शब। आइए इस प्रोग्राम को तय सुनते हैं फिल्मी नगमे।

0: वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हमनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक 17 माहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, निज तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसाइल, सेमीकंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबे में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। कल सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डब्बों में आग लग गई। इन डब्बों में एक गार्ड कोच और एक एसी थ्री टीयर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी की बचत इस बहरान का मौसर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ़ से मुतालिक कोशिशों को कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमत के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिले तदी तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तदी तवानाई के वसाइल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। नशीली अशिया पर काबू करने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्क के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगर्म थान सिन तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। NCB ने एक बयान में कहा कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थान सिन तुआंग कई तरह की मुंशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मुंशियात से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज किया था, जिनमें NCB ने दो केस दर्ज किए थे। रूस में मॉस्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन्स को तबाह भी किया गया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में बताया कि मॉस्को के मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे के जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूर की खैरियत दरियाफ्त की। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन हमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ़ुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तिसादी और समाजी काउंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचम बरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। बैडमिंटन में कल चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वेलिशेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की आन की युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। नेपाल के कोह पैमा कौमी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोह पैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामीरीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से दोतरफा बातचीत की, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के उनके अपने दौरे से दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय कारकुन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत ने अपनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वेलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता है। खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजे चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
3: रक्षा के क्षेत्र में हमारा

0: एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6 स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
0: Sweden-India technology and AI corridor ko majboot karne ke liye thos initiatives par kaam karenge. Dono deshon ke startups aur research ecosystems ke beech sampark badhane ke liye हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
2: ही वेलकम्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीडिश कंपनीज टू इंडियाज ग्रोथ एंड एनकरेज्ड डीपर कोलैबोरेशन इन रिसर्च, इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। PM highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance

0: importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent, and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Pralhad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with the private English News Daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10:05। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो साथियों, गीत सुनहरे, आखिरकार गीत सुनहरे क्यों कहा जाता है? गीत सुनहरे, जी हाँ, एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं। एक से एक गीतकार, संगीतकार, और न जाने जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं गीत संगीत के, फिल्मों के, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत होते हैं। ऐसी रचनाएं होती हैं जो बहुत ही कम साथियों ने सुनी होगी। जी हाँ, तो आज की जनरेशन शायद उन गानों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन जो जनरेशन रही है हमारे या आपके जैसे जो जनरेशन रही है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनना पसंद करते हैं, हमेशा गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन एरा यानी कि गीत सुनहरे। तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे फिल्म संगीत। जी हाँ, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार गीत से शुरुआत कर रहे हैं, और ये गीत वाकई बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तलत महमूद साहब की। तलत महमूद साहब की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना आ रही है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। फिल्म दाग से, दाग फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत शंकर जय किशन का है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना।

तो वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है मेरे दिल कहीं और चल, दिल की दुनिया से दिल भर गया। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत आ रहा है बहुत ही शानदार बेहतरीन, वो दिन याद करो, फिल्म हमराही से। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना।

0: मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। हाय
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंत यो अभी जो रचना आने वाली है वो बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है, बेताब है दिल। जी हाँ, ये टाइटल है और फिल्म है दर्द। दर्द फिल्म 1947 प्रदर्शित फिल्म रही है। सुरैया और उमा देवी की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना है। गीतकार शकील बदायूनी और नौशाद का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहतरीन रचना।

0: चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझ रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझ रुकना नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधान

0: चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month. putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10

कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। अरे छोड़ी यारों ने दुनिया पर या

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की

0: रूप देना एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than 2/3 majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a 2-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. UP CM Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, 2 cabinet ministers and 4 ministers of state were inducted into the government, while 2 ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World

0: Health Assembly, which is being held from 18th to 23rd May 2026. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. India has expressed deep concern at the attack targeting the Baraka nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. Put to bat, Rajasthan Royals scored 193 for 8 in stipulated 20 overs. Dhruv Jurail was the highest scorer with 53 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Stark took 4 wickets for which he was adjudged player of the match. In another match earlier in the day, Royal Challengers Bengaluru defeated Punjab Kings by 23 runs in Dharamshala this evening. With this victory, Royal Challengers Bengaluru became the first team to qualify for the playoffs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। यह साथियों, एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके पास। जी हाँ, गीत गजल। तो आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल से। जी हाँ, वाकई बहुत ही प्यारी और बेमिसाल खूबसूरत गज़ल से शुरुआत कर रहे हैं और ये गज़ल वाकई बहुत ही प्यारी है। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, फिल्म वेलवेट वॉइस और जो सिंगर हैं हरिहरन साहब की लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना है और ये रचना 1999 की एल्बम से लिया गया है और गज़ल सिंगिंग वही है, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। हरिहरन साहब की बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में आज के कार्यक्रम गीत गज़ल की पहली और शानदार खूबसूरत गज़ल आ रही है। स्वागत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस शानदार बेहतरीन गज़ल का।

जी हाँ, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं ज़माने को, जिन्हें भूल जाने में ज़माने लगे हैं। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन जज्बातों के साथ खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और सुंदर बेहतरीन गज़ल की ओर। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में शानदार गज़ल पेश खिदमत है, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर लाजवाब खूबसूरत गज़ल, हम दोस्ती एहसान वफा। जी हाँ, एक एल्बम है एहसास, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन गज़ल है और गीत पेयम सईदी के हैं और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, बहुत ही गमगीन और दर्द भरी खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह सिंह की आवाज़ में। जी हाँ, हमको किसी के गम ने मारा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल है, हमको किसी के गम ने मारा। किसने मारा तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं ये बहुत ही सुंदर गज़ल है और एल्बम का नाम है बज़्मे लैला। अरुणा लैला की आवाज़ में बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। बज़्मे लैला जो एल्बम बनी थी वो थी सन 1996 में, तो वाकई बहुत ही सुंदर। और ये गज़ल जिन्हें सजाया था इस खूबसूरत गज़ल को वो थे निसार बाज़मी। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब गज़ल रूना लैला की आवाज़ में। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गज़ल आ रही है आपके पास। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल अपने आप में बेहद लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं गजल, गजल का जो सिस्टम होता है, जो गजल सुनने वाले होते हैं, दिल तक, अंदर तक, रूह तक चली जाती हैं वो खुश कुछ खास बातें, कुछ सुंदर एहसास, जज्बात। जी हाँ, एक सुंदर जज्बात, खूबसूरत रचना। वाकई बहुत ही अच्छा लगता है जब गज़लों का कार्यक्रम होता है, तो वाकई बेहतरीन हो जाता है। गज़ल की गहराई समझना चाहते हैं तो बस क्या कहें, हमेशा गज़ल गज़ल होती है। गज़ल में सुख दुख दर्द अपनापन खूबसूरती सब कुछ समाहित होती है। तो वाकई मैं नसीब हूँ एक शायरी है, बहुत ही प्यारी, बेहतरीन, खूबसूरत शायरी के साथ ये सुंदर रचना सुनवा रहे हैं हम। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल।

बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल। बढ़ते हैं एक और शानदार गज़ल की ओर, और यह गज़ल है वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गज़ल। जी हाँ दोस्तों, इस गज़ल के बारे में यदि हम कहें तो वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल है ये, और आसमान की परी। जी हाँ, आसमान की परी एक एल्बम है, कुछ दिल ने कहा। ललित्या मंशा सिंगर हैं, और जो एल्बम आई थी कुछ दिल ने कहा, वो साल था 2013। उसी एल्बम का सुंदर बेहतरीन नगमा आ रहा है बेहतरीन गजल के रूप में, आसमान की परी। संगीत अहमद मोहम्मद हुसैन का है। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गजल।

बेहतरीन अनमोल लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही प्यारी सी गज़ल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर, कितनी पलकों की नमी। जी हाँ, ये टाइटल है गज़ल का। एल्बम तस्वीर से लिया गया शानदार नगमा है, अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। तस्वीर एल्बम 1995 में प्रदर्शित हुई थी और गीत तस्नीम फारूकी के हैं और संगीत से सजाया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल आज के कार्यक्रम की।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4 बजे। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:21 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18

मई सन 2026 सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भद्रासन और अश्वत्थासन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। छह बजकर 40 मिनट पर आप सुन सकेंगे चिंतन। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 59 और 6:55 पर समय होगा संस्कृत।

0: समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का और 7:30 पर आप सुन सकते हैं अपने मनपसंद फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीतों भरी का। सुबह 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। उसके बाद 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अवर गेस्ट और 9:30 पर समय होगा ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: तेग बहादुर सिमरिया करनो निध्यावताए सब थाई होए सहाय दस

आज्ञा बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाव हो गोबर तरन ना जाई तोते टिका तै जप माली ताल में शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पियावे ओही साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तीड़ तो